101.9 FM बैंड पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि और दिनांक 17 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे 101.9 FM बैंड पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन

0: जीवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर इज़्ज़ुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिल्ली से समाचारों के बाद आपके साथ है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, विचार बदलेंगे तो जीवन भी बदलेगा। शुरुआत हमेशा मन से होती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। कुछ ही पलों में 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 191। छह 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार है गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का भाग 6, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी, इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2:00। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक पंकज उधास पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। दस 10:00 पिटारा में सुनिए बॉम्बे टॉकीज गायक गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रेकर की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन है रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 11:00 विविधा में सुनिए मजरू सुल्तानपुरी पर आधारित चित्र भारती, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1:00 से तय करेंगे हम सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 सुनिए मन चाहेगी। 3:30 पर नाट्य तरंग में आप सुनेंगे नाटक शकुंतला, इस नाटक का दूसरा भाग। मूल लेखन है कालिदास का, रूपांतरण और प्रस्तुति राजेश रेड्डी की। 4:00 पिटारा में आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के, निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुति जुबैर खान।

की 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। छह 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7:00 विशेष जयमाला में सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम पर निर्धारित। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज में क्लेनरेट मास्टर इब्राहिम से बातचीत। 7:00 में सुनिए हास्य नाटिका क्रोध हास्य और शलाका, माफ कीजिएगा क्रोध हरण और शलाका। लेखन है चिरंजीत का, निर्देशक दीनानाथ। 8:15 पर आप सुनेंगे रात्रि चित्रलोक। 9:00 आपके लिए, 10:00 छाया गीत और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

दशरथ के दाह संस्कार दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्रीराम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्रीराम सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हट करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। कुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। करता पल पल तेरा वंदन, युग युग का प्यासा मेरा मन, कर ले तू स्वीकार मुरारी, तू ये मेरा प्रणाम। श्री अनूप जलोटा जी को हमारा प्रणाम। स्वागत है सर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला के माध्यम से हम भक्ति रस की वर्षा से भीग रहे हैं, और अनूप जी हमें आप बताएंगे कि भक्ति के कौन से रंग से हमारे श्रोताओं को रंग रहे हैं इस कड़ी में।
2: ये भजन तो ऐसा क्षेत्र है कि कुछ भी गाया जाए तो पहले तो अपनी खुद की चुनरिया रंग जाती है, और जब खुद रंग गए तो सामने वाला तो रंग ही जाएगा। इसलिए इसका आनंद जो है वो पहले स्वांतः सुखाय वाला होना चाहिए
1: जी।
2: कि भजन गाकर उस भक्ति में, उस रस में अपने को पूरा तरह डुबो लिया जाए, और वही आनंद मैं आज तक लेता रहा हूँ
1: जी। अनूप जी, ये जो सुख की बात की, भक्ति रचनाओं से जो सुख प्राप्त होता है, लेकिन एक सुख और है, वो है बचपन का सुख।

0: बचपन के संसार में जब पहुंचते हैं तो एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। आपको हम आपके बचपन की ओर ले चल रहे हैं, जहां आपका बचपन है, करियर है, हमें बताइए अपने करियर के बारे में और बचपन की उन गलियों के बारे में जब आपने गाना शुरू किया।
1: लखनऊ में गुजरा है बचपन, और 7 साल की आयु थी जब मैं पिताजी से, जब मैंने सीखना भी शुरू कर दिया था और स्टेज पे गाना भी शुरू कर दिया था। सो 7 साल की आयु से मैं मंच पर गा रहा हूँ, और जैसा कि पहले मैं एक बार बता चुका हूँ कि पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो उन्होंने सख्ती से सिखाया है
0: जी।
1: लेकिन स्टेज पे जब मैं उनके साथ गाता था तो बड़ी नरमी रखते थे, प्यार से गवाते थे, तो हिम्मत बढ़ती थी। स्टेज पे डांटना वो सब नहीं होता था, स्टेज पे बड़े प्यार से। तो जो ऑडियंस फियर होता है, कहते हैं कि स्टेज पे कुछ लोग डरते हैं, वो चीज बचपन से ही निकल गई थी। तो अब ऑडियंस जितनी भी बैठी हो उसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन में एक विश्वास जगाना जरूरी होता है कि जब हम स्टेज पे बैठे हैं तो उसको ठीक से गाएं। आकाशवाणी से, विविध भारती से, ऑल इंडिया रेडियो से हमारा संबंध बहुत पुराना है
0: जी।
1: मुझे याद है जब मैं 17 या 18 साल का हूंगा, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में मैंने ऑडिशन दिया भजन गीत गजल के लिए, और मेरी माँ, वो भी थोड़ा गाने में शौक रखती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी गाऊंगी। मैंने कहा चलिए आप भी ऑडिशन दीजिए। हम दोनों ने फॉर्म भरा और हम दोनों ऑडिशन देने गए। उन दिनों मेरा अच्छा खासा नाम लखनऊ, लखनऊ के आसपास हो चुका था एज ए सिंगर, खूब बिजी आर्टिस्ट था मैं। तो मैं और मेरी माँ जब हम लोग ऑडिशन देने गए, तो उस ऑडिशन में मेरी माँ पास हो गई थी, मैं फेल हो गया था।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद मुझे कहने लगी, देखा बड़ी बड़ी बातें करते हो, देखो क्या हुआ। खैर उसके बाद कुछ 6 महीने बाद दोबारा चांस दिया जाता है ऑडिशन का, फिर मैंने इलाहाबाद से ऑडिशन दिया और वहां से मैं पास हो गया
0: जी।
1: उसके बाद हम बम्बई आ गए, जब मैं 20 साल की आयु थी बॉम्बे आ गया था। बॉम्बे आकर मैं गजल भजन रिकॉर्ड करने ऑल इंडिया रेडियो पहुंचा, तो वहां कुछ लोगों ने कहा कि पहली बार रिकॉर्ड करने आए हो, यहाँ एक कोरल ग्रुप है जो कानू घोष जी चलाते हैं, तो उसमें देख लो अगर तुम्हें चांस मिल जाए। तो मैंने कानू घोष जी को गाना सुनाया
0: जी।
1: उन्होंने मेरी भर्ती कर ली और मैं ऑल इंडिया रेडियो कोरल ग्रुप का मेंबर बन गया। मैंने करीब 2.5-3 साल उसमें गाया। मेरी तनख्वाह थी 320 रुपए महीना
0: जी,
1: और हम उसमें गाते थे, रोज आते थे, रियाज करते थे, गाते थे, और महेंद्र कपूर साहब या उषा मंगेशकर जी ऐसे कलाकार आते थे, उनके पीछे हम कोरस गाते थे
0: जी।
1: तो वो मेरी ट्रेनिंग का टाइम था, बहुत मजा उसका लिया है मैंने। तो इस तरह से आप सोच लीजिए कि मेरा जो संबंध है ऑल इंडिया रेडियो से, वो पिछले 45 साल से चल रहा है, और ये संबंध ऐसा हो गया है कि मैं जब भी किसी ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सेकंड होम में आया हूँ, इतना पुराना संबंध मेरा है।
0: और अब आकाशवाणी परिवार के सदस्य के रूप में भी शामिल है।
1: हाँ, वो तो मुझे कुछ ड्यूटी दी है सरकार ने, तो मैं प्रसार भारती का बोर्ड मेंबर हूँ, काम कर रहा हूँ, और इस क्षेत्र में काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: आपने अभी जिक्र किया था कि माँ के साथ आकाशवाणी पर गए थे, आकाशवाणी केंद्र पर, और माँ ऑडिशन पास हुई थी, तो पिताजी से आपने गाने की तालीम ली, माँ से कौन सी तालीम ली जो आपके जीवन में काम आए?
1: शादी के पहले वो बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी, और वो इतना अच्छा नृत्य करती थी कि आज भी बिरजू महाराज जी और सितारा देवी जी जब भी मिलते रहते थे तो हमारी मम्मी का जिक्र करते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा कथक करती थी, उन्होंने छोड़ दिया। तो शादी के बाद हमारी मदर ने छोड़ दिया था कथक, लेकिन क्योंकि जो भी डांसर्स हैं उनके अंदर इतनी लय होती है, सुर होता है, जैसे बिरजू महाराज जी कितना अच्छा गाते हैं, तो लय और सुर जो दोनों मिला के है मुझ में जो आया है, वो पिताजी से स्वर आया है और माँ से लय आई है।
0: क्या बात।
1: तो वो दोनों चीज मिला के मैं काम कर रहा हूँ।
0: अब हम चाहते हैं कि उन दिनों को याद करते हुए आप कौन सा भजन श्रोताओं को सुनवाएंगे और उसकी चर्चा करिए।
1: जग में सुन

विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुने तो एक

0: रागों का खेल आप करते हैं वो बहुत ही अप्रतिम होता है, इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। वक्त हो रहा है इजाजत लेने का, तो हम अपने श्रोताओं से अनुमति लेने से पहले बता दें, ऐसी लागी लगन भक्ति भाव पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी छठी कड़ी।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जानी माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं परदेसी फिल्म के इस गाने के साथ। मन्ना डे की आवाज में, अली सरदार जफारी की आवाज में, माफ कीजिएगा, अली सरदार जफारी के बोल और संगीत है अनिल बिस्वास का।
1: अरे जरा सुनो लगा कर ध्यान, यहाँ जन्मे लोक महान बड़े गुणवान के जैसे राम लखन भाई महान।

सुन रहे थे अली सरदार जाफरी का लिखा ये गाना परदेसी फिल्म से। अगला गाना सुनते हैं महात्मा कबीर फिल्म से, सी एच आत्मा की आवाज में सी पांडे के बोल और अनिल विश्वास का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में एक मीठी सी छेड़खानी। प्यार की राहें फिल्म से सुनिए इस गाने को। कर्ण घोष ने लिखा है, प्रेम धवन का संगीत।

आखिर कौन है मधुबाला का चिचोर। आइए सुनते हैं तराना फिल्म से ये गाना लता मंगेशकर और संध्या मुखर्जी की आवाज में, प्रेम धवन के बोल संगीत अनिल बिस्वास का।

आकाशवाणी मुंबई से आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सात बजकर 7:30 पर सुनेगा कार्यक्रम अमृत कलश। सुर संगम आपके लिए होगा 8:15 पर और प्रणाम अयोध्या आप सुनेंगे 8:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे आज की बात पे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के विषय में जानकारी। साथ ही होगी भेंटवार्ता, उच्च रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं और उसका समाधान जानकारी देंगे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आनंद गुप्ता और इनसे बातचीत की है संजय धर द्विवेदी ने। आपके संदेश आपके गीत ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 9 बजे। 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम बातें आसपास की। अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग आपके लिए होगा 12:30 पर। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या 1 बजे और 1:30 पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। गीतांजलि 2 बजे। बाल जगत कार्यक्रम 2:30 पर, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आएंगे चर्चा विश्व हाइपरटेंशन दिवस और धीमा जहर है फास्ट फूड। इसके अलावा होगी वार्ता यूं ही नहीं जाने देंगे गर्मी की छुट्टियों को, वार्ताकार होंगे स्तुति। साथ ही होगी ओबी बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या पर आधारित, विषय है हम है सुपर ना कि स्लो और इस विषय में जानकारी देंगे जिला चिकित्सक अयोध्या के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भालेंदु प्रताप सिंह। इसके अलावा प्रेरक व्यक्तित्व में सुनेगा सुमित्र नंदन पंत के विषय में और कार्यक्रम में शामिल होगा बाल गीत। 5 बजे युवाड़ी कार्यक्रम, जिसमें आज सुनेगा चर्चा विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस। वाय ध्वनियांकन पर आधारित चर्चा सुनेगा आकाशवाणी एट 90 वर्ष रेडियो श्रोता अभिषेक मिश्र और सदक हुसैन के साथ। संस्था के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के विषय में। लोक संगीत 5:30 पर और शाम सुहानी 6:10 पर। गूंजे सर गांव के 6:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम 6:45 पर, जिसमें आज सुनेगा चर्चा विश्व हाइपरटेंशन दिवस के बारे में। साथ ही होगी भेंटवार्ता, स्वयं सहायता समूह का गठन और उसके लाभ। वार्ताकार होंगे अरुण कुमार वर्मा। लोकगीत सुनिएगा और प्राप्त करेगा मौसम की जानकारी। शेर और गीत 8:15 पर। खेल खिलाड़ी 9:15 पर। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या 9:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त

0: रूपरेखा, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड पर। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
5: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में BCCI की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है।
5: प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।

0: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोरखपुर में 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा है कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाकर देश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित तथा आंतरिक होगा। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में कल रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कल अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
1: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ, तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से तैयार किए गए विंध्य प्रसादम गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि ये पहल वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। विंध्याचल में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए विंध्य प्रसादम में चुनरी से लेकर पूजा के सामग्री और प्रसाद उपलब्ध है। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल वाराणसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बारिश से पहले नालों की सफाई, शहर की स्वच्छता और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में

0: मंत्री हंसराज विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। चित्रकूट नगर पालिका क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। कल नगर पालिका परिषद की बैठक के बाद अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के साथ ही इसे सुंदर बनाया जा रहा है।
1: उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धीमेह से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपके साथ है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपने

0: अपनी शादी की सालगिरह जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज घड़िया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
1: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: अमृत कलश कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए इस भजन के साथ।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
3: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
2: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
3: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी

0: बचा सकती है।
1: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
0: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
1: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
0: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
2: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
3: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
2: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
3: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
2: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
3: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

0: तो श्रोता, इसी भजन के साथ हमारा आज का ये अमृत कलश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है

0: मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे।

0: दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था।

0: पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व

0: दूरसंचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचारों के बाद आपके साथ है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम सुर संगम।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: सुर संगम कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों के साथ।

0: तो श्रोताओ, बेगम अख्तर की गाई सी गजल के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम सुर संगम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और आइए अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: आपके संदेश
4: संदेश से आते हैं,
3: आपके गीत
4: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
3: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
5: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कही सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
6: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
0: अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खास दिन के साथ और कुछ खास बातों के साथ। दिन तो हर खास होता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सभी को कुछ ज़्यादा ही विचार करने की ज़रूरत होती है। और ऐसा दिन अगर वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हो तो उसके बारे में तो हमें और भी सोचना और समझना पड़ेगा। प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और उसके सही माप और प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इस समस्या को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है और यह दिवस इस रोग की रोकथाम

0: थाम और उपचार के लिए लोगों को जागरूक करता है। जरूरत है कि हाइपरटेंशन की समस्या पर पहचान हो, जिससे जीवन शैली में बदलाव करके हृदय रोग और स्ट्रोक को रोका जा सके। आज के दिवस की इस वर्ष की थीम है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। यह दिवस सुनिश्चित करता है कि हम सभी अपने ब्लड प्रेशर लेवल्स की नियमित जांच कराएं। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लक्षण आसानी से समझ नहीं आते, लेकिन ये लगातार धमनियों की दीवारों पर दबाव डालता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि विश्व भर में 100 करोड़ से अधिक वयस्क हाइपरटेंशन से प्रभावित है। समस्या शुरू होने से पहले ही उसे रोकना बेहतर है। ठीक वैसे ही उच्च रक्तचाप से होने वाली जटिलताओं से निपटने के बजाय उसे कम करना बेहतर होता है। रक्तचाप कम रहे इसके लिए कुछ शुरुआती उपाय हम सभी को करने चाहिए, जैसे अधिक वजन होने पर वजन कम करना, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट और चीनी का सेवन कम करना, अपने आहार में पोटेशियम की मात्रा अधिक और सोडियम की मात्रा कम करना, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज करना, धूम्रपान और शराब से परहेज, अत्यधिक तनाव को कम करना, अच्छी और आरामदायक नींद लेना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना और कैफीन का भी सेवन कम करना। दोस्तों, ये वो कुछ उपाय हैं जिन पर चलकर हम अपने ब्लड प्रेशर लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं और हाइपरटेंशन की समस्या से दूर भी रह सकते हैं। ये सभी उपाय तो हमें करने ही चाहिए, पर अगर लगे कि हमारी जीवन शैली बदल रही है तो ऐसे में निश्चित रूप से उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर होना ही है। ऐसे में स्वास्थ्य परीक्षण को नियमित रूप से जरूर करवाना चाहिए। कहते हैं जान है तो जहान है, और एक बात और याद रखने योग्य है कि एक व्यक्ति का अस्वस्थ होना सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी असर डालता है। याद रखिए, आप अपनी कहानी के नायक हैं और नायक का स्थान और कोई नहीं ले सकता। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित हेल्थ चेकअप कराते रहें। तो दोस्तों, इसी विषय पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हम इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं भेंट वार्ता, उच्च रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं और उसका समाधान। जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आनंद गुप्ता, और उनसे बातचीत की है संजय धर द्विवेदी ने।
1: श्रोताओं, रविवार यानी 17 मई को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर दिवस है। इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं और इसका समाधान कैसे पा सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आनंद गुप्ता जी को। डॉक्टर आनंद गुप्ता जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आकाशवाणी परिवार की तरफ से और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सर, सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो तिथि निर्धारित की गई है 17 मई, इस दिन ही क्यों खास तौर से उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है?
2: एक्चुअल में उच्च दिवस मनाने का मतलब यह है कि हम इसको जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम करने, पता लगाने और नियंत्रण करने के लिए एक डेट को हमने फिक्स किया है
1: जी।
2: उसको उच्च रक्तचाप दिवस कह सकते हैं,
1: यानी जागरूकता के लिए एक विशेष तिथि का आयोजन कर दिया गया जिससे कि लोग जागरूक हों,
2: जागरूक और पता लगाएं, उसको नियंत्रण करें, रोकथाम
1: जी। तो अब आपसे जानना चाहते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर है ये क्या है?
2: अगर रक्त, मतलब रक्त की दीवारों पर बहुत तेज दबाव बनाता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कहते हैं।
1: यानी रक्त जो है, रक्त की दीवारों में जब बहुत दबाव बनाने लगता है
2: जी, तो उसी को हम उच्च रक्तचाप कहते हैं।
1: इसका मापक क्या है, कैसे मापते हैं आप?
2: ब्लड प्रेशर जो है नवजात बच्चों में 90/60 होता है,
1: 90/60
2: जी, 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों में 100/70 होता है, और 18 से 40 साल में 110/70 से 120/80 तक होता है जी।
1: मतलब ये नॉर्मल
2: जी,
1: ये आप जो मशीन जिससे कि नापते हैं
2: जी, जी, जी,
1: उसमें ये होना आवश्यक है
2: जी।
1: जैसे मान लीजिए कि अगर इससे इतर कुछ निकल के आता
2: ज्यादा
1: है,
2: होगा तो उसी को हम उच्च रक्तचाप कहते हैं।
1: तो क्या उसका कोई लक्षण भी प्रकट होता है, कैसे जानते हैं? अगर जान जाते हैं तो क्या लक्षण शरीर पर आता है?
2: बहुत सही सवाल किया आपने। ये लक्षण ही से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप है कि नहीं है, जिसमें कि सिर दर्द चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो,
1: सर,
2: सिर चकनाना, उल्टी होना, सीने में दर्द होना, घबराहट होना
1: जी,
2: आंखों में दिखने में परिवर्तन होना जैसे कि धुंधला दिखना, नींद कम आना या नींद ना आना
1: जी,
2: दिल की धड़कन बढ़ना, अनियमित हो जाना, अचानक ज्यादा प्यास लगने लगना, नाक या पेशाब से खून आना, थकान व सुस्ती लगना आदि लक्षणों से हम कह सकते हैं कि आपको हाई ब्लड

0: यानी इस तरह कोई चीज शरीर के साथ प्रकट होती है तो हम मान सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब है, ये उच्च रक्तचाप हो सकता है।
1: जी जी जी।
0: ये इसके अनायास ही हो जाता है शरीर में, कुछ
1: नहीं, कारण,
0: भी कारण
1: होते हैं। इसके मुख्य कारण है कि अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे हार्मोन की गतिविधियां हैं, तनाव चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, लाइक आप मूवमेंट, सीकेडी मतलब गुर्दा का बीमारी होता है, डायबिटीज हो गया, मोटापा हो गया, स्लीप एपनिया हो गई, गर्भावस्था में होता है, कशिंग सिंड्रोम, हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत, ज्यादा धूम्रपान व नशा करना, ल्यूपस रोग एक होता है, उससे बढ़ती उम्र या ज्यादा नमक व मसालेदार खाना खाना, रक्त से जुड़ी हुई अन्य समस्या या हृदय से जुड़ी हुई कोई समस्या, थायराइड की समस्या आदि इसके मुख्य
0: कारण है। मतलब इतनी सारी चीजों के कारण उच्च रक्तचाप हमको यानी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है।
1: जी जी।
0: सर क्या एक ही तरह का होता है या कई तरह का उच्च रक्तचाप होता है?
1: हम इसको कई तरह के मानते हैं, जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन, इतनी तरह के हम मानते हैं।
0: हाँ, इतने तरह के उच्च रक्तचाप भी होते हैं।
1: हम बताना चाहेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन में अधिकतर ये जो है युवाओं में होता है।
0: अच्छा।
1: इसमें कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देता है, बल्कि लगातार अनियमित जीवन शैली की वजह से धीरे धीरे समय के साथ जो हो जाता है, इस तरह का बीपी का बढ़ने का कारण आम होता है, जैसे मोटापा, नींद की कमी, अत्यधिक गुस्सा, तनाव, मांसाहारी या अत्यधिक तेलीय पदार्थ का लेना, अस्वस्थ कह लीजिए, अस्वस्थ खान पान के कारण से हो जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है वो आप यूं कह सकते हैं कि शरीर में किसी रोग के कारण या किसी स्थिति के कारण जो होता है उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। नींद के तरीके, किडनी की समस्या, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर होता है, थायराइड प्रॉब्लम, ब्लड वेसल्स में कुछ जन्मजात दोष होते हैं ब्लड वेसल्स में, और गर्भ निरोधक दवाइयां या सर्दी जुखाम की दवाओं के कारण से अधिक जो सेवन करते हैं उसमें, अधिक शराब पीना, सिगरेट पीना, मतलब जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे एम्फेटामिन होता है, कोकेन होगा, का सेवन करने से हो जाता है।
0: ओहो, माने इससे दवाओं से भी बढ़ सकता है।
1: वो सेकेंडरी, उसी को सेकेंडरी कहते हैं। इसी के कारण से ये हो जाता है तो सेकेंडरी कहते हैं। और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, उसको जब गर्भावस्था के दौरान बीपी बढ़ता है, इसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसे भ्रूण पर घातक असर पड़ सकता है। और अब आ जाएगी रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन, जब बीपी की 3 दवा लेने के बावजूद भी
0: सर
1: मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना हो तो उसे रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन कहते हैं,
0: मैंने ठहर गया जो।
1: जी जी, ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें जान जाने का भी खतरा होता है,
0: यानी किसी दवा का कोई प्रभाव भी उस पर नहीं हो रहा
1: है। हाँ, 2-3 दवा देते हैं उसके बाद भी बीपी नहीं नॉर्मल आता तो उसको हम रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन कहते हैं।
0: अभी डॉक्टर साहब आपने बताया कि बच्चों में ये होता है और उससे बड़े में ये होता है, बुढ़ों में ये होता है।
1: जी जी।
0: जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को 140-90 है और एक व्यक्ति को 100-160 या इससे आगे पीछे हो जाता है,
1: बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं
0: सर, इसको किस तरह से देखेंगे?
1: हम स्टेजेस में कह लेते हैं कि प्री हाइपरटेंशन कह लीजिए, तो जब बीपी 120/80 से 139/89 के बीच होता है तो इस स्थिति के लिए दवा की जरूरत नहीं होती है। इसमें जीवन शैली में बदलाव पर निर्भर करना होता है, इसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। स्टेज 1 में आ जाता है 140/90 से 159/99 के बीच होता है तो इसको प्री स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें आप हाइपरटेंशन की सीमा के जोखिम मतलब इसके की एक सीमा जोखिम होता है।
0: हाँ, हाँ, बिल्कुल।
1: उसमें आपकी दवाइयां जीवन शैली में परिवर्तन की जरूरत पड़ती है।
0: जी।
1: स्टेज 2 में जब बीपी 160/100 से करीब 179/119 के बीच होता है
0: जी,
1: तो इसमें आपको मेडिसिन और स्ट्रिक्ट डाइट प्लस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तीनों की जरूरत पड़ती है।
0: ओहो।
1: और हाइक होता है हाइपरटेंशन क्राइसिस, जब बीपी 180/120 से ऊपर हो जाता है, इस स्थिति को हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं, एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है।
0: मैंने इसको इसके मैनेजमेंट की सख्त आवश्यकता होती है।
1: जी जी जी।
0: एक बात और पूछा जाता है सर, जैसे महिलाओं में है, महिलाओं में चाहे घरेलू महिलाएं हो या कामकाजी महिलाएं, इनमें अक्सर ब्लड प्रेशर के बारे में सुना जाता है, इसका क्या कोई विशेष कारण है?
1: जी जी। महिलाओं में हाई बीपी बढ़ने के 3 मुख्य कारण होते हैं,
0: जैसे
1: गर्भावस्था, मेनोपॉज या गर्भ निरोधक गोलियां, 3 इसके मेन कारण होते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में हाई बीपी की समस्या प्री एक्लेम्सिया का संकेत हो सकता है। प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी संभावित खतरनाक स्थिति होती है जो गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे को प्रभावित कर सकती है। प्री एक्लेम्सिया के दौरान होने वाले बीपी के लक्षण सिर दर्द, दृष्टि में परिवर्तन, पेट दर्द, एडिमा के कारण शरीर में सूजन हो जाना हो सकता है। प्री एक्लेम्सिया से बचने के लिए महिला को शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से तनाव से दूर रहना चाहिए। और ये इसके 3 मेन कारण,
0: 3 मेन कारण। डॉक्टर साहब, अभी किशोरों में भी ये देखने को मिल रहा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, उनके में भी अक्सर उच्च रक्तचाप की शिकायत होती है।
1: बहुत ही सही सवाल आपने किया है कि ये हमारे समाज को बहुत ज्यादा उसमें बच्चों को मोटापा पैदा कर रहा है, तो इसमें जैसे मोटापा, ज्यादा जंक फूड लेना, ज्यादा जिम जाना, आजकल देख रहे हैं जिम जाते जाते लोग
0: दुर्घटनाएं हो जा रही है,
1: उसमें यह है कि ज्यादा कोई चीज नहीं है, ज्यादा मोटापा हो जाए वो

0: है, ज्यादा जंक फूड लेना वो भी कारण हो सकता है, जिम जाना वो भी कारण हो सकता है, शारीरिक और मानसिक तनाव भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, टाइप 2 डायबिटीज, गुर्दे की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, एंडोक्राइन कंडीशंस जो होती हैं, डिजीज कह लीजिए जो हार्मोन को प्रभावित करती है, वैस्कुलर डिजीज जो रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है, ये सब जो किशोरों में जानलेवा
1: साबित हो सकता है। एक चीज और पूछना चाहते हैं सर कि नवजात शिशुओं
0: जी
1: में चाहे छोटे बच्चों में भी क्या उच्च रक्तचाप हो सकता है?
0: सही सवाल आपने किया, नवजात बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है ब्लड प्रेशर, लेकिन सामान्य तौर पर बच्चों में कम दिखाई देता है। अगर बच्चों में लगातार सिरदर्द, थकान, धुंधली नजर, नक्सीर के लक्षण दिखाई दे तो हाइपरटेंशन हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है। कारण मोटापा, डायबिटीज, ट्यूमर, हृदय या गुर्दा, थायराइड की बीमारी या अनुवंशिक स्थिति जैसे कि कशिंग सिंड्रोम होता है, ये हो सकता है।
1: मैंने इसको विशेष जांच के द्वारा ही हम जान सकते हैं।
0: जी जी जी,
1: ये जो उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, इससे अगर ये बढ़ गया तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं?
0: इसमें तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं।
1: जी, जी।
0: जैसे कि खून के थक्के बन जाएं, धमनी विस्फार कहते हैं उसको, एनोरिज्म कहते हैं मेडिकल टर्म में, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, दिल की भी विफलता, हार्ट फेलियर हो सकता है, पापचई सिंड्रोम हो सकता है, मस्तिष्क गतिविधि और स्मृति समस्याएं, आंखों में मोटी सक्रिय व फटी हुई रक्तवाहिकाएं हो सकती, किडनी फेलियर हो सकता है,
1: इतनी समस्याएं इसमें हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहते हैं सर।
0: जी जी जी।
1: इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या उच्च रक्तचाप हो जाने से जीवन छोटा हो जाता है?
0: बिल्कुल, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर के साथ आप लंबा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। यदि आप हाइपरटेंशन का इलाज नहीं करते तो एक वर्ष के भीतर मृत्यु की संभावनाएं हो सकती हैं,
1: अधिक असावधानी से।
0: हाँ, मृत्यु की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर की औसत जीवन रहने की दर जो है 10 महीने की है, और इसको नियंत्रित किया जा सकता है
1: दवाओं से,
0: क्योंकि हाँ, या एक क्रोनिक बीमारी स्थिति है जब 90% रोगियों में इसका कारण ही अज्ञात होता है।
1: सर, अगर हम ब्लड प्रेशर का अपने उचित डॉक्टर से उचित इलाज ले रहे हैं तो हमारे संभावना जीवन की दीर्घ हो सकती है, छोटा नहीं होगी, घटेगी नहीं?
0: नहीं, क्या पूछा?
1: मैंने एक लंबा जीवन जी सकते हैं।
0: हाँ, लंबा जीवन जी सकते, बिल्कुल जी सकते।
1: अगर
0: आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे और डॉक्टर से बराबर कंसल्ट करते हैं, दवाई खाते रहेंगे, तो लंबा जीवन जी सकते।
1: तो इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं?
0: साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया उस पर तो साइलेंट किलर का काम कर सकते। जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे आपके स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ये धीरे धीरे कब बढ़ जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसमें शुरुआती समय में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, और जब तक पता चलता है तब तक किसी केस में बहुत देर हो जाती है। तो जैसे कि हार्ट फेलियर हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और 5 में से 1 व्यक्ति की समस्या कंट्रोल में होती है।
1: हाँ।
0: ये अकाल मृत्यु का एक प्रमुख कारण होता है, इसीलिए हम लोग सब कहते हैं कि आप 6 महीने में 1 बार अपने शरीर का पूरा जांच कराइए, और उस वक्त जांच होगी तो ब्लड प्रेशर वगैरह सब पूरा जांच हो जाएगा, पैथोलॉजिकल जांच हो जाएगी, ब्लड टेस्ट हो जाएगा, डॉक्टर साहब जो होंगे आपके पूरे शरीर का जांच कर लेंगे तो पता चल जाता है। कुछ लोग को बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हमको ब्लड प्रेशर है और सिर दर्द होता रहता, दवा लेकर खा लेते हैं और वही
1: घातक बन जाता है।
0: हाँ, अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है।
1: इसका बचाव कैसे कर सकते हैं?
0: ये बहुत सही सवाल है आपका। जन्मजात समस्या से उत्पन्न ब्लड प्रेशर को छोड़कर अन्य कारणों से उत्पन्न ब्लड प्रेशर बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। इसके लिए आहार में उचित परिवर्तन करें, जैसे कि नमक या मसालेदार चीजें कम खाएं, प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिए, खाने के समय उस समय ज्यादा पानी नहीं पिए, उसके बाद पानी पिए, लेकिन 8 गिलास से कम पानी पिए, जंक फूड से बचें, और फल जैसे कि बेरीज हो गया, केला, तरबूज हो गया, अनार, सेब, संतरा,
1: ये सब खा सकते हैं।
0: टमाटर, नींबू फायदेमंद हैं। साबुत अनाज जैसे फलियां, नट्स हो गए, मछली कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। चाय हो गया, चाय में आप ब्लैक टी आ जाए, ग्रीन टी आ जाइए, ये सब गुड़हल की चाय जिसको कहते हैं, लेमन टी, ये सब आप ले सकते हैं, और 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें,
1: ये बहुत जरूरी है सर। इसके लिए रोकथाम के लिए कुछ उपाय भी है सर?
0: हाँ, बिल्कुल है। जैसे कि आप एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करके अपने रक्तचाप को सामान्य रख सकते हैं
1: सर।
0: एक स्वस्थ वजन बनाए रखना, एक सामान्य और पौष्टिक आहार लेना, शारीरिक गतिविधियों जैसे फिजिकल एक्सरसाइज में लिप्त होना, तनाव के स्तर को कम करना, प्रबंधित करना, शराब यानी वाइन को सीमित करना, धूम्रपान से बचना, कैफीन को कम करके ब्लड प्रेशर को रोका जा सकता है। अगर आप तनाव महसूस करते हैं तो प्राकृतिक मतलब एक योग करें।
1: हाँ।
0: और संगीत सुने, मेडिटेशन करें,
1: बिल्कुल
0: आप
1: सर,
0: काफी हद तक
1: इसे बचाव हो सकता है।
0: हाँ,
1: यानी स्वस्थ जीवन जिए और मन को प्रसन्न रखें।
0: जी जी।
1: तो आप जो है यही बचाव के उपाय है इसके। डॉक्टर आनंद गुप्ता जी, आप आकाशवाणी की स्टूडियो आए और आपने उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं और उससे बचने के उपाय इस संबंध में हमारे श्रोताओं को कुछ विशेष

0: जानकारी दी। इसका आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वेलकम।
2: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें हमने अभी आपको सुनवाई भेंट वार्ता, उच्च रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं और उसका समाधान। जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आनंद गुप्ता और इनसे बातचीत की संजय धर द्विवेदी ने। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी वार्ता थी, बहुत जानकारी वाली। और अब मुझे लगता है कि अपने दिल को थोड़ा सा आराम देने के लिए चलिए ढूंढ कर लाते हैं अपने दिल का चैन।

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-17।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से एक बार में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, और अब समय हो गया है कि हम आपको जोड़े समाचार पत्रों से। तो समाचार पत्रों से जिन खबरों को निकाल कर हम आपके लिए लाए हैं, उसमें पहली खबर है कि सरयू तट स्थित अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की जानकारी के साथ मूर्तियों का भी दर्शन प्राप्त होगा। इसके लिए एक संस्करण से डिजिटल गैलरी बनाई जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट ने संग्रहालय में निर्मित हो रहे 20 गलियों में एक गैलरी को आरक्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को विस्तार देने का कार्य किया जा रहा है। इसमें लगभग 20 गैलरियां होंगी, जिसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 3D और 7D के साथ एक इनवर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। और इसी क्रम में आगे जब हम बढ़ते हैं तो मिलती है हमें एक और खबर कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के लखनऊ अयोध्या गोरखपुर मार्ग पर अत्याधुनिक एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे इस पूरे कॉरिडोर पर 24 घंटे निगरानी होगी, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और यात्रियों को रियल टाइम जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। NHRI के अयोध्या परियोजना निदेशक ने बताया कि इस परियोजना के तहत हाईवे पर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। CCTV, PTZ कैमरे, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, व्हीकल एक्यूएटेड स्पीड डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, मौसम निगरानी संयंत्र, इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम और NNPR कैमरे सहित कई आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इनकी मदद से यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। और समाचार पत्रों से ही में एक और खबर है आपके लिए कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शिक्षण सत्र 2026-27 में 18 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 13 मई से फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अंतिम तिथि 13 जून निर्धारित की गई है। आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.nduat.org पर उपलब्ध है। कृषि विद्यालय में वर्ष 2026-27 में कृषि पर्यटन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जैविक कृषि में डिप्लोमा, मशरूम उत्पादन प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट कोर्स, जैव उर्वरक उत्पादन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, मधुमक्खी पालन में सर्टिफिकेट कोर्स, पादप उत्तक संवर्धन में सर्टिफिकेट कोर्स, बागवानी में डिप्लोमा जैसे अनेकों कोर्स उपलब्ध है। तो आप इस साइट पर जाके, जिसे मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ आपके लिए, www.nduat.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और कोर्स के बारे में अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के कार्यक्रम में समाचार पत्रों से, और इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारी जानकारियों के साथ हमारे आज के प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। तो दीजिए हमें इस कार्यक्रम से अनुमति।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण बातें। अधिक गर्मी वाले समय विशेषकर दोपहर 12 से 3 बजे के मध्य सूर्य की सीधी रोशनी में जाने से बचें, नंगे पैर बाहर ना निकले, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग से यथासंभव बचे और बासी भोजन का प्रयोग ना करें, बच्चों और पालतू जानवरों को खड़ी गाड़ियों को में ना छोड़ें, गहरे रंग के भारी और तंग कपड़े ना पहने, जब बाहर का तापमान अधिक हो तब अत्यधिक शारीरिक परिश्रम का कार्य ना करें, अधिक गर्मी वाले समय में खाना बनाने से बचें, रसोई वाले स्थान को ठंडा रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दें, शराब चाय कॉफी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक आदि का उपयोग करने से बचे, क्योंकि ये शरीर में निर्जलीकरण करते हैं। तो श्रोताओं, ये वो बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम हीट वेव से अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि मौसम तो वैसा ही रहेगा जैसा उसे रहना है, बस हम अपनी आदतों में सुधार करके उसका सामना कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर, और अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
2: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
3: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
2: हरियाई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद,
3: फोन नंबर 91-61-877-347।
4: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: हाँ, फीस की टेंशन।
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
7: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
6: वो कहाँ है?
7: मिठाई।
8: RBI कहता है
9: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: आकाशवाणी अयोध्या से कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फरमाइशी संदेशों के साथ, और सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। हमारे श्रोता हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा, और हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म भीगी पलके का गीत। कार्यक्रम में शामिल करते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म भीगी पलके से ये गीत।

आकाशवाणी अयोध्या से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। और कार्यक्रम की जो अगली फरमाइश है वो है फिल्म दयावान के गीत के लिए। और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं ग्राम चौहल्दा बागपत से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। तो आइए कार्यक्रम में आप शामिल करते हैं फिल्म दयावान का ये गीत, जिसे आवाज दी है अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास ने।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। और कार्यक्रम में अब समय है कि हम एक और फरमाइश को शामिल करें और वो फरमाइश है फिल्म हीरा पन्ना के गीत के लिए। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हीरा पन्ना से ये गीत।

ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
1: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: आकाशवाणी अयोध्या से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, और कार्यक्रम की अगली फरमाइश है फिल्म प्रेम गीत के लिए। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं द्वारिका दिल्ली से, अमूल आहूजा, रहबी स्नेहा आहूजा, उमंग आहूजा, तरंग आहूजा, बेबी लवीना खट्टर। तो आप सभी की पसंद पर आइए, आप सुनते हैं कार्यक्रम में फिल्म प्रेम गीत से ये गीत।

और दोस्तों आकाशवाणी में इस कार्यक्रम से चलते चलते हम एक और गीत को शामिल करते हैं और वो है फिल्म थ्री इडियट्स से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामघाट अयोध्या से सूरज जगन और राजकुमार वर्मा।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी।

0: कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और आइए अब चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है बातें आस पास की।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
5: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
4: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
5: और साथ में अपना नाम, पता
4: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
5: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
6: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
7: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें आसपास की, और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे प्रकृति आधारित मनोरंजन में रखें सावधानी विषय पर। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर स्थित होने की पूरी तैयारी कर रही है, और यही वो वक्त है जब हमारे बहुत सारे दोस्त अपनी छुट्टियां प्लान कर रहे होंगे। और अगर छुट्टियों को खूबसूरत बनाने की बात हो तो प्रकृति के करीब जाना ही सबसे ज्यादा सुखद लगता है। अब चाहे वो पहाड़ हो, समुद्र का किनारा हो या फिर हरे भरे जंगल हो, हर जगह हमें तब तक आनंदित करती है जब तक हम वहां पर अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं।

तो दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातें आसपास की और आज हम बातें कर रहे हैं प्रकृति आधारित मनोरंजन में रखें सावधानी। दोस्तों प्रकृति आधारित मनोरंजन जैसे कि ट्रैकिंग, कैंपिंग, वन्यजीव सफारी तनाव कम करने और मानसिक शांति के लिए बेहतरीन है, लेकिन इनके दौरान सुरक्षा और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति आधारित मनोरंजन के लिए आवश्यक है कि हम जहां जा रहे हैं वहां के मौसम, रास्तों और स्थानीय वन्य जीवों के बारे में पहले से जानकारी ले लें।

14वां आकाशवाणी अध्याय से हम सुन रहे कार्यक्रम बातें आसपास की और बातें हो रही हैं प्रकृति आधारित मनोरंजन में रखें सावधानी की। दोस्तों, अगर हम प्रकृति के साथ सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें प्रकृति का सम्मान करना भी आना चाहिए। स्थानीय पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, पौधों को न तोड़ें और वन्य जीवों को परेशान न करें। अपना कचरा वापस लाएं और प्रकृति में प्रदूषण ना फैलाएं। जंगली जानवरों या अनजान रास्तों के बहुत करीब ना जाएं। गाइड या स्थानीय निवासियों की सलाह जरूर मानें।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
5: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
6: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
5: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
6: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
7: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
7: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
8: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
9: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातें आसपास की, और हम बातें कर रहे हैं आज प्रकृति आधारित मनोरंजन में रखें सावधानी की। प्रकृति आधारित मनोरंजन में पर्याप्त तैयारी के साथ निकलना हमेशा कारगर होता है। अपने साथ फर्स्ट एड किट, पीने का पानी, पर्याप्त भोजन और आपातकालीन संपर्क नंबर जरूर रखें। मौसम और गतिविधि के अनुसार आरामदायक कपड़े पहनें और सही जूतों का चुनाव जरूर करें।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया थी ना।
2: पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: तो दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से हम सुन रहे हैं कार्यक्रम बातें आसपास की और बातें हो रही हैं प्रकृति आधारित मनोरंजन में रखें सावधानी की। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम तो घूमने निकले हैं यहाँ कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती। अब हमारा ये मतलब नहीं है कि आप ओवरथिंक करने लगे पर कुछ परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहें। कुछ आवश्यक चीजें हमेशा अपने पास रखें चाहे पूरी यात्रा के दौरान उन्हें सिर्फ लाना ले जाना पड़े पर यकीन मानिए जब आवश्यकता पर कोई वस्तु ना मिले तो पछतावा होता है। सुरक्षा उपायों की अनदेखी कभी भी ना करें इसीलिए अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि स्थान दें क्योंकि आप खास हैं अपने परिवार के लिए अपने दोस्तों के लिए। इसीलिए खूब घूमिए खूब आनंद लीजिए पर सुरक्षित रहिए।

दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आसपास की। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आसपास की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM पर, और साथ ही आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और आइए अब हम ले चलते हैं आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की तरफ, जिनका अनुप्रसारण कर रहे हैं हम अपने मुंबई केंद्र से।

0: चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
2: अन्ना जी के सिवाय, वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, मैंने
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका नाम था।
1: हाँ हाँ।
2: तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के। यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
1: हाँ हाँ।
2: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ।
1: हाँ।
2: तो आपके घर में नहीं आई।
1: हाँ।
2: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना।
1: हाँ।
2: ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं।
1: हाँ।
2: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं, तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी। तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पर करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठे।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
1: हाँ,
2: नाम
1: हाँ।
2: नहीं बताऊंगी। तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
1: जी, जी,
2: वो
1: जी।
2: पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एचएमवी में।
1: अच्छा।
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समय कालीपास सुर है तो हाँ। खर्च के जो सुर होते हैं,
1: हाँ।
2: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब। तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना, ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल।
1: हाँ।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना।

0: बात हो, वो किसी के भी समझे, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी जी,
0: और ये दोनों में फर्क था हसन जी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कंपोजिशन है, उसमें से कौन सा कंपोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: निर्मला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थी
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ। तो समझ में आता है
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, नहीं, वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के गाए, एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद चारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ हमारा, तो मेरा मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से, तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का,
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा, आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नय्यर साहब का,
1: नय्यर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी, लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: शुक्ला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें, ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा था, खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ हाँ।
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ।
1: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, हाँ। और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा।
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ।
1: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अम्बा, वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं, वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे,
0: अच्छा।
1: उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ।
1: तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया,
0: बिल्कुल।
1: मेरे शो, मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था, मेरे पीछे बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका
0: फोल्डिंग
1: स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था, बहुत बड़ा कटआउट बनाया था, तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लगड़ा था, पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी।
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वो ही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं
0: जी, जी।
1: कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था,
0: हाँ,
1: इंदौर
0: हाँ।
1: के पास मध्य प्रदेश में एक गाँव है,
0: हाँ।
1: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा।
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही है, ऐसा लगता था, तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होके आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ।
1: मेरी मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ,
0: अच्छा।
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा,
0: क्या बात,
1: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, हाँ। ऐसा गाना फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज हाँ किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं

0: लेकिन हाँ, अनुभव से
1: हाँ,
0: आपको मालूम होना चाहिए
1: हाँ,
0: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं एक साथ लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत फिर लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं
1: अच्छा, अच्छा।
0: फिर दो गाने के बाद ये गाना कुंडा सफाज गाना फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़ वो अपने आप हाँ समझना चाहिए वो सिखा
1: अच्छा,
0: के नहीं आती बात
1: अच्छा, अच्छा।
0: और जहाँ तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गाँव में छोटे से गाँव में भी तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को किस ये गाने चाहिए
1: अच्छा
0: तो होने से ज्यादा अच्छा होता था
1: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है महसूस होता है
0: फर्क नहीं अच्छा लोग पसंद करते थे
1: अच्छा,
0: ये है अच्छा लगता क्योंकि रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो वो बिल्कुल मतलब ये था मुझे याद नहीं लगता लेकिन लोगों को पसंद आते थे पहला प्रमिला भी अच्छे गाती है आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या ये सब पूछते थे फिर आके
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी
0: वो रफी साहब का गाना एक दुगाना है 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
1: जी, जी,
0: तो वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना मैं बताती हूँ आपको
1: हाँ, हाँ।
0: रफी साहब पहले शुरू करते थे
1: जी।

0: गया फिर जानी इसकी अरे परसों भी रहेगा अरे तरसों भी क्या जानी भाई आप इधर लगे पूना गाने का लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था मजा आता था लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं ये गाना सुन लेते हैं
0: जरूर

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा ना,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी।
1: फिर भी आखिर में क्या हम दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ,
1: ये होता है, ये ठपका दोष आता है, इसलिए वो अगर होता था, लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी
0: जी, जी, जी।
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पुणे के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मोरार्ची को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो वो सब एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी
0: है,
1: दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में
1: शालीनता हो
0: तो जरूर, सवाल ही नहीं, बहुत सुंदर होता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनके कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते थे,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे
0: कंपनी के लिए,
1: कंपनी के लिए बहुत शो हुए।
0: अच्छा,
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल स्टेट मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे, नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
0: जी जी, प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं, सबका अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है, ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, किन कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा,
1: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा,
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है, ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
0: अच्छा,
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचने गाने, तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुख में सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा सा दुलिया के पास,

0: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, आमिर खान साहब की गाई हुई है वो। तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए हैं मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा। म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
1: तो श्रोताओं
0: जो गाने बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से,
1: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है, तो उनके दिमाग में वैसा वो सुनना चाहते हैं।
0: अभी वो गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरा टरा टरा, वो आना ही चाहिए ऊपर, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
1: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
0: जी,
1: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
0: सही बात,
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वो ही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए
1: जी।
0: तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था सालों साल तक
1: जी।
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, तो शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
1: अच्छा
0: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन एक काल के हिसाब से तो बदली हो जाएगा
1: जी।
0: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: बस दूसरी रिहर्सल नहीं, हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो बात जी। तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
1: जी।
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी।
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड, उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको भी बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है, ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और
1: जी।
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया इसको शो को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मनके बोलूंगी,
1: विनय मनके जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मनके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी,
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे, बहुत सारे जिंगल गाए उसने, और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है वो था, बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे
1: जी,
0: नॉट दैट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो ये कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा, फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा
1: बहुत अच्छे।
0: फिर एक गाना था अन्ना जी का, भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी, फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता,
1: मस्ती के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाने थे उसको, बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं, कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए पड़वा के शो, वसंतदा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए, वो बड़ा शो हुआ करता था, और तो मैं किसी को बुलाती थी
1: जी।
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी,
1: हाँ।
0: प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात, तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो भार्गव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: आई, फिर मुझे उन्होंने पूछते है कि कसा भाव तुम्हें अच्छे प्रोग्राम करता है, उड़े प्रवास कराया पर गायला उभा रहा कसो करता, मुझे नहीं अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए।

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ा ला पिकला आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: मसला बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, नमुना बघून तुम्ही

0: पाउनु पाउन जरा थाम्बा हो पाउन जरा थाम्बा हार घे पडाल पिकलाई अम्बा आलवाई पडाल पिकलाई अम हो निट बग पडाल पिकलाई अम्बा कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी।
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ा पिला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से मजा आता था उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया उनको भी शायद दादा
1: प्रमिला जी आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
0: गाती थी हाँ।
1: और अपने लिस्ट में
0: कनाडा गाना सुना सुनाती हूँ
1: जी जी जरूर
0: मेरी लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ।

0: ये गाना बहुत उधर है। और उधर गुजरात की एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे।
1: हाँ।
0: तो उधर एक एरिया है सूरत में, मां जब सब काठियावाड़ी ने वो झबला पहनते हैं,
1: हाँ, हाँ,
0: शॉर्ट,
1: हाँ,
0: वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव

0: और सर बीड़ी पी रहा था. तो बीड़ी पी रहा था तो बाह ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए. ए प्रेमिला बहन, नवो पिक्चर ना गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ. तो मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर. इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें. तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए तुम में भी, जवाब देना या कुछ बोलना.
1: 1975 में जो शुरुआत हुई, उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई, हाँ जी, लिस्ट हाँ बनाई, हाँ जी, है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: और तब की जो उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें. अच्छा? जो लोग पसंद करते थे.
1: अच्छा?
0: हमारे लिए नहीं.
1: हाँ?
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर. लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे.
1: अच्छा?
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे. अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए. लेकिन एक अवरी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, पाड़ा ला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी.
1: अच्छा.
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वही गाने चाहिए लोगों को.
1: वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था.
1: बहुत मजा आया आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन करके.
0: हाँ जी
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, और ऊपर वाले का ये करम है कि आज आप यहाँ पर
1: हरी और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता दौर बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: इतना नहीं जानती, 3 बजे तो सारी सखियाँ कहीं आती जाती नहीं, क्योंकि वो सुनती है
1: सखी सहेली।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: सुन यार पिंकी, ठीक 3 बजे मॉल पे मिल। वो क्या है ना, सेल चल रही है और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है।
1: अरे देख यार, तू कोई और टाइम रख लेना, 3 बजे तो मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ।
0: कहीं आती जाती नहीं, ऐसा क्या करती है तू 3 बजे?
1: अरे

0: विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार। मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूँ कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया
0: आप लोगों ही उसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार मिल रहा है
1: और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथों से बटोरते हैं। एक बहुत मशहूर शेर है अमर जी, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बहुत ही मशहूर शेर है।
0: जी बिल्कुल सही शेर है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर नियत अच्छी है, आप में हिम्मत है, आप में लगन है और अगर आपने इन सब के साथ एक कदम बढ़ा दिया है तो यकीन जानिए कुछ कदम चलने के बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप अकेला नहीं पाएंगे खुद को।
1: बहुत सही फरमाया आपने और इस शेर को हमारे श्रोताओं के लिए जब मैंने पढ़ा तो उसकी वजह ये थी कि इसे लिखने वाले एक मशहूर शायर का जिक्र आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी, उनका ये बहुत मशहूर शेर है।
0: जी, और इस शेर को अगर मैं विविधा से जोड़ दूं तो
1: ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी।
0: अब देखिए, वो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ उसको कि विविधा भी विविध भारती के इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अकेली शुरू हुई और अकेले धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज जब वो मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि मेरी तो एक अलग जगह बन गई है। और ये अलग जगह बनाने वाले हैं आप।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता। तो असरारुल हसन खान साहब, यानी जिन्हें हम सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, श्रोताओं 24 मई उनकी याद का दिन है।
0: लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एक बहुत लंबी पारी मजरूह साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन, शायरी, सब कुछ तो मजरूह साहब की कलम से निकला और ऐसा निकला कि आज भी लोगों के जहन में, लोगों के होठों पर रहता है। 1 अक्टूबर 1919 को जन्म हुआ मजरूह साहब का।
1: जी जी।
0: और 24 मई सन 2000 को मजरूह साहब ने इस बड़े से कारवां से अपने आप को अलग कर लिया।
1: लगभग 6 दशकों तक मजरूह साहब फिल्मों में लिखते रहे। नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस जी बर्मन जी, रोशन साहब, रवि साहब, एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ओ पी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनु मल्लिक, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, न जाने कितने नाम। और अब आते आते आते आते पता चलता है कि 80 के दशक में मजरूह साहब आनंद मिलिंद के लिए लिख रहे हैं, जतिन ललित के लिए लिख रहे हैं, यानी लगभग 2 पीढ़ियों तक उनका काम चलता रहा।
0: यही बात मैं कहने वाला था कि पिता के साथ भी काम किया है, पुत्र के साथ भी काम किया है और पिता के जमाने में जो फिल्में थी वो भी उनके कलम से यूं निकली जैसे उन्हीं के लिए निकली हैं जो सुनने वाले हैं। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने लिखे तो ऐसा लगा कि आज की जनरेशन के ही हैं मजरूह साहब।
1: बिल्कुल।
0: तो ये खासियत मजरूह साहब की रही है। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको, मनीषा जी, जनरली होता क्या है, आदमी जब अपना स्ट्रगल शुरू करता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, तो वो धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करता है और फिर ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन मजरूह साहब वो फनकार रहे हैं जिनकी शुरुआत छक्के से हुई, यानी जो सिक्सर मारा है उन्होंने।
1: जी जी जी।
0: एक जमाना कुंदनलाल सहगल साहब का था और मजरूह साहब ने जब पहला अपना करियर शुरू किया तो वो करियर जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुस्तकिल, अरे साहब, नौशाद साहब का संगीत,
1: क्या बात है,
0: और यहाँ तक उनको पहुँचाया था कारदार साहब ने।
1: बिल्कुल। और एक गजल है मजरूह साहब

0: अब हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। क्या लाफानी गजल, वाह।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अगर गुनहगार की तरह खड़ी नहीं होना चाहती हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द से जल्द मजरूह साहब की कोई रिकॉर्डिंग सुनवाइए, वरना हमें गुनहगार करार दे दिया जाएगा।
0: तो श्रोताओं, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वही रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग की खास बात है, हम अपने श्रोताओं की ही फरमाइश पर इस रिकॉर्डिंग को इसके पूरे अनाउंसमेंट के साथ सुनवा रहे हैं। एक जमाने में चित्रशाला प्रोग्राम हुआ करता था, 5 मिनट का, याद है ना अमर जी?
1: मेरी खुशकिस्मती है कि उस समय मैं था
0: जी,
1: और मैंने भी कई चित्रशाला उनमें अपनी आवाज दी है
0: जी। हाँ।
1: लेकिन खास बात यह है कि आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें हमारी बेहतरीन अनाउंसर, हिंदुस्तान में जिनका नाम हाउस होल्ड माना जाता था, हर घर में वो नाम लोग जानते थे, और वो नाम था कांता गुप्ता। हालांकि उनका पूरा नाम था चंद्रकांता गुप्ता
0: जी। हाँ, लेकिन वो मशहूर थी कांता गुप्ता जी के नाम से। तो शुरुआत में श्रोताओं आप सुनेंगे अनाउंसमेंट कांता जी की आवाज में, और बाद में है मजरूह साहब की आवाज।
2: चित्रशाला, आज इस कार्यक्रम में सुनी मजरूह सुल्तानपुरी से टिप्पणी सहित एक गजल।
3: अर्ज करता हूँ, देखिए हमारी जिंदगी बड़े हुदूद में रहती है, इसके बावजूद इंसान अपने एस्थेटिक सेंस के बदौलत उस थोड़े से अरसे को जिसे जिंदगी कहते हैं बड़ी कारामत बहुत खूबसूरत बना लेता है, ये जानने के बावजूद। तो चूंकि गजल की जबान इश्क की जबान है, इसलिए हमारी अलामतें भी जो होती हैं उसी तरह की होती हैं, इश्क और माशूक की अलामतों से। लेकिन उसमें सिर्फ मैं महबूब का जब जिक्र करता हूँ तो गोया वो सिंबलाइज करती है हमारे एस्थेटिक सेंस को। तो अर्ज किया है कि गो रात मेरी, रात जिसे बुजुर्गों ने उम्र कहा है, जिंदगी कहा है, गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सुबह तक चलेगी जरूरी नहीं है शायद सुबह ना देखे, सुबह के साथ खत्म हो जाएगी। गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है, ये रंगे है ना, ये हमारे एस्थेटिक सेंस को प्रवोक करने वाले मजाहिर, ये चीजें जो जब तक जिंदा है, हमारी रात रात रहे, हमारी जिंदगी रात रहे, सुबह हम देखें या ना देखें हम इसी में उजाला पैदा कर लेते हैं। कि गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। इंसान साहब बड़ा ही खुदगर्ज है, तो इतना गम इतना रंज जो हमें गवारा है वो शायद उसमें भी कोई लाग है कि इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, काकुल जुल्फ, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, कि कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है। चाहे वो किसी का हो लहू, अर्ज किया है कि चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। देखिए एक शेर मुलाहजा कीजिए कि हमारे यहाँ गमे दुनिया और गमे इश्क को दो खानों में रखा गया है। खुद गालिब ने भी कहा है कि गमे इश्क गर्म होता गमे रोजगार होता, मुझे दोनों में एक रिश्ता नजर आया। देखिए शायद ये चीज आपको पसंद आए, कुछ नया एक अंगिल है इसमें, मुझे दोनों एक ही लगे हैं। कि अब कार गए दहर में लगता है बहुत दिल, अरे दोस्त कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। अर्ज किया है कि इसमें देखिए हम लोग जब मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मैं एक सिंबल होता है एक मैनकाइंड का, आम इंसानियत का। तो ये कहा है कि इस कायनात के जो मौजूदात हैं, ये जो मौजूदात हैं इनमें इंसान अहम तरीन चीज है, उसने दुख भी सबसे ज्यादा उठाए हैं सुख भी सबसे ज्यादा उठाया है। तो अर्ज किया है कि सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी, सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी, हमसा कोई आवारे आलम तो नहीं है। शुक्रिया।
1: तो ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने कांता जी के साथ भी काम किया है
0: जी।
1: और अब ये चीज तो क्लियर हो गई मनीषा जी, कि हम अपने वादे के अनुसार न सिर्फ गाने सुनवाते हैं बल्कि

0: ऐसी शानदार और जानदार आवाजों में उनकी अपनी बातें, उनके अपने ख्यालात तक हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो अब आप ये बताइए कि मजरूर साहब की अपनी आवाज में जो ये रिकॉर्डिंग हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाई है, कुछ और भी है आपके पास?
1: बिल्कुल है, और यही हमारी भी खुशकिस्मती है। एक इंटरव्यू है, और हमारी विविध भारती के ही एक और अनाउंसर जो हुआ करते थे, खुद शायर अहमद वसी साहब, उन्होंने बातचीत की थी मजरूह साहब से। तो आइए इस बातचीत को भी हम आज सुनवाते हैं। तो श्रोताओं की खिदमत में पेश है ये रिकॉर्डिंग।
2: मजरूह साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आप यूपी की फजा में पले बढ़े, जवान हुए, लखनऊ में आप बाकायदा हकीम की हैसियत से
3: जी
2: यानी जाने जाते थे, फिर बंबई कैसे आपने हिजरत की या माइग्रेट हुए, यहाँ आने की क्या वजह हुई?
3: साहब, मेरी जिंदगी कुछ बड़े दिलचस्प हादसों से गुजरी है
2: जी।
3: मिसाल के तौर पर मेरी खानदानी हैसियत एक खाते पीते किसान की है। हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे, मगर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते वो किसान की हालत रह गई। सुल्तानपुर में हमारी पैदाइश जो किसानों की जिंदगी और सामाजिक हैसियत से हुई, और कांधे पर लाठी लेके चलना
2: जी।
3: और हमारे यहाँ ठाकुरों की वो सारी रस्म और रिवाज बाकी थे उस वक्त तक, धोती पहनना, कुर्ता पहनना, लाठी लेके चलना। अब
2: शायद यही बागपन जो है आपकी शायरी में है, और आपका ये शेर की सर पर हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ, शायद ये उसी का
3: वो हम लोगों का मिजाज
2: नतीजा है।
3: जी हाँ, हम लोगों का मिजाज वो है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही तजिया किया। तो साहब, ये सन 21 में जब खिलाफत तहरीक चली अंग्रेजों के खिलाफ, उस जमाने में विदेशी कपड़े जला दिए जाते थे, विदेशी हर चीज का बायकॉट शुरू हो गया था
2: जी।
3: और तहरीक से गांधी जी भी मुत्तफिक हो गए थे वक्ती तौर पर। तो मेरे वालिद ने यह तय किया कि साहब मैं उनका अकेली औलाद उनकी
2: जी,
3: उन्होंने ये कहा कि साहब मैं अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। चुनाचे मेरी तालीम हुई अरबी फारसी की। अब वो हवादिस की बात कर रहा हूँ। अरबी फारसी की तालीम होने के बावजूद मैं मौलवी न बन सका, और वहां से रिस्ट्रिकेट हुआ अपनी आजाद अरबी पर
2: जी।
3: और रिस्ट्रिकेट होने के बाद फिर मैं चला आया लखनऊ, और वहां मैंने तिब की तालीम हासिल की। तिब की तालीम हासिल करने के बाद मैंने कुछ दिन तबाबत की भी, और कामयाब तबाबत की। लेकिन साथ ही साथ मेरे सुल्तानपुर में, जैसे कि उस जमाने में अवध के हर कस्बे कस्बे में शायरी शेर शायरी का माहौल रहता था तकसीम से पहले, मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी, और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। तो जाहिर है कि ये दाद जो है ऐसी रिश्वत और ऐसा ढोस है
2: जी।
3: चुनाचे हुआ यही कि मेरी प्रैक्टिस पर असर पड़ने लगा, और मैं शायरी और मुशायरों में ज्यादा जाने लगा।
2: यानी शायर जो था वो हकीम पे हावी होने लगा।
3: हकीम पे हावी होने लगा और हो गया आखिरकार
2: जी।
3: चुनाचे ऐसे ही घूमते घामते हमारे कुछ दोस्त अहबाब लेके हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहाँ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, जो हमारे बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े साहिब तर्ज थे, उन्होंने भी सुना, और उन्होंने कहा मुताला कीजिए। तो मैंने कहा साहब सुल्तानपुर में तो मुताले की कोई गुंजाइश है नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। खुदा जाने उनके जी में क्या आई, हालांकि उनके पास मुझ जैसे हजारों पहुंचा करते थे, इसमें कोई शुबाई नहीं। और ड्यूटी सोसाइटी जो ऐसे तलबा जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, उनकी देखरेख के लिए और उनकी फीस अदा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए एक ड्यूटी सोसाइटी थी।
2: अच्छा,
3: उसके चेयरमैन
2: थे।
3: तो उनको ऐसे लड़कों की कमी नहीं थी जिनको अपने यहाँ रख लेते, मगर किसी से ना कहा, मुझसे कहा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ जाइए।
2: अच्छा।
3: तो मैं वहाँ तीन साल रहा सन 44 के आखिर तक
2: जी।
3: सन 45 में एक मुशायरा बम्बई में हुआ तो जिगर साहब वहाँ से गुजरे, और मैं उनके जेरे साया शेर तो पहले कहता ही था
2: जी,
3: लेकिन गजलें कहने की तरफ उनके जेरे साया राजी हुआ। हालांकि मुझसे किसी ने कहा कि तुम गजलें कहो, लेकिन वहां पर जो सुनने वाले आते थे, मौलाना असद मोहाली, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन,
2: दानिश्वर
3: बड़े बड़े आते थे, और रशीद साहब शाम के खाने पर मुझे और जज्बी को दो को बुला लिया करते थे, और हमें शेर सुनाने पड़ते थे
2: जी।
3: तो पहले मैं मुशायरे मार शायरी किया करता, जैसे आप बहुत से मुशायरे के चौरा को देखते हो, मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी। मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ संजीदगी से बात चलेगी, इन लोगों से दाद लेनी है तो फिर ये मुशायरे उछारे का चक्कर छोड़ो, जरा कुछ समझबूझ की बात की जाए। वहां से दरअसल मगज आना शुरू हुआ मेरी शायरी में, थोड़ा बहुत
2: शऊर आया।
3: हाँ, शऊर आया, लेकिन उस शऊर की कोई संत मैयत नहीं थी, और बस शऊर एक ऐसा कि कोई मुसबत बात, कोई अच्छी बात, कोई चाहे वो इश्क की हो, जमालियात की हो, समाजी हो, अखलाकी हो, लेकिन सियासी हो, लेकिन वो मुस्बत हो, मनफी बात ना हो,
2: नेगेटिव
3: नहीं हो। हाँ लो, इतना तो जरूर।

0: पॉजिटिव एटीट्यूड।
1: अच्छा, तो जिगर साहब जब तशरीफ लाए वहाँ एक दिन, तो कहने लगे भाई तुम मेरे साथ मुशायरे में चलोगे बम्बई? मैंने कहा चलिए। 84 सन 45 में मुझे लेके बम्बई के एक मुशायरे में, उस जमाने में यहाँ
0: जी,
1: और वो इकबाल डे बनाया करते थे और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुशायरा होता था, उसमें लेके आए मुझे। और यूं रात को मुशायरे में कुछ मेरी हवा बंद गई, वो जैसे होता है ना एक शायर की हवा बन जाती है, तो मौलाना हसरत मोहानी प्रिसाइड कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: जिगर मुरादाबादी उस महफिल में मौजूद, यगाना मौजूद, बड़े बड़े शोरा मौजूद, लेकिन वो एक गवैये लड़के की चल गई मेरी आवाज बड़ी।
0: नहीं, सिर्फ गवैये नहीं है, शायर भी अच्छे
1: हैं। एनीवे, कारदार साहब उस जमाने में फिल्म, एक शाहजहां फिल्म बनानी चाहते थे मुगल पीरियड से के मुतल्लिक से के ताल्लुक से, और वो चाहते थे कि कोई उनको नया लिखने वाला जो गीत लिखे और उस माहौल की जबान को कहा अदा कर सके, उसकी तलाश थी। अच्छा, नए वो यूं ढूंढते थे कि पुराने ज्यादा पैसे लेते हैं
0: जी,
1: नया कम पैसे लेगा
0: जी।
1: चुनाचे उन्होंने मुझे अप्रोच किया और लिमिटली मुझे 500 रुपए माहवार पर 1945 में नौकर लिखे। उस जमाने में 500 रुपए बहुत होते थे, तो जो गया यूं मैं फिल्म लाइन में आया।
0: अब देखिए बड़े मशहूर हुए थे
1: जी हाँ,
0: जब दिल्ली टूट गया,
1: जब दिल्ली टूट गया तो उनको उनको सैगल मरहूम पसंद था, तो उन्होंने वसीयत की थी कि ये गीत मेरी अर्थी के साथ जाए। बचता हुआ चला चला और मैं ऐसा ही हुआ था कि ये गीत उनकी अर्थी के साथ गया था, जब दिल्ली टूट गया हम जी के।
0: उससे तो और भी शोहरत
1: जी हाँ, शोहरत हुई, बहुत काफी शोहरत हुई, लेकिन फौरन ही। मैं दिलचस्प बात जो कह रहा हूँ वो ये कि मेरी देखिए 3-4 मोड़ हमारी जिंदगी के देखे आपने
0: जी,
1: वो सब बड़े दिलचस्प है और प्लान नहीं है
0: जी,
1: प्लान कोई नहीं है, सब खुशगवार हादसे के हिस्से से। अच्छा, फिर जब इससे मैं कुछ फायदा उठा सकता तो 47 पे फसादा शुरू हो गए, 6-8 महीने तक हमारी इंडस्ट्री बंद रही। फिर उसी जमाने में हमारा यहाँ की तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो एसोसिएशन थी, उनके मुसन्निफीन जो राइटर थी उनसे हमारा लिंक पैदा हुआ, और फिर हमने देखा कि एक शऊरी रवैया जो अब तक हमारे शऊर को कोई राह नहीं मिली थी, वो एक समझ मिली हमें। और मैंने फिर ये देखना शुरू किया कि आज जब से हमारे स्टेट्स में जमहूरियत का लफ्ज आया है, यानी हर शख्स को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात कह सके। पहले मुगल पीरियड में या बादशाही के पीरियड में होता यह था कि सियासत तो उस वक्त भी होती थी मगर शाही सियासत होती थी, जमहूरी नहीं होती थी, इसलिए कोई शख्स आजादी से सोच नहीं पाता था। अब ये जरूरी हुआ कि एक शायर के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो इसको मोहब्बत की बातें करो चुप हो जाए
0: जी,
1: बल्कि उसका एक समाजी रवैया भी होना चाहिए, उसका सियासी रवैया भी होना चाहिए। चुनाचे मेरा एक शेर था कि दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूँ ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, ये है कि नहीं का जो क्वेश्चन मार्क था, मैं इस रास्ते पे खड़ा था,
0: वो यकीन और शक के दरमियानी रास्ते पर।
1: यकीन और यकीन के दरमियानी रास्ते पर।
0: लेकिन एक सवाल यही ये उठता है कि क्या कोई भी शायर बगैर किसी आइडियोलॉजी, बगैर किसी अकीदे, बगैर किसी नजरिए से वाबस्ता हुए क्या अच्छी शायरी नहीं कर सकता?
1: कर सकता है, मतलब आप जयशंकर नसीम की मसल लीजिए, गुलजार नसीम
0: जी,
1: उसमें कौन सा आइडिया है? कोई आइडिया नहीं, सिर्फ अखलाकियात पर मबनी है
0: जी,
1: कि नेकी करो
0: जी,
1: नेक बनो, अल्टीमेटली इसी पे एंड है उसका, ये ह्यूमन अप्रोच है। वैसे तो किसी भी मुस्बत आइडियोलॉजी के बगैर कोई बात कोई मुतबर हो ही नहीं सकती, लेकिन जब हमने जैसा कि अर्ज किया कि जब हमारी दुनिया ने जमहूरियत के नाम से अपने आप को जाना पहचाना
0: जी,
1: उस वक्त फर्द को जब आजादी मिली तब उसका अपना सियासी नजरिया हुआ, अपना समाजी नजरिया हुआ, अपना अखलाकी नजरिया हुआ, उसमें से अखलाक के बहुत से पुराने अकदार जो है उनको तोड़ फोड़ डाला गया
0: और नए अकदार बने।
1: हाँ, अंगारे लिख डाला हमारे अदीबों शायरों ने, जिसमें बहुत ज्यादा झिझोड़ने वाली बातें थी और जाहिर है कि वो जज्बाती ज्यादा थी, ताकुल कम था उनमें, लेकिन उस वक्त वक्त का रद्द अमल था और उस वक्त वो जरूरी थी उस तरह की बातें। इसमें तो लिहाफ लिख डाला, मंटो ने बू लिख डाली, तो इस तरह की चीजें थी।
0: लेकिन मजू साहब, आपकी शायरी का जो एक मजमूई असर होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक मुसाफिर है जो आगे बढ़ना चाहता है। मसलन आपका ये शेर कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग
1: जी,
0: जहाँ तलक ये सितम की सियाह रात चले, या ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
1: जी हाँ, ये आप
0: इस किस्म के बेशतर अशार हैं जिनसे ये लगता है कि एक आदमी है जो जिसका सफर जारी है।
1: हमारे एक बहुत बड़े नक्काब थे
0: जी,
1: एहतशाम हुसैन साहब
0: जी,
1: उन्होंने बिल्कुल यही बात कही थी जो आप इस वक्त कह रहे हैं
0: जी।
1: इत्तेफाक
0: तो इसके पीछे क्या कोई शऊरी कोशिश है या ये एक अंदर से
1: शऊरी कोशिश? तो देखिए जनाब
0: जी,
1: किसी एक नुक्ते नजर के जैसे मैंने बताया सामाजिक सियासी वगैरह, उसको सामने रख के शऊरी कोशिश तो सिर्फ रही अच्छे शेर कहने की।
0: अच्छा।
1: लेकिन अकेलापन जो मेरा रहा اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میں ترقی پسند مصنفین سے وابستہ ہوا,

0: तो गजल का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो जिगर और फानी और इनके साथ चलता था, जिसमें शकील मजानी, कुमार अमर मंगवी, इस तरह के, उनसे मैं कट ऑफ हुआ। अब वहां से मैं गालियां पढ़ के साहब ये जो है तरक्की पसंद हो गया, तो ये हो गया जिसकी वजह से मैं तन्हा रहा दोनों तरफ से। और मैं एक अजीब बात बताऊं आपसे कि उस जमाने में सन 45 से लेके सन 52 तक जो तरक्की पसंद अशार गजल में मैंने कहे हैं, तन्हा मैंने कहे हैं, और आपको अजीब लगेगा और मेरे सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे, लेकिन मेरी उम्र के और मेरे उम्र से कुछ कम के अच्छे जानकार नक्कादों और पढ़े लिखों से अगर बात पूछी जाए तो साथ करेंगे मेरी इस बात की। 7 साल मैं अकेला रहा हूँ। उस वक्त मैंने आपको शेर दिया, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख। शबे जुल्म नर गए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, शबे जुल्म नर गए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज दार से देख लूं कहीं कारवां ने सहर न हो।
1: ये जो बातचीत अभी आपने सुनी, एक शायर जब दूसरे शायर से बात करता है तो बातों का जो स्तर होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक उसका मयार होता है, वो अलग ही होता है।
2: बिल्कुल,
1: वो बातचीत एक आम बातचीत से अलग होती है। और फिर बातचीत में अगर मजरूह साहब हो तो फिर क्या कहना है,
2: क्या बात।
1: अब मजरूह साहब की एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मजरूह साहब का लिखा गाना सुनता हूँ, हम है मताए कूचा बाजार की तरह, और उसके बाद अचानक याद आ जाता है हम थे वो थे और
2: समारंगीन, समझ गए ना।
1: हाँ, उसके बाद याद आता है चलती का नाम गाड़ी का दूसरा गाना, हाल कैसा है जनाब का,
2: जी हाँ जी हाँ,
1: पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना, इस तरह के जो गाने
2: रेंज, क्या रेंज,
1: क्या रेंज है, देखिए ना। और भी कई फिल्में हैं, कई गाने हैं, लेकिन यहाँ हम एक गाना जो एक कॉमेडियन पे फिल्माया गया था, जॉय मुखर्जी के साथ एक अपने जमाने के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे इंद्रसेन साहब। अब मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूँ।
2: IAS जौहर साहब की बात कर रहे हैं आप, कमाल के कलाकार। और श्रोताओं आपको जरूर याद आ रहा होगा हम किस गाने का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, शागिर्द का, बड़े मियां दीवाने।
1: आप गाना सुनिए।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकारी

0: योगेश के साथ।
1: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
2: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ट पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सैनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: को भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।

0: फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, I love you।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए।
0: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी

क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप

0: जो एलेजाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है भगत सिंह की माँ।

0: घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
1: फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: और माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है।

0: 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,
1: तो

नब्बे के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की

0: फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमीन पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD2।
2: जब जब मुझे भेज उठा सवार मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है। रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
2: दरअसल आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
3: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस करे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
2: ओहो,
3: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना ऐसा करके बोलता, मैंने मेरे हाथ में किधर है
2: जी।
3: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैं दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: अब हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज की विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत। अमर जी, तो अब करें अपने श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा।
1: बिल्कुल लेंगे,
0: तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का
0: नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में एक रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में एक किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समय

0: अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल सुरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी की लिखे इस गीत की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत, पंकज उदास अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में। अजीज काजी का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का ये गीत है पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल नदीम श्रवण की तर्ज।

0: भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम अभी सुन रहे थे आप हमारे मुंबई केंद्र से 101.9 FM पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग।
1: हेलो
2: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804

गैस को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

कार्यक्रम लोक रंग। जी हाँ, अवधि गीतों का ये प्रोग्राम है आपके लिए, और इस प्रोग्राम में ये पहला लोकगीत है अजय कुमार यादव और उनके साथियों के सर में।

ये निर्गुण गीत था अशोक तिवारी और उनके साथियों के स्वर में कार्यक्रम लोक रंग में। और साथियों आइए अगला लोकगीत सुनते हैं हम छोटेलाल प्रजापति और उनके साथियों के स्वर में ये भजन।

हरि प्रसाद यादव और उनके साथियों के स्वर में अभी आपने ये लोकगीत सुना था। और कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत है कमला देवी और उनकी सखियों के स्वर में।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग 101.9 FM पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। आज मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो हम सफर रवि। तो आपकी इंतज़ार की वो घड़ियां ख़त्म हुई हैं जो कर रहे थे आप बेसब्री से, जिस पल का इंतज़ार वो पल भी आ चुका है। तो मिलाइए हमारा नंबर 7376 80 40 90। और ये तो पता है आपको कि ये नंबर मिला के होना क्या है। जी हाँ, आपकी होनी है बातें आकाशवाणी केंद्र अयोध्या में हमसे, और साथ ही हम सुनवाएंगे आपके पसंद के गाने। तो हमारे पास पहले कॉलर आ चुके हैं, इनसे हम कर लेते हैं हेलो। हेलो,
2: हेलो
1: जी, नमस्कार सर, अपना नाम बताएं।
2: राजबली यादव, अयोध्या मक्खापुर से सर।
1: मक्खापुर?
2: हाँ जी, यहाँ सर।
1: सर क्या करते हैं आप?
2: वो सर फीवर वाला काम कराते हैं सर।
1: जी कौन सा?
2: सीवर का काम सर, सीवर का काम जो हो रहा है।
1: अच्छा, सीवर का काम कराते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, सीवर का काम करा रहे हैं। सड़कों के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं आप। एक बार अपना नाम फिर से बताइएगा सर।
2: सर
1: एक बार फिर से अपना नाम बताएं।
2: राजबली यादव सर, अयोध्या मक्खापुर से।
1: जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: रोटी का गाना सुनेंगे सर, बुरे रंग पर इतना गुमान न कर।
1: रोटी फिल्म का?
2: हाँ जी हाँ सर।
1: तो ये फिल्म आपने देखी है?
2: नहीं सर, देखे नहीं, गाना कई बार सुने हैं सर आपके यहाँ से, हेलो फरमाइश में।
1: तो कैसे सुनते हैं आप हमें? आकाशवाणी केंद्र को कैसे सुनते हैं? मोबाइल पे सुनते हैं, रेडियो से सुनते हैं, कैसे सुनते हैं?
2: मोबाइल
1: पे सुनते हैं। तो इसके पहले आप कैसे सुनते थे? पहले तो मोबाइल पे नहीं हुआ करता था रेडियो।
2: रेडियो था, रेडियो।
1: तब रेडियो सेट आपने खरीद रखा था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने देखिए कितना डेवलपमेंट कर दिया है। जो रेडियो हम घर में लेके सुनते थे, अब जेब में लेके टहलते हैं, सुनते हैं। तो चलिए राजबली जी, आपका ये गाना हमने प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू हमें कॉल करने के लिए।

0: तो दोस्तों ये था आज के हेलो अयोध्या का पहला गाना राजबली जी की पसंद का। और अगला गाना कौन सा होगा और किसका होगा ये डिसाइड करता है आपकी कॉल्स पर। तो अगले जो कॉलर होंगे वो होंगे हमारे प्रोग्राम के दूसरे नंबर के कॉलर, और उनकी दूसरे नंबर की जो फरमाइश होगी वो होगी आज के आकाशवाणी केंद्र की दूसरे नंबर की फरमाइश। तो आइए हम देखते हैं कौन से कॉलर हमारे लाइन पर आ चुके हैं। हेलो
1: जी। हेलो
0: जी, नमस्कार। आपका नाम क्या है, अपना नाम बताएं, कहां से आपने कॉल किया है?
1: जी मेरा नाम मोहम्मद राजेख, मैं जिला अयोध्या बजा सुल्तानपुर से बोल रहा हूं सर।
0: मोहम्मद राजेख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या करते हैं आप?
1: सर मैं ब्लाइंड पर्सन हूं।
0: आप ब्लाइंड पर्सन
1: हूं? घर का सारा काम कर लेता हूं सर।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास अगर कोई डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी के होने के बावजूद आप अपने सारे कामों को निपटा लेते हैं, तो वो डिसेबिलिटी नहीं कही जाती है, है ना?
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: राजीव जी, आप हमें कहाँ से, किस माध्यम से सुनते हैं? रेडियो से सुनते हैं, मोबाइल से सुनते हैं, या कोई और मोड?
1: मोबाइल के माध्यम से।
0: तो आज के जो प्रोग्राम हेलो अयोध्या में कौन से गाने की फरमाइश आप करना चाह रहे हैं?
1: फिल्म का नाम है आरजू, गाने के बोल हैं अब तेरे दिल में, ऐसे ही कुछ है सर।
0: अरे ऐसे ही कुछ नहीं है, ऐसा ही गाना है, लीजिए हमने बजा दिया है।
1: जी जी, थैंक यू सर।
0: तो अब

0: तेरे दिल में फिलहाल ये गाना है, लेकिन हम कहेंगे अब आप रेडियो पे आ चुके हैं, अब ये गाना आपके नाम।
1: थैंक यू सर,
0: थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए मोहम्मद राजीक जी।

ये गाना था मोहम्मद राजिक जी की पसंद का। तो आप भी अपने पसंद का गाना सुन सकते हैं, तो उठाइए अपना फोन और मिलाइए नंबर 7376804090। आकाशवाणी केंद्र से चल रहा है कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म और इस इंतजार में वेट जो कर रहे थे, अगले कॉलर हमारे लाइन पर हैं, इनसे करते हैं बातें। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। नाम बताएं अपना।
1: जितेन्द्र पांडे, गोंडा जिला, कामिना चपिया महमूदपुर से बोल रहे हैं।
0: सर क्या करते हैं आप?
1: मैं प्राइवेट में अध्यापक हूँ, गर्मी बहुत पड़ रही है सर।
0: अध्यापक हैं आप, ज्ञान बांटने का काम करते हैं, लोगों को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा योगदान है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा काम करते हैं। और हमारे भी जो गुरु हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी, आज उन्हीं के बदौलत हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और हमारी लाइफ में वाकई सर गुरु का जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा गुरु मिल जाए तो लाइफ बन जाती है। और वैसे तो गुरु कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाने की ही नियत से रहता है, लेकिन कुछ डिपेंड
1: लाइन भी सर जी बहुत कठिनाई होती है गुरु का।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, कठिन ही है सर। लाइफ जो है, लाइन जो है वो गुरु की बहुत कठिन होती है, क्योंकि गुरु तो हर स्टूडेंट को चाहता है कि सक्सेसफुल हो, लेकिन ये डिपेंड कर जाता है कभी कभी कि स्टूडेंट कितना अचीव करता है, कितना आपकी बातों को ग्रहण कर पाता है।
1: जी।
0: तो सर आप आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: शराबी का मुझे गाना सुना दीजिए।
0: फिल्म शराबी का गाना कौन सा सर, कोई स्पेसिफिक?
1: मुझे ना लखा मंगा दीजिए,
0: मुझे
1: छोटा बच्चा, उसे थोड़ा बात कर लीजिए।
0: जी जी बिल्कुल सर।
2: हेलो
0: हेलो बाबू, क्या नाम है आपका?
2: ज्ञानेंद्र पांडे। नमस्ते सर।
0: सर नमस्कार बाबू, क्या नाम है आपका?

0: ज्ञानेंद्र
1: ज्ञानेंद्र
0: नाथ पांडे जी ने दोस्तों हमें कॉल की है। देखिए, और ज्ञानेंद्र जी बहुत छोटे से नन्ही से प्यारी सी आवाज है इनकी, पढ़ते हैं ज्ञानेंद्र जी?
1: हाँ।
0: किस क्लास में है?
1: दो
0: में है। तो आज कौन सा गाना सुनेंगे, पापा की पसंद का कि अपनी पसंद का? कंफ्यूज हो गए। चलिए कोई नहीं, ज्ञानेंद्र जी हम आपके पापा की पसंद का गाना प्ले कर रहे हैं। आप और पापा दोनों लोग ये गाना सुनिए, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। नमस्कार जितेंद्र जी, हमने आपका गाना प्ले कर दिया है, सुनिए।
2: जी
0: नमस्कार, थैंक यू हमें कॉल करने के लिए।

0: और दोस्तों चूंकि अब हमारे पास है समय कम, लेकिन हम चाहते हैं कि एक और कॉलर शामिल हो जाए, क्योंकि लगातार आपकी कॉल्स का इंतजार करवाना हमें भी लगता है खराब, और आप अगर प्रोग्राम में ना शामिल हुए तो वो भी थोड़ा सा हमारे लिए दुखद हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं हमारे पास जो अगली कॉल है वो किनकी है। हेलो
1: जी सर।
0: सर नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहां से फोन किया है आपने।
1: जी सर नमस्कार, मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं टाई सगरा से बात कर रहा हूं।
0: जी क्या करते हैं अतुल जी।
1: जी सर मैं किराना करता हूं।
0: किराने की दुकान है आपकी। देखिए अतुल जी हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है।
1: राजगीर मिस्त्री वाला था।
0: अच्छा सर, तो वक्त हमारे पास जो है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे आप आके पॉइंट पे आ जाते हैं कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: सर काम तो सुनता।
0: जी कौन सा?
1: संग प्रीत लगाई।
0: तुझ संग प्रीत लगाई। चलिए हम आपका ये गाना सुनवा देते हैं, और हो सकता है ये गाना हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन आपकी कॉल शामिल हो गई, आपसे बात हो गई, ये बहुत अच्छी बात हुई। थैंक यू हमें कॉल करने के लिए अतुल जी।
1: Yes, of course.

तो दोस्तों आज का हेलो इंडिया कार्यक्रम अब यहीं तक और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हेलो अयोध्या कार्यक्रम में, जब कभी भी यहाँ होगा हमारा साथ आपके साथ। तो आज का ये जो प्रोग्राम है वो कंट्रोल रूम से आप तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे थे विनोद कुमार चौधरी जी, और इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम हेलो अयोध्या यहीं पर समाप्त होगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो अयोध्या 101.9 FM पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का

0: तो गीत सुनिए व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर। सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
5: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
4: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
5: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
6: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
7: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
9: जब भी बाहर निकलें कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
8: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
9: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
8: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
9: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
8: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।

आपके फेसबुक मैसेजेस पर आधारित ये कार्यक्रम है कुछ तुमने कहा, और मैं हूँ आज आपके साथ आपका रेडियो हम सफर रवि। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ और शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का ये सिलसिला। तो इस सिलसिले में जो पहला नाम है वो है शाहजी नगर दिगलूर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का। और आप सभी ने जो पसंद किया है गाना वो है लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म से। तो आप सभी की पसंद का ये गाना तो हम सुनाएंगे और साथ ही हम ले लेते हैं कुछ और भी श्रोताओं के नाम जो कि आज के इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, अपने कमेंट्स के माध्यम से। अगला नाम है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती सुरलकर, इंग्लिश फरक्का भागलपुर बिहार से विनोद कुमार यादव, और विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी, सोनी, और इन्होंने ये हमें मैसेज किया है दयानंद कॉलेज भवानीपेट शोला।

तो दोस्तों ये था कार्यक्रम में पहला गीत, और दूसरा गीत रेडी है आपके पास पहुंचने के लिए, और ये गीत है फिल्म साजन से। इस गीत को सुनने के लिए हमें जो कमेंट्स मिले हैं फेसबुक पे, वो हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा, प्रवीण, और इनके साथियों का। और साथ ही हम और भी कुछ नाम शामिल कर ले रहे हैं, जैसे हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेडी से नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जयलाम से, हर्षिता लाम से, बागपत उत्तर प्रदेश।

देश से ये मैसेज है संजय ढिंगिया का। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्रा शर्मा, सार्थक शर्मा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहाकर, निर्मला नुहाकर, विशाल नुहाकर। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, दुग्गू भाविक सिक्का। और अगला नाम है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमारी, नियति कुमारी। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आप सभी सुन रहे हैं हमें, आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय। और भी नाम हैं जिनको हम शामिल करते हुए चल रहे हैं। महाराज कीर्तनपुर गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल टेम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से। सिद्धार्थनगर दरियापुर बबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले।

आप सुने कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और इस कार्यक्रम का अगला गाना लिया है हमने कवर कॉलोनी बाड़वा जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली जी की पसंद का। आपने सुनना चाहा है ये गाना, लेकिन ये गाना सुनाने से पहले हम और भी नाम शामिल कर लेते हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम ही है आपका और आपका नाम जरूर शामिल होना चाहिए। तो और भी नाम जो हैं जो हमें सुन रहे हैं इस समय, वो हैं शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सलरा मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बीबी प्रियांशी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी जी को भी शामिल करने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, किशोर नगर अमरावती से हीरामन सोंडे, शीला देवी शेंडे और सिद्धार्थ गोदाने, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से शामिल होना चाहते हैं मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम और इरफान खान, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिति आहूजा, भेरूलाल वकतरिया ढाकड़ से उनेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भी हमारे पास ये मैसेज आया हुआ है, और राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, बड़ी गभी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, मालवीय और समस्त मालवीय परिवार, तो आइए सुनते हैं अब ये गाना, झुकिया है पसंद आपने।

0: दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और कुछ तुमने कहा का ये अगला नगमा है जो कि पसंद किया है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बड़ोना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित और ऋतु मुकेश जगताप। और भी नाम है जो हम शामिल कर लेते हैं, और शामिल करने के लिए हम सबसे पहले सुना देते हैं कि आपने पसंद क्या किया है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये गाना कौन सा है। और लेते हैं अब उन लोगों के नाम जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में अभी भी कनेक्ट हैं फेसबुक के माध्यम से। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मानी बघेल, साहिल भारती बघेल, लंघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, कालिया और हैं हिंदराज रेडियो सोता संध तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से, बंडू लोहार पोप घाट, माया शिवांश चंद्र कला पोपल घाट, देवीदास पोपल घाट।
1: कुछ भूल जाने लगा।
0: जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी।
1: क्या करे ये दिल क्या।
0: सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से, ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से, जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेनु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहल और सुनील पाठक।

0: तो दोस्तों इसी अंतिम नगमे के साथ अब दीजिए मुझे यानी अपने इस रेडियो हम सफर रवि को कार्यक्रम कुछ तुमने कहा से इजाजत। FM पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोपहर के 2 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
3: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
4: और भाई साहब क्या हाल है?
5: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया। इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
4: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
5: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
0: कार्यक्रम गीतांजलि में ये

0: गुलाम अली की आवाज में गाई सी गजल के साथ अब कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर समाप्त होता है। 101.9 FM पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ।

0: लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
4: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़,

0: दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा है। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु।

0: पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

101.9 FM पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। साथ ही आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम पाल जगत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
3: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
2: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
3: फोन नंबर 9161877347।
4: अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा।
5: फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ।
6: इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी।
5: अरे यार
6: देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है।
7: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: क्यूआर कोड स्कैन करो।

0: का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: प्यारे बच्चों जय हिंद, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर हाजिर हैं आप सबके अपने प्यारे गौतम भैया आप सबका अपना प्यारा सा कार्यक्रम लेकर बाल जगत। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। गर्मी की छुट्टियां भी पास आ गई हैं, आप लोग की गर्मी की छुट्टी की तैयारियां चल भी रही होंगी। साथ साथ हमको अपनी पढ़ाई का भी ध्यान देना है, अपने खान पान का भी ध्यान देना है। बाहर धूप बहुत तेज है, हम लोग को बच कर रहना होगा। बहुत आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले बच्चों। इसके साथ साथ हम सब जब कभी अपने माता पिता के साथ घर से बाहर निकलते हैं या बाजार निकलते हैं तो अपने मम्मी पापा से फास्ट फूड खाने के लिए जिद करते हैं। ज़्यादातर फास्ट फूड मैदे से बने होते हैं, इसमें वसा की मात्रा भी अधिक होती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक धीमा जहर है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुँचाते हैं। वसा की अत्यधिक मात्रा होने कारण ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और अंदर जाकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमारे लीवर को खराब कर देते हैं। आज बच्चों अधिकतर देखा गया फास्ट फूड आजकल ठेलों पर बहुत आसानी से मिल जाता है और जल्दी मिल जाता है। खुले में रखे होने के कारण इसमें मक्खी मच्छर बहुत सारे जानवर इस पे बैठते हैं, कीटाणु बैठते हैं जो जा करके सीधे हमारे पेट में चले जाते हैं और गंभीर बीमारियां हमको पैदा करते हैं। और ज़्यादा फास्ट फूड खाने से बच्चों मोटापा, डायबिटीज, कमजोर पाचन और हार्ट के बहुत सारे रोग हो जाते हैं और मानसिक समस्याओं स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन जाता है। फास्ट फूड अधिक कैलोरी से वजन तेजी से बढ़ता है और शरीर का सामान्य विकास रुक जाता है। फाइबर की कमी से पेट से जुड़ी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बच्चों यह खाना हमें ताकतवर नहीं बल्कि सुस्त और बीमार बना देता है। अगर तुम ज़्यादा फास्ट फूड खाओगे तो खेल भी नहीं पाओगे। फास्ट फूड एक प्रकार का मीठा जहर है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बच्चों हम लोग को फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपके लेकर क्या है एक बहुत ही अच्छी वार्ता और शीर्षक है यूं ही नहीं जाने देंगे गर्मी की छुट्टियों को और वार्ताकार हैं स्तुति।
5: बच्चों तो हाँ, जिस पल का था हमें बेसब्री से इंतजार अब वो आ गया है हमारे पास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गर्मी की छुट्टियों की। तो गर्मी की छुट्टियाँ ये साल के सबसे प्रतीक्षित मोस्ट अवेटेड समय होता है। मई जून की ये जो तपती दोपहरी और स्कूल से मिली आजादी और खेलने कूदने का भरपूर समय, ये सब मिलकर बचपन की सुनहरी यादें बनाती हैं। लेकिन ये जो 40 से 50 दिन सिर्फ टीवी, मोबाइल और ये आलस में बिता देना, आपको नहीं लगता कि ये इन छुट्टियों के साथ थोड़ा अन्याय होगा? गर्मी की छुट्टियाँ जो है ना, वो असल में बच्चों के संपूर्ण विकास का एक सुनहरा अवसर है। ये जो समय है इसका सदुपयोग करके बच्चे न केवल नई चीजें सीखते हैं बल्कि अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, परिवार से जुड़ सकते हैं और आने वाले साल के लिए ऊर्जा से खुद को भर सकते हैं। ज्ञान का खजाना बन सकती है ये गर्मी की छुट्टियाँ हमारे लिए। लेकिन कैसे, क्या हम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तो आइए जानते हैं कैसे बनेगा ये ज्ञान का खजाना। पढ़ने लिखने की आदत, छुट्टियों में किताबें जरूर पढ़ें। सबसे अच्छी दोस्त ना व्यक्ति की सिर्फ किताबें होती हैं। अरे ठीक है, मानते हैं काफी पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना ही छोड़ दें। तो पढ़ें क्या? कोर्स की किताबों से हटकर हम कहानी, कॉमिक्स, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, हिस्ट्री यानी अपने इतिहास और अपने महान व्यक्तित्व की जीवनियों को पढ़ सकते हैं। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति और भाषा को मजबूती मिलती है। अब पढ़े तो भला पढ़े कैसे, कुछ तो सिस्टम होना चाहिए पढ़ने का। तो इस छुट्टियों में रोज 30 मिनट एक रीडिंग टाइम तय करेंगे जिसमें हम पंचतंत्र, अकबर बीरबल, प्रेमचंद्र की बाल कथाएं या फिर सुधा मूर्ति की किताबें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी पसंद हो पढ़ सकते। सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई नहीं करेंगे, रीडिंग टाइम के साथ हम कुछ समय राइटिंग को भी देंगे, तो करेंगे लेखन का अभ्यास। अब कॉपी किताबों में तो बहुत लिख लिया, इन छुट्टियों में हम बनाएंगे अपने लिए एक डायरी। और जो ये डायरी है ना, इसमें हम लिखेंगे क्या? हम अपने पूरे दिन की क्रियाकलाप को लिखेंगे। क्रियाकलाप यानी कि आज मैंने क्या किया, कौन सी जगह हम गए, कैसा महसूस किया, किससे मिले, क्या देखा। इस तरह से जब आप लिखते हैं ना तो आपकी अभिव्यक्ति और विचार की जो शक्ति है वो बढ़ती है। बड़े बच्चे

छुट्टियों पर निबंध लिख सकते हैं, कविता या कहानी भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम समाचार पत्र भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, समाचार पत्र जो कि आज के टाइम में बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, क्योंकि सारी दुनिया तो टिक गई है मोबाइल पे। तो समाचार पत्र क्या होते हैं, जिन्हें हम न्यूज़पेपर कहते हैं। यदि आपका 10 साल या 10 साल से ज्यादा है आप, तो आप अखबार यानी कि न्यूज़पेपर में बाल संबंधी खबरें, खेल प्रश्न या पहेलियां पढ़ सकते हैं। इससे आपके अंदर दुनिया को समझने की कला विकसित होगी। आपकी ये गर्मी की जो छुट्टियां हैं, ये आपके लिए हुनर की पाठशाला भी बन सकती है। बनेगी तो बनेगी कैसे, क्योंकि स्कूल तो बंद, स्कूल बंद तो पाठशाला बंद। लेकिन नहीं, हमारा जो घर है ना, वो भी हमारे लिए एक पाठशाला बन सकता है। यहाँ पे हम नई स्किल सीख सकते हैं। स्कूल के दौरान समय की कमी के कारण हम बच्चे अपनी रुचि के काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो गर्मी की छुट्टियां है ना, ये नई स्किल सीखने का सबसे अच्छा समय है। अब स्किल में हम सीख क्या सकते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं हमारे पास सीखने के लिए, लेकिन निर्भर करेगा कि हमारी रुचि किस तरफ है। तो आइए हम बताते हैं आपको कुछ स्किल्स जिसे आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सो सबसे पहले है कला और शिल्प, जिसमें आप ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, ओरिगेमी, टाई एंड डाई, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ऐसी कुछ गतिविधियां कर सकते हैं। ये आप में फाइन मोटर स्किल्स और रचनात्मकता को बढ़ाएंगी। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आप क्या समझते हैं, यानी कि आपके घर में जो कुछ भी वेस्ट है, जैसे कि आपके घर में दफ्ती उपलब्ध है, माचिस की तीलियां होंगी, इनसे आप एक बहुत ही सुंदर वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। टाई एंड डाई एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, बड़ों की मदद से आप ये भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे संगीत और नृत्य। कुछ बच्चों की जो रुचि है वो संगीत के ओर भी होती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है हमारे पास, क्योंकि इस समय हमें किसी तरह का होमवर्क नहीं कंप्लीट करना होता, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जानी होती, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है जिसकी वजह से हमारे पास समय का अभाव हो। तो ऐसे में हम गिटार है, हारमोनियम है, तबला, ऐसे कुछ वाद्य यंत्र सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नृत्य यानी कि डांस में भी शौक है, तो आप कथक, भरतनाट्यम की भी कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। आपके शहर में बहुत जगह ये कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स चल रही हैं। बस आपको थोड़ा सा उत्सुकता के साथ पता लगाना पड़ेगा। और आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी बेसिक नीड बन चुकी है, कंप्यूटर एंड कोडिंग, ये भी हम सीख सकते हैं। इसको अलग से समय देने की जरूरत नहीं है, इन्हीं छुट्टियों में हम खुद को इसमें भी स्किल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आज के युग में बेसिक कंप्यूटर टाइपिंग, स्क्रैच कोडिंग या फिर कैनवा पर पोस्टर बनाना एक बहुत ही उपयोगी चीज है। आज नहीं, लेकिन आने वाले कल में आपको ये जरूर काम आएगी। और जब आप इसको अपनी गर्मी की छुट्टियों में पहले ही सीख रखे होंगे ना, तो आपका काम बिल्कुल हो जाएगा आसान। तो हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज की, खाना बनाना। जी हाँ, लगता तो बहुत छोटा सा काम है, और ऐसा लगता है कि अरे इसमें तो कुछ भी नहीं करना है और ये तो मम्मी करके दे ही देंगी, लेकिन नहीं, यह किसी एक का काम नहीं है, या ना तो सिर्फ माता का है और ना ही सिर्फ पिता का यह कार्य है, बल्कि ये हम सबका काम है। तो हम करें तो करें क्या, अभी तो हम छोटे हैं कि आग से खेल जाएंगे। इसीलिए हम आग रहित व्यंजन बनाना सीखेंगे, जैसे कि सैंडविच है, भेलपूरी है, नींबू पानी है, सलाद है, इन सब में आपको बिल्कुल भी फायर का यूज तो करना ही नहीं है, और जब फायर का यूज नहीं तो खतरा नहीं, और ये सारी चीजें आपके पेट को बड़ी आसानी से भर सकती हैं। और जब आप इसको सीखते हैं ना बच्चों, तो आप सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं, बल्कि आप अपनी माँ की, अपनी दादी की, चाची की और घर में उपस्थित हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो घर में आपके लिए बहुत ही प्रेम से खाना बनाता है। उनको भी अच्छा लगता है जब हम उनके साथ हेल्प कर रहे होते हैं। क्यों लगता है ना, आपकी जब कोई हेल्प करता है तो आपको भी अच्छा लगता है। सो अपने से बड़ों को और अपने से छोटों को प्यार और आदर शो करने का हमारे पास सबसे अच्छा यही तरीका है कि हम इस गर्मी की छुट्टी में तो लोगों की सबसे पहले मदद करना सीख। तो इस सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। तो कुछ शारीरिक गतिविधियां भी करनी पड़ेंगी। शारीरिक गतिविधियां यानी फिजिकल एक्सरसाइज, है ना। तो गर्मी के कारण होता क्या है कि हम बच्चों को घर में बंद कर दिया जाता है, करना पड़ता है, क्योंकि धूप में तो जाके नहीं खेल सकते हैं, ना ही धूप में जाके कोई शारीरिक गतिविधि कर सकते। ऐसा करेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ऐसे में वो कौन सा समय होगा हमारे लिए जब हम बाहर जाके ताजी हवा और आराम से मस्त होके खेल सकते हैं, तो वो समय है सुबह 6 से 8 का और शाम में 5 से 7 का। जी हाँ, इस समय को नोट कर लीजिए। इसी समय में हमें और आपको बाहर निकलना है। बिल्कुल जिद नहीं करनी अपनी मम्मा पापा से। अब खेल कूद तो बहुत सारे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं साइकिलिंग, खेल सकते हैं बैडमिंटन, फुटबॉल, स्किपिंग, जो रस्सियों से हम कूदते हैं ना, दैट इज नोन एज स्किपिंग, तो हम स्किपिंग कर सकते हैं, योगा, जुम्बा, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, यदि हम रोज 1 घंटा करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो चिड़चिड़ापन है, जो ढेर सारी एनर्जी हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम गुस्सा करने लगते हैं उस एनर्जी के साथ, तो हम उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो मोबाइल चलाने की बुरी लत लगी है ना हमको, स्क्रीन टाइम की, ये भी हम अपनी दूर कर पाएंगे, और ये दूर करना बहुत ही आवश्यक। साथ ही साथ कुछ नई चीजें भी सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन इनको सीखने के लिए हमें एक
स्किल्ड कोच के पास

जाना पड़ेगा, जैसे कि आपकी स्विमिंग है, जैसे कि स्विमिंग आपकी स्केटिंग, कराटे और टेबल टेनिस। इसको आप स्वयं से नहीं सीख सकते हैं, इसलिए एक अच्छे कोच को ढूंढना है और वहाँ पे इसको सीखना है। ये जो खेल है ना, ये हमें सिर्फ अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन नहीं रहते हैं बल्कि टीम वर्क की भी भावना सिखाते हैं। अब हम घर में हैं तो घर में करें तो करें, ये तो हो गई बाहर की बातें जो हम बाहर जाके कर सकते, घर में भी हम व्यायाम कर सकते हैं। अगर बाहर जाना हमारे लिए नहीं है संभव तो घर पर ही स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, हॉप स्कॉच खेल सकते हैं। हॉप स्कॉच मतलब समझते हैं, सिकड़ी जिसे हम अपनी भाषा में जानते हैं, वो हम अपने घर में खेल सकते हैं। अब इन सबके साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है बात कि ये ना 40 से 50 दिन का समय होता है। अब इन 1.5 महीने में हमें इतना अच्छा टाइम मिलता है जिसे हम अपने माता पिता के साथ, अपनी दादी बाबा के साथ, नानी नाना के साथ और परिवार के हर उस सदस्य के साथ बिता सकते हैं जिनसे हम पढ़ाई के चलते नहीं मिल पाते हैं या जिनके साथ हम उतना समय नहीं बिता पाते हैं जितना हम इन छुट्टियों के दौरान बिता सकते। तो ये एक बहुत ही सुनहरा टाइम है परिवार से जुड़ने का। तो करें क्या, जब भी जाएं दादा दादी के पास तो उनसे करें दोस्ती, नाना नानी दादा दादी के पास समय बिताएं, उनसे कहानियां सुनें, उनके अनुभव को जानें और उन संस्कारों को अपने अंदर लाएं जो संस्कार उनसे हमारे माता पिता को मिला है। क्योंकि बच्चों ये जो संस्कार है ना, यही हमारे जीवन की पूंजी यानी कि कैपिटल होती है। साथ ही साथ घर के कामों में हाथ बटाना, लेकिन करें तो करें क्या, हाथ तो बटाएंगे, अब क्या करेंगे, हाथ पकड़ के क्या चलने लगेंगे? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। हाथ बटाना घर के कामों में मतलब कि पौधों को पानी दे देना, जब आपका डिनर टाइम लंच टाइम है तो टेबल से कर लेना, अपने कपड़ों को सुव्यवस्थित तय करके रखना है ना, फोल्ड करके रखना। ये कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम आप कर सकते हैं और इससे हम सीखते क्या है, हम एक जिम्मेदार इंसान बनते हैं। साथ ही साथ अब माता पिता के साथ हैं, दादी दादा के साथ हैं और भी लोग हैं फैमिली में, तो उनके साथ करें क्या, उधमबाजी तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास हमारे जितनी एनर्जी अब नहीं है। हम उनके साथ खेलेंगे अंताक्षरी, लूडो, कैरम, मोनोपोली, इस तरह के खेल जो हम बैठ के खेल सकते हैं, है ना। तो ऐसे में ध्यान रखना है हमें उनका भी कि ऐसे खेल खेलें जो उनके साथ बैठ के खेले जा सके। साथ ही साथ हम घूम फिर भी सकते हैं इस समय में, जैसे कि आप किसी अच्छे हिल स्टेशन पे जा सकते हैं जहां आपको ठंडा महसूस हो, अपने गांव जा सकते हैं। अब हर किसी के दादा दादी और नाना नानी आज के टाइम में तो गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन अपना एक गांव होता जरूर है, तो यदि हम चाहें तो उसको भी घूम सकते हैं, बहुत कुछ देखने को है वहां पे। म्यूजियम जा सकते हैं, चिड़ियाघर जा सकते हैं और तो और साइंस सिटी भी जा सकते हैं। जब आप यहाँ सब जाएंगे ना तो आपको सिर्फ सीखने को नहीं बल्कि आपको बहुत अच्छा महसूस भी होगा। अब इन सब के साथ जो हम सब की माता है उसका भी ख्याल रखना है यानी कि प्रकृति, तो हमें यहाँ पे प्रकृति से नाता जोड़ना है क्योंकि वही है जिसने हमें सब कुछ प्रदान किया है। सो पर्यावरण से जुड़ाव, गर्मी में प्रकृति को करीब से जानने का मौका मिलता है। किसी भी चीज की हड़बड़ाहट तो है नहीं इस समय, तो हम बागवानी कर सकते हैं। अब खेती तो नहीं कर देंगे ना, तो छोटी मोटी चीजों को हम उगाएंगे, जैसे कि आप एक गमला ले लीजिए, गमले में आप धनिया, पुदीना या फिर टमाटर लगा सकते हैं। धनिया की तो बीजें डालनी है और कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना है और एक दिन आपकी धनिया हरी भरी आ जाएगी। कुछ फूल भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ जब आप इनको लगाएंगे ना तो आपका इनके साथ एक गहरा लगाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इनकी केयर करना याद रहेगा, इनको पानी देना याद रहेगा। और जब आप इन पौधों को बढ़ते देखते हैं ना तो बच्चों आपके अंदर एक धैर्य और ना जो आपकी केयर की जो भावना है वो डेवलप होती है। साथ ही साथ हम पक्षियों की भी देखभाल कर सकते हैं, है कि नहीं। अब उनकी देखभाल करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनके साथ हम आ जा तो कहीं सकते नहीं है। ऐसे में हम उनके लिए अपने छत पे पानी रख सकते, दाने डाल सकते हैं और आप देखिएगा आप हफ्ते भर ये काम करेंगे ना और नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे कि आप अगर दाना डालना भूल भी गए हो लेकिन चिड़िया आना नहीं भूलेगी, वो अपने समय से आपकी छत पे आके चहचहाना शुरू कर देगी और इससे आपका एक नेचुरल अलार्म बन जाएगा कि ये टाइम हो गया है जिस समय हमारी चिड़ियों को दाना और पानी चाहिए होता है। ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें संवेदनशील बनाता है। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा अपने साथ, सुधार कह लीजिए या फिर बदलाव कह लीजिए। तो बदलाव ये है कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और जब आप सुबह जल्दी उठेंगे ना तो आपको सूर्योदय देखने का मौका मिलेगा। जी हाँ, सनसेट तो हम रोज देख लेते हैं खेलते कूदते टाइम में, सनराइज देखना थोड़ा सा है मुश्किल। उसके लिए सुबह जल्दी उठेंगे और ये जो हमारी आदत बनेगी ना जल्दी उठने की, ये हमें सिखाएगी डिसिप्लिन। अब इन सब के साथ घर का ख्याल रख लिया, प्रकृति का ख्याल रख लिया, अब बारी आती है हमारे सोसाइटी की, हमारी कम्युनिटी की, हमारे समाज की। तो समाज की सेवा
करें कैसे भला इन नन्ने नन्ने हाथों से। तो सोचना पड़ता ना कि करें तो करें क्या आखिर, जो इस समाज के आए काम। तो छुट्टियों में हम ज्यादा कुछ नहीं, हाँ लेकिन जो हमारे पुराने खिलौने हैं, पुराने मतलब ये नहीं जो यूज करने लायक ही नहीं है, पुराने मतलब जो अब आप नहीं खेल रहे हैं, आपकी जो कुछ किताबें हैं, आपके कुछ कपड़े जो अब आपको फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे को कुछ दें, तो हमेशा पहले ये सोचना चाहिए कि हमें

0: सी चीजें मिलेंगी तो हमें पसंद आएंगी। इस बात का ख्याल रखते हुए हम जरूरतमंद बच्चों को अपनी चीजों को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि हमारे सराउंडिंग में कुछ बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग यानी कि ओल्ड वंस, जो उतने समर्थ नहीं है चलने में, तो उन बुजुर्गों के साथ भी हमें समय बिताना होगा। उससे होगा क्या कि हमारे अंदर सेवा भाव डेवलप होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमें स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम करना है। आप बिग स्क्रीन देखिए, डिस्टेंस से देखिए, बिल्कुल भी फोन में अपना टाइम नहीं व्यतीत करना है। तो इस सारी बातों से ये निष्कर्ष निकल सकता है कि ये जो गर्मी की छुट्टियां हैं, ये खाली टाइम नहीं है, बल्कि ये खुला समय है जिसमें आप अपने पसंद की गतिविधियों को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो याद रखें, आज का संतुलित बचपन ही कल का सफल जीवन बनता है। तो आइए इस गर्मी की छुट्टी को सिर्फ आस ना करें, बल्कि उन्हें खेलने का मौका दें।
1: बच्चों, अभी आपने सुनी वार्ता, गर्मी की छुट्टियों पर कितनी अच्छा चर्चा हुई, उसको अपनी गर्मी की छुट्टियों का हम सदुपयोग कर सकते हैं। और वार्ताकार थी स्तुति। इसके बाद हमारा बच्चों विषय है विश्व हाइपरटेंशन दिवस। आज 17 मई है, आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। बच्चों, उच्च रक्तचाप को मूक हत्यारा कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके कारण हृदय संबंधी कई रोग, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेलोर आदि विकसित हो जाते हैं। इसके कोई भी लक्षण या संकेत दिखाई नहीं देते हैं। उच्च रक्तचाप को कम करने के बहुत से उपाय हैं। हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर हमारा वजन बढ़ गया है तो उस वजन को कम कर सकते हैं। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट और चीनी का सेवन कम करके, आहार में अपने पोटेशियम की मात्रा अधिक और सोडियम की मात्रा कम करके, धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अत्यधिक तनाव ना लें, अच्छी और आरामदायक नींद बनाए रखें, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक और प्रोटीन युक्त पदार्थ खाएं, दूध खाएं, दही खाएं, जूस पिएं। और बच्चों, हर वर्ष 17 मई को दुनिया इसी तेजी से फैली बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एकजुट होती है। विश्व उच्च रक्तचाप लीग इस वर्ष का विषय है, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, यही घोषित किया गया है। इसी क्रम को बच्चों आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए हैं एक टेलीफोनिक वार्ता। बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या पर आधारित वार्ताकार हैं डॉक्टर भालेंदु प्रताप सिंह, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय अयोध्या। और बच्चों, इस वार्ता को हमने टेलीफोन से रिकॉर्ड किया है।
2: मेरा नाम डॉक्टर वीपी सिंह है, मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ते ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन पे। जनरली ये बच्चों में बहुत कम पाया जाता है, फिर भी आजकल के समय में 100 में से हर 5 बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की समस्या है। इसके मुख्य लक्षण हैं सर में दर्द होना, चक्कर आना, आंखों से कम दिखाई देना या धुंधला दिखाई देना, उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टियां होना, थकान बने रहना या सर का घूमना। देखा जाए तो ये सब लक्षण एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स। अगर आप ऐसे सिम्टम्स अपने बच्चों में आपको लगातार मिल रहे हैं, तो आप अपने एक नजदीकी बच्चों के डॉक्टर से मिलके उसका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चेकअप जरूर करवाएं। अब ये लक्षण तो मैंने आपको बता दिए, कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो पहला है आज के समय में बच्चों की, बढ़ता मोटापा। दूसरा, उनकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल, खेलना कूदना कम, घर में बैठे रहना, ऐसी वैसी चीजें खाते रहना, जिस कारण मोटापा बहुत बढ़ रहा है। उसके साथ साथ लगातार बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना। और एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण है कि कई बार हम बच्चों को बिना किसी डॉक्टरी सलाह के दवा की दुकानों से कुछ दवाएं लेके खिला देते हैं। अब वो दवाएं किसी भी पैथी की हो सकती हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, किसी भी पैथी की दवाएं बिना डॉक्टरी सलाह के जब हम बच्चों को खिलाते हैं, तो उसके भी कई बार हमें नुकसान हाई ब्लड प्रेशर के रूप में देखने पड़ता है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट कारण है, जिसमें है बच्चों की कुछ किडनी रिलेटेड बीमारियां, दिल रिलेटेड बीमारियां या हार्मोनल इंबैलेंस बच्चों में। इस कारण भी बच्चों को ब्लड प्रेशर होने की, हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। कई बार बच्चे जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, प्रीमेच्योर, उनमें भी आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं होती है। अच्छा, इनको हम पता कैसे लगाएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं, तो हम पहले अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर हमारा एक बीपी लेगा बच्चों का। तो बीपी लेते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे कि बीपी लेते वक्त बच्चों को कम से कम पहले 15 मिनट आराम करने दिया जाए, के बाद उनकी दोनों हाथों, दोनों पैरों में बीपी लेना है। बीपी लेने के बाद उसको एक अप्रोप्रिएट कफ साइज से बीपी लेना है। और उस बीपी को हमें बच्चों की एक चार्ट आता है जो उनकी एज, जेंडर और हाइट से रिलेटेड होता है, इससे मैच कराते फिर उसमें बीपी देखा जाता है। तब हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चों को ब्लड प्रेशर हाई है या नहीं है। और ये कभी भी एक बार के डायग्नोसिस पे मामला नहीं बैठता है। आपको 2 से 3 बार से ज्यादा बच्चों के डॉक्टर को दिखाना होगा और वो हर बार आपका बीपी लेंगे इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए, और हर बार आपका अगर बीपी बढ़ा

0: हुआ आता है बच्चे का, तभी हम बच्चे को बोलेंगे तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। अब अगर ये हमने डिसाइड कर लिया कि बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो हमें उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, जिसमें उसका लिपिड प्रोफाइल है, थायराइड की जांचें हैं, किडनी की, लीवर की जांचें हैं, साथ में कुछ अल्ट्रासाउंड है जो किडनी का होता है, और दिल की जांच जिसे 2D को भी कहा जाता है। इन कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट के आधार पे हम क्या कारण है जिस कारण बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उसको हम ढूंढ सकते हैं। अब इसके आते हैं हम इलाज पे। इलाज में सबसे जो जरूरी है वो है हमारे बच्चे की बेसिक लाइफ स्टाइल को चेंज। उसमें हमें उसके खान पीन पे उसको बदलाव लेके आना है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, साथ में जो उसकी अंडरलाइन कॉज हमने ढूंढा हुआ है डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, उससे रिलेटेड हमें उसको ट्रीट करना है। अगर वो बेसिक कॉज हमारा ट्रीट हो जाएगा तो बच्चों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, साथ में जरूरत पड़ने पे कुछ मेडिकेशन भी दिए जा सकते हैं। अब वो मेडिकेशन क्या, किस डोज में होंगे और कितने लंबे समय तक चलेंगे, ये एक बच्चों का डॉक्टर ही आपको सही तरीके से बता सकता है। एक इंपॉर्टेंट और चीज है कि ये एक समस्या ऐसी है जिसके लिए एक रेगुलर फॉलो अप की बहुत जरूरत है, तो इसमें हमें समय समय पे डॉक्टरी सलाह पे जाकर डॉक्टरों से मिलना रहता है। एक आखिर में दो बातें मैं और बताना चाहूंगा कि हर बच्चा जो 3 साल के ऊपर का है उसका अगर हम रेगुलर बेसिस पे ब्लड प्रेशर चेक करवाएं तो ये हमारे लिए बहुत। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जब जाता है डॉक्टर के पास, या हम भी आप भी जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वहां जाके हमारा ब्लड प्रेशर यहीं बढ़ जाता है, तो इसे कई बार व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। लेकिन जब शांत हो जाए बच्चा या हम आप शांत हो जाए, उसके बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है, इसको हाई ब्लड प्रेशर में काउंट नहीं किया जाता। इस बात का भी ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस बनाते समय ध्यान रखें। अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो बच्चों में होने वाली हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को हम समय से पकड़ सकेंगे और उसका समुचित इलाज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाल के आकाशवाणी को इतनी जानकारी दी।
2: बच्चों अभी आपने सुनी टेलीफोनिक वार्ता बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या पर आधारित, और वार्ताकार थे डॉक्टर भालेंदु प्रताप सिंह, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय अयोध्या। इसके बाद बच्चों आपके लिए रोचक जानकारी लेकर के आए हैं आपके लिए 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्यारे बच्चों 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी शासन के खिलाफ व्यापक जन विद्रोह के रूप में उभरी। 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ यह संग्राम स्वतंत्रता की पहली बड़ी संगठित लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और राष्ट्रवाद की भावना जगाई। 1857 का संग्राम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है क्योंकि यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं बल्कि विदेशी दमन के विरुद्ध किसानों, जमींदारों और देसी रियासतों का संयुक्त प्रयास था। इसे सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू किया गया था लेकिन जल्द ही इसने देशव्यापी रूप ले लिया। बच्चों संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया और ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। बच्चों ये तो जानकारी हुई 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और अगला हम लेकर के आए आपके लिए प्रेरक व्यक्तित्व सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में इनको जाना जाता है। उन्होंने प्रकृति के कोमल और सुंदर रूपों का अद्भुत चित्रण किया है, इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौशाम्बी अल्मोड़ा में हुआ था। उन्होंने प्रकृति प्रेम, सौंदर्य और मानवता को अपनी रचनाओं जैसे चिदम्बरा पल्लव का मुख्य विषय बनाया। उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था, पिता का नाम पंडित गंगाधर पंत था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी अल्मोड़ा में हुई, उच्च शिक्षा इलाहाबाद में ओरिएंटल कॉलेज से हुई। उनका साहित्यिक जीवन पंत जी जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा और निराला के साथ छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनकी रचनाएं चिदम्बरा के लिए उन्हें हिंदी साहित्य के लिए सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्यारे बच्चों इसी के साथ साथ आपके लिए हम लेकर के आए एक प्यारा सा बाल गीत फिल्म कालीचरण से। गीतकार हैं इंद्रजीत सिंह तुलसी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, और अपनी आवाज से सजाया है अनुराधा पौडवाल और कंचन ने।

0: तो इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म कालीचरण से और गीतकार इंद्रजीत सिंह तुलसी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के और आवाज से सजाया था अनुराग पौडवाल जी ने और कंचन जी ने, इसी गाने के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने का इजाजत दीजिए। अपने प्यारे प्यारे गौतम भैया की तरफ से आपको जय हिंद।
1: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।

0: 101.9 FM पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं केंद्रीकृत राष्ट्रीय सेवा के केंद्र के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओं, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़्मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं।

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

वैशाली गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी और अभिजीत गवाड़कर राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाड़कर की ये फरमाइश थी। मंचा गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिल ध्यानवी की बोल हैं, खयाम का संगीत।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर।

संगीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहरा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक और जिला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मंच है गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मंच है गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से आप दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

ये है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला।
1: आप कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
2: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप,
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं

0: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है। रनिवास की इतनी रानियों के रहते
1: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
0: हम निश्चिंत हुए यारे।
2: अनसुया, देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
0: हाँ चलो इसे इसकी माँ के पास पहुँचाए।
3: अरे अरे, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
0: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
3: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुया चली गई।
1: चली नहीं तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है।
0: जी।
1: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा चलूं या?
3: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
1: पाप?
3: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
1: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
3: अब जाने भी दीजिए मुझे।
1: क्यों जाने दूं तुम्हें?
3: पुरवंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
1: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
3: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
1: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
3: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
1: क्या उलझन है तुम्हारी? बताओ तो।
3: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो?
1: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो बुरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
3: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
1: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ।

0: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
1: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
0: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
1: अच्छा,
0: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
1: हाँ चलो माँ।

मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब इस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूल

राक्षसों ने फिर से रूठा लिया। मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कभी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कर्ण को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और संयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कर्ण भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: ये क्या अनर्थ हो गया, लगता है अपने बेसुधपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कुफ की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटाना, तब तक मैं अंधे का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनुसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनुसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है, उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर ले।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए, बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

ये तो दिन निकल आया। कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो, हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।

0: अनुसुया, ये अनुसुया, उठ ना।
1: क्या हुआ प्रियंवदा?
0: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
1: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
0: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
1: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
0: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
1: कुछ नहीं सखी, बस रह रह कर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
0: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
1: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
0: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
1: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
0: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
1: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो माँ बनने वाली है।
0: तू ही तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
1: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
0: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
1: सच?
0: हाँ।
1: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
0: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
1: आशीर्वाद दे रहे थे?
0: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
1: हे भगवान।
0: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
1: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
0: आकाशवाणी से।
1: आकाशवाणी से?
0: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुँचे आकाशवाणी हुई।
2: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
1: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
0: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
1: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
0: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
3: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुँचाने के लिए तैयार हो जाए।
0: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
1: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देखता अनुसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, ये पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है।
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है, तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ,
3: माँ, प्रियंपदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तार कर्म इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवन।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

0: शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे भरे ताल हो। धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो। इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मन मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।
1: प्रियंवदा, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
2: तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो, औरों ने नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणिया भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
1: बाबा, बाबा, बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं। बाबा।
3: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
1: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ।

0: मेरी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुईया, मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
1: बेटी, तुम निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप वर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: अरे, ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
2: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख, मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
3: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
1: हाँ शालंग्राम, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
4: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
1: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन, हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं। आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
0: बाबा,
1: पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख, पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। हाँ, दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
0: बाबा,
1: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
2: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा।
0: प्रिय बताओ, आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो। सखी, तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे?
1: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
0: अनसुईया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
1: इतनी अधीर रहो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
2: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
5: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
0: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो?
5: डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
0: हम तो यू

0: हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं,
1: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
2: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
3: अब हम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहाँ के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग

महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

यादों की। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा

बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले

0: सुना।
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त क्या कैंची वो लगाई, नीचे जो लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
2: जी जी जी।
1: हाथ वाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि तो जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: तो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना
2: रमेश तलवार साहब, इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई
2: हाँ
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत योगदान था कि उन्होंने काम किया।
2: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की।
1: चलिए करिए।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाग का थॉट था,
0: मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में था ना मैं,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर शूटिंग में स्टोरी टेलिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर की, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट है, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, टीटी में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेट एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूंगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी जी जी।
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे घूमते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके।
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले तो, मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुनो उन्होंने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ, जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं कुछ और डालते हैं, तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही दोस्त उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक

0: ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और लूटन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी।
1: हाँ हाँ।
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा, बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी है उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाकर उसको ऐसा कह रहे बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में, मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ।
1: फिर सुनाया।
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना।
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा को छोटा है फला क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी।
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ये करूंगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी है।
1: हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई।
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से, वो तो उस वक्त तक आज भी और उस वक्त भी जिसको नहीं करना वो ने जा भाई दूसरे के पास, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर, जो होना था 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैकनी में कहीं लगा देंगे, वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे, उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन। अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर रहे। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यजी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यशजी के साथ था। तो जब हम दांत के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिकर बनूंगा और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा।
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे, ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: तो अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसी चीज कहा, ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा जरा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तो मैं इससे मिलने गया, बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेन पे, बोला करूँगा। और उसने पिक्चर ले ली, उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले,
0: बहुत नहीं। फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा,
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था
1: घर, हाँ, हाँ,
0: वो कुछ हुआ था ऐसा,
1: हाँ,
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और नशा जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, ऐसा तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है, मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर,
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे हैं।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो ज्योम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसर ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो हुआ। ये कि रमेश बैल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, साइन में रहता था, तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है घर पाली हिल, तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे का थॉट, वो भी थॉट ही बोलता था, थॉट ही क्योंकि अमिताभ जी थॉट बोलते थे, थॉट ही कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरे एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली,
0: हाँ।
1: वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है रमेश तलवार को नहीं, ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे,
0: हाँ।
1: उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली,
0: हाँ।
1: उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी
1: मराठी में,
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: हाँ, हाँ। वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया, तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया।

0: हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदतें फटाफट करते थे
1: जी,
0: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को, वो 6 महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस 1 महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए।
1: यस,
0: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊंगा, तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए। ऐसा कुछ हो गया था, सुन के घर ही शूटिंग कर रहे थे। और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं, आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी है, ये है, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
1: बाबा
0: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
1: पुरानी दोस्ती है ही।
0: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
1: जी,
0: सागर को सागर पापा बुलाता हूँ। गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आरडी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
1: बाबा
0: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लग रहा डायलॉग एंड मेमोरी करना, तो मैं स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया, तो उनका नहीं तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रासी फिल्मों की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके 2-4 नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, और गाने लिखे, और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं।
1: हाँ, ये कौन है?
0: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे। अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन।
1: ओके,
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला?
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को। बोले मैं अभी फोन करती हूँ। उन्होंने फोन लगाया, रेखा ने कहा मैं यहाँ यू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ।
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा जी ऐसा सुना लो लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा कह रहा हूँ। अच्छा 2 मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश भाई को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब सब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा? शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है, और ऋषि लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलस्ट्रेटेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चरों में उनके सामने उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरे सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपको सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुंच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया।

0: किया, बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना, फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था, 420 की, मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को,
1: जी जी जी,
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट से कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट में गाड़ी रुकी, उतर जा, मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी।
0: और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया,
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके?
1: हाँ।
0: सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह। हाँ। नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे।
0: और फिर अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई कि ना कर देंगे, करूंगा तेरी। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहां पे थे, और मुझे उन्होंने कहा, वहां पहुंचे हम तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ होगी। और मतलब ये है कि जेठे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में, तो ये कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया ऐसा है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना उसका।

0: ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: साथियों, युवाणी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोता अभिषेक मिश्रा से सदक हुसैन की बातचीत।
5: आकाशवाणी ने पूरे किए हैं अपने 89 वर्ष, 90 साल पूरा करने वाला है आकाशवाणी, और हम सब ऐसे श्रोताओं से जुड़ रहे हैं जिनका रिश्ता रहा है आकाशवाणी से एक लंबा। हमारी बातचीत होने जा रही है एक शिक्षक अभिषेक मिश्रा जी से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
6: धन्यवाद।
5: बचपन से शुरू करते हैं कहानी एकदम, जब छोटे में सबसे पहले आपके पास कौन सी याद है रेडियो की?
6: दरअसल मैं पैदा हुआ 1980 में और अयोध्या में ही मैं पैदा हुआ।
5: क्या बात है।
6: जब मुझे लगता है मैं बोलना और सुनना सीखा तो रेडियो के साथ सीखा, क्योंकि मेरा परिवार संयुक्त परिवार था और मुझे याद है कि हमारे घर में उस समय भी ट्रांजिस्टर 4-5 हुआ करते थे, और ट्रांजिस्टर खाना खाते समय भी न्यूज आ रही है तो सामूहिक रूप से रख दिया जाता था बीच में,
5: शांति से भोजन
6: करते थे और सब सुनते थे। और मुझे याद है कि 2-3 कार्यक्रम उस समय आकाशवाणी पे खूब चर्चा में रहते थे, जय जवान जय किसान, और उसी के साथ एक किसान भाइयों का कार्यक्रम आता था
5: जी,
6: किसान वाणी करके, और युवा वाणी करके आता था।
5: आज भी अपने यहाँ से सारे कार्यक्रम,
6: तो ये कार्यक्रम बड़े उत्सुकता के साथ जो है घर परिवार में सारे सदस्य सुनते थे। और उस समय मुझे जो सबसे ज्यादा मतलब कुल मिला करके कल्पनाशीलता की तरफ ले जाता था कि छोटा सा ट्रांजिस्टर है, इसमें कैसे कोई व्यक्ति बैठा होगा, अपनी आवाज निकाल रहा है। उस समय मतलब हमारे लिए बड़ा उत्सुकता का एक तब कौतूहल का विषय हुआ करता था, और काफी लंबे समय तक मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाता था और मैं उलझा रहता था।
5: और मेरी भी यादें ऐसी हैं कि लगता था कि इसको अगर कभी खोलें तो शायद इसके अंदर छोटे छोटे लोग निकले।
6: अच्छा, वो समझ नहीं पाते थे किस तरीके से उसमें हाथ पैर अपना इकट्ठा करके बैठे होंगे इतनी छोटे से।
5: बिल्कुल,
6: ये मतलब उत्सुकता का विषय था। हम लोग धीरे धीरे लेकिन जब बड़े हुए तो आकाशवाणी की तरफ जो मेरा सबसे झुकाव और ऑथेंटिक झुकाव रहा वो 1989-90 के आसपास की बात। उस समय अब थोड़ा सा विषय से इतर हो जरूर रहा है, लेकिन अयोध्या में जो मस्जिद और मंदिर का विवाद थी, ये उस समय हमें लग रहा है कि मैं 6 में पढ़ता था, 6 सेवन में पढ़ता था, और ये विवाद इतना ज्यादा पूरा प्रचलित हो चुका था। अमेरिका भी उस पे फोकस कर रहा था, तो अमेरिका वगैरह मतलब विदेश वगैरह का नाम हम लोग उस समय जो है विदेशी देशों का नाम उस समय हम लोगों के दिमाग में आया कि विदेश में भी इस तरह से देश हैं और इस तरह से लोग जो है भारत की तरफ निगाह उठा करके देख रहे हैं, और विशेष करके अयोध्या का नाम जो खूब आता था, फैजाबाद का नाम खूब आता था, हम लोग बड़ी उत्सुकता से उसको सुनते थे। और जो सबसे बड़ी चीज रही, ये एक बीबीसी न्यूज आया करता था उस समय, और न्यूज पे हो सकता है सरकार का प्रतिबंध हो, सरकार का दबाव हो, न्यूज जो है पारदर्शी तरीके से हम लोगों तक ना पहुंच पा रहे, लेकिन बीबीसी की न्यूज जो थी वो बड़ी ऑथेंटिक न्यूज होती थी, वो ऐसी बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा होगा, और उससे बड़ा हम लोग सतर्क होते थे। तो उस समय मतलब कुल मिला करके ये है कि आकाशवाणी की तरफ जो मतलब जबरदस्त रुझान हुआ वहीं से हुआ। फिर उसी समय मंडल आयोग आया, मंडल आयोग में हड़ताल खूब हुआ करती थी और विद्यालय बंद हुआ करते थे, हम लोग कभी कभी विद्यालय तक पहुंच जाते थे फिर वापस होना पड़ता था।
5: अच्छा,
6: तो ट्रांजिस्टर पे बिल्कुल हम लोगों का समाचार पे बिल्कुल निगाह और कान बिल्कुल उसी तरफ होते थे कि हो सकता है आज बता दें कि अभी 15 दिन के लिए विद्यालय फिर बंद रहेंगे,
5: वो खुशी की खबर मिल जाए।
6: हाँ, तो इस तरह से न्यूज की तरफ जो है आकर्षण उसी समय से हुआ। सही तो ये है कि हम लोगों का बिल्कुल रूटीन बन गया था, 9:15 का समाचार रात में हम लोग सुन करके ही खाना खाते थे
5: जी,
6: और जब न्यूज आती थी उस समय जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे किसी की हिम्मत नहीं थी कि सुई गिर जाए और उसकी आवाज आ जाए और बर्दाश्त कर ले, तो ट्रांजिस्टर तो एक तरह से हम लोगों के जीवन का अंग था और फिर धीरे धीरे करके

0: में लगता है कि जब हम हाई स्कूल में पहुंचे, नाइन्थ में पहुंचे, अर्थ में, उसी समय से चूंकि थोड़ा सा परिवार हमारा राजनीतिक केंद्र भी रहा है अपनी ग्राम सभा का और नया पंचायत का, अच्छा। तो चार छह दस लोगों का जमावड़ा भी रहता था, वो भी साथ में सुनते थे
1: जी।
0: तो टीवी का दौर आया जरूर, लेकिन नहीं कर पाया। और जो है और रेडियो तो हमारे यहाँ उस समय से है कि जब रेडियो के लिए अलग से लाइसेंस जारी होता था, कि जब सारे लोग ट्रांजिस्टर नहीं रख सकते थे,
1: भाई
0: न्यूज प्रसारण वगैरह जो है आम नहीं था, कॉमन नहीं था भाई, वो उस समय का दौर रहा होगा, तो वो उस समय का हो सकता है दौर रहा हो, नियम कानून तभी के बने रहे हों और काफी लास्ट समय तक उसको फॉलो किया गया। तो इस तरह से हम लोगों का बचपन,
1: ये बचपन की तो बड़ी शानदार आपकी यादें रही। आप पढ़ने कहाँ गए, उसमें क्या?
0: दरअसल उसके बाद हाई स्कूल तो मैं गाँव से किया, तब तक तो ट्रांजिस्टर से इस तरह से जुड़ा रहा। फिर मेरी तन्हाई जब आई, तन्हाई मतलब जब घर से बाहर हुई, हम इलेवंथ में घर से बाहर सुल्तानपुर जीआईसी से मैंने इंटरमीडिएट पास,
1: संयुक्त परिवार छोड़ के जाना
0: करके जी, तो एक कमरे में मुझे लगता था कि यहाँ जिंदगी कैसे बीतेगी, समझ में ही नहीं आता था कुछ
1: बिल्कुल।
0: और संजोग ये रहा, ये तो नहीं कहेंगे परिवार छोड़ करके आए थे, क्योंकि सुल्तानपुर में एक भाई हमारे डॉक्टर हैं, भाभी बीमारी वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में थी, तो हम उन्हीं के साथ जो है रह करके इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन दोनों लोग अपने अपने कार्य उस पे चले जाते थे। तो जब हम रह अकेले जाते थे तो तन्हाई का दौर था, तो ट्रांजिस्टर भैया से बड़ी हिम्मत जुटा करके कह पाए कि ट्रांजिस्टर लाइए, चूंकि लोगों के दिमाग में नहीं आता था कि और भी चीजें सुनेंगे, ये लगता था कोई गाने वगैरह सुनेगा जो, तो खैर वो हमारी बात को समझ गए और ट्रांजिस्टर मुझे एक मुहैया करा दिया गया। तो पहली बार जैसे स्वायत्त भाव आया, ये मेरी निजी प्रॉपर्टी है, अब तो इसके साथ जीना है, कोई दिक्कत नहीं है।
1: क्या बात है।
0: जब घर पे कोई नहीं होता था तो जो सुबह से लेकर के मेरी आदत बन गई थी मैथ, विशेष करके मैं ट्रांजिस्टर ऑन कर लेता था तो बाहर का शोरगुल नहीं हो पाता था और बहुत मैं अच्छे तरीके से कंसंट्रेट हो जाते थे, वो गाने का मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहता था और बिल्कुल मस्त होकर के मैं पढ़ता था।
1: बिल्कुल वो मस्तिष्क को हार्मोनाइज करता है, संगीत जो होता है मेडिटेशन है एक प्रकार का,
0: जी, जी, जी।
1: और वो हमें एक ध्यान में ले जाता है, फिर हम शब्दों से हट जाते हैं और अपने विषय से पूरी तरह से जुड़कर अपना कार्य कर रहे हो।
0: तो फिर इस तरह से इंटरमीडिएट का सफर तो कहते हैं हुआ, उसके बाद इलाहाबाद में पहुंच गए।
1: अच्छा,
0: तो इलाहाबाद तो जैसे ट्रांजिस्टर का हब रहा हो इसको सुनने वाले को, कुछ पूछना नहीं है। शाम का हमें जो समय होता था वो विविध भारती और जो वहाँ उस समय तो हम पहुंचे तो इलाहाबाद में लोकल एफएम भी आने लगा था।
1: अच्छा,
0: इलाहाबाद का हाँ, तो क्या गजब का दौर था, बिना गाने के तो हम लोग जी ही नहीं सकते थे। और उस समय हमारे एक मित्र हुआ करते थे सुशील पांडे जी, और हम दोनों लोग रूम पार्टनर तो नहीं थे लेकिन फूड पार्टनर थे, मतलब किचन दोनों लोगों का एक था, रूम जो है आमने सामने था। तो ये जानिए कि जैसे हम पढ़ने बैठ जाते थे तो चाहे वो लाके बना के देते थे, वो पढ़ने बैठ जाते थे चाहे मैं बना के दे देता था, लेकिन ट्रांजिस्टर दोनों लोगों का कॉमन किचन में रखा जाता था और वो भी सुनते थे उसी अंदाज से, मैं भी सुनता था उसी अंदाज से। जो सबसे बड़ी चीज है, एक सिन्हा सर हुआ करते थे इलाहाबाद में, और कोचिंग चलाते थे, और मैंने सुन रखा था वो आईएएस जो है वो सिलेक्टेड थे और नौकरी छोड़ करके वो कोचिंग चलाते थे। हाँ जी, और मुस्तफा कोचिंग करके थी, उसी के वो डायरेक्टर थे, और मुस्तफा सर उस समय प्रतापगढ़ के डीएम भी हुआ करते थे। जो सिन्हा सर थे उनकी ये याद थी कि हम उनकी कोचिंग में दो तीन दिन क्लास किए थे, तो उनका मुझे ये बात लगी कि जो हम लोग स्पीड है अपनी लिखने की स्पीड, वो ये हम लोगों को बताए कि जब न्यूज चैनल चल रहा हो, विशेष करके आप टीवी उबी की तरफ मत जाइएगा, ट्रांजिस्टर खोल लीजिएगा और उसके साथ लिखने का प्रयास करिएगा। और मैं लिखने का प्रयास किया, मेरी स्पीड काफी बढ़ गई,
1: मतलब जो खबर आ रही है उसको लिखना है,
0: लिखने का प्रयास करिए। और वो अनुवाद के लिए जैसे कहे कि आप पहले हिंदी में समाचार सुन लीजिए,
1: पौने नौ का सुना आपने, फिर नौ बजे से
0: नौ बजे अंग्रेजी से कहे, सात बीस वाला समाचार आता था उसमें हिंदी अंग्रेजी संस्कृत तीनों में आता था।
1: हाँ, आज भी ये है, ये सब परंपराएं जितनी आप पुरानी बता रहे हैं आज भी
0: में आता था और हम लोग मस्ती के साथ सुनते थे
1: कि आज भी हम संस्कृत में समाचार भी अनुप्रसारित करते हैं, शाम 6 बजे हम हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचारों का बुलेटिन हम प्रसारित करते हैं प्रतिदिन आज भी आकाशवाणी अयोध्या से।
0: जी, तो घर परिवार में भी जब होते थे हम लोग या इलाहाबाद में मित्रों के साथ होते थे तो जो जिस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता था वो बाद में वो जो समाचार आया रहता था वो उसका अनुवाद पूछ पड़ता था और बड़ा मजा आ जाता था। अगर वो बताता था नहीं बता पाते थे, हम लोग असफल होते थे तो भाई सीखते थे। इस तरह से जैसे पढ़ने के साथ भी जो है जो आकाशवाणी हम लोगों का सहयोग किया, पूछना नहीं है।
1: शानदार बातचीत हमसे की अभिषेक मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता अभिषेक मिश्रा और सदक हुसैन की, और उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। अब संस्था से भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के बारे में जानते हैं। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक सर्वोच्च संस्था है जो देश में जनगणना और जन्म मृत्यु के पंजीकरण का आयोजन व प्रबंधन करती है। वर्तमान में

मृत्युंजय कुमार नारायण इस पद पर कार्यरत हैं। यह संस्था 1961 से स्थायी रूप से कार्य कर रही है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त भारत की दशकीय जनगणना आयोजित करने, जनसंख्यिकीय और जनसंख्या डेटा संकलित करने और देशव्यापी नागरिक पंजीकरण प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। जनगणना आयुक्त को देश के सभी राज्यों के जनगणना संचालन निदेशकों और अन्य क्षेत्रीय जनगणना अधिकारियों को जनगणना के कुशल संचालन के लिए विशेष या सामान्य निर्देश जारी करने का अधिकार है और जनगणना कार्य के लिए केंद्रीय राज्य या स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवाएं लेने का भी अधिकार प्राप्त है। भारत की जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। भारत की पिछली जनगणना वर्ष 2011 में संपन्न हुई थी। जनगणना 2027 श्रृंखला की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। तो युवा साथियों, अभी हम संस्था सेगमेंट में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के बारे में बात कर रहे थे। उम्मीद है यह चर्चा आप सभी को पसंद आई होगी। अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत फिल्म अजहर से, जिसके गायक अरिजीत सिंह, अंतरा मिश्रा, गीतकार मनोज यादव, संगीतकार प्रीतम।

दोस्तों अभी हमने सुना है प्यारा सा गीत। अब आइए बात करते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में और जानते हैं कल के कार्यक्रम में क्या होगा खास। दोस्तों कल चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में। वहीं करियर गाइडेंस में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करियर कैसे बनाएं उस पे बात करेंगे, जिसके वार्ताकार दीपक कुमार पांडे और बात करेंगी दिशा पांडे। और अंत में रोजगार समाचार सुनेंगे। तो दोस्तों अभी गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी से बचें, बाहर बिल्कुल ना निकलें, हल्के रंग के कपड़े पहने, सिर को ढक कर रखें, पर्याप्त पानी पिए, नारियल पानी पीते रहें और अपने शरीर को बचाएं। तो अपना बहुमूल्य फीडबैक हमें जरूर दें। कोई शिकायत या सुझाव हो तो हम तक पहुंचाना न भूलें। हमारी ईमेल आईडी है yuvadi@gmail.com। अब वक्त हुआ आपसे विदा लेने का, इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने करियर में आगे बढ़ें। आपकी रेडियो दोस्त साधना मिश्रा लेती हैं इजाजत। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के 5:30 हो चुके हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोताओं आपका स्वागत है कार्यक्रम लोक संगीत में और शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे गीत से जो शिक्षा पर केंद्रित है। जी हाँ, हम जानते हैं कि शिक्षा हम सब के लिए कितनी ज़रूरी है और हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने जो हमारे गांव में हैं उनको भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है या गार्जियनशिप नहीं है तो वो यूं ही खेल रहे होते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता। तो आप ज़रूर से ज़रूर उन बच्चों को अपने आसपास के सरकारी विद्यालय में या किसी भी विद्यालय में उनका दाखिला ज़रूर कराएं और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करें।

0: सामान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
1: कार्यक्रम लोक संगीत में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं शारदा सिन्हा के स्वर में ये गीत।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठा

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: कार्यक्रम लोक संगीत में आपका फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं रत्नेश द्विवेदी और साथियों के स्वर में ये गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। एफएम एंड पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी कार्यक्रमों को आप सुन रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: से हम लेते हैं विदा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यवसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. He was received at the airport by the Swedish Prime Minister Ulf Kristersson. During his two-day visit to Sweden, Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart and review the entire gamut of bilateral relations. The two sides are also expected to explore new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also jointly address the European Round Table for Industry, a leading pan-European business forum, along with the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Before departing for Gothenburg, Dutch Prime Minister Rob Jetten personally came to Amsterdam Airport to bid farewell to Prime Minister Modi. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals, and other key sectors. Both leaders also expressed deep concern over the situation in West Asia and its implications for global energy supplies and trade networks. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design NID in Gandhinagar, Gujarat. Speaking on the occasion, Mr. Shah highlighted the importance of the National Institute of Design, saying it is an institution that connects creativity with entrepreneurship. He said institutions like NID provide youth with the right platform for innovation and professional development. Mr. Shah, who's on a two-day visit to Gujarat, also inaugurated a newly built 5 lakh litre capacity plant of Madhur Dairy in Gandhinagar today. Union Railway Minister Ashwini Vaishnav today virtually flagged off a new express train service between Bengaluru and Mumbai, boosting rail connectivity between Karnataka and Maharashtra. Speaking on the occasion, Mr. Vaishnav said the long-pending demands of people in South and North Karnataka are now being fulfilled. He also announced that the Vande Bharat sleeper service between Bengaluru and Mumbai is expected to begin soon. Highlighting railway infrastructure growth, the minister said, Karnataka currently operates 12 pairs of Vande Bharat trains. He added that bullet train corridors connecting Bengaluru with Hyderabad and Chennai have also been approved. India has strongly condemned attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz, calling them unacceptable. India's permanent representative to the UN, Parvathaneni Harish, said targeting civilian crew and disrupting freedom of navigation cannot be justified. He was speaking at a special meeting of the United Nations Economic and Social Council on safeguarding global energy and supply flows. Mr. Harish's remarks came days after an India flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. In the United Arab Emirates, a drone strike triggered a fire.

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज गढ़ैया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6:00 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: हाँ तो पंचो हम बात करते रहे आपसे, अभी जो स्वयं सहायता समूह के बात कही आप सुने हुए श्रीमान अरुण कुमार जी से बात करते रहे प्रभाकर शुक्ला भैया। हमें एक खास बात और होत है हमारे पंच भैया सुने हुए कि जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होत है ना वह हम पंजीकरण कराओ जरूरी होत है, लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि अलग से पंजीकरण करावे की जरूरत नहीं है। और जो महिला है वह हो सकती है कौन जरूरी नहीं है कम मोहल्ला कम है, अगर न्याय पंचायत स्तर के हैं तो उन्हों की हमें सम्मिलित की जा सकत है। और हाँ एक बात जरूर है कि सभी अगर संभव से रहते तो बहुत बढ़िया होते, कुछ स्वयं सहायता समूह बढ़िया चलबू करते हैं। हाँ सबके नेक नीति हुए चाहिए वहाँ। जहाँ तक हम जो पेरेंट एसोसिएशन के बात किया है वह माँ एक अच्छी बात है, जो दिव्यांगजन है उनके बड़े ही होत है और जो दिव्यांगजन के माता पिता हैं वह यका एसोसिएशन बना हुए थे और वहाँ को ज़्यादा मेहनत नहीं है। पेरेंट एसोसिएशन नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत जो दिल्ली में कार्यालय है ऑनलाइन सगुरु व्यवस्था है, हुआ से कह के अपने मन के जैसे स्वयं सहायता समूह में है कि उद्योग अपने मन से सुनो काम अपने मन से सुनो, ऐसा वह है अपने मन से सुनी चाहिए कोशिश ही करे चाहिए प्रयास ही हुए के चाहिए। स्थानीय स्तर पर चूंकि स्वयं सहायता समूह के बात है तो स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद हमें लगे आवे और जो संसाधन है वह के आधार पर हमें सबका चुनाव करे चाहिए ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना होए। लेकिन अब घड़ी के इशारा हमारी ओर है कि आगे चली, लेकिन आपका हम बताओ चली आज के जो मौसम के हाल हमका मिला है। अधिकतम तापमान रहा 40°C जो सामान्य से 0.8°C ज्यादा रहा है। न्यूनतम तापमान रहा 26.0°C जो सामान्य से 1.5°C ज्यादा रहा है। जहां तक आर्द्रता की बात है अधिकतम रही 82% और न्यूनतम रही 48%। बयार 3.2 km/h की रफ्तार से चली है जबकि दिशा रही है दक्षिणावा पछुआवा। बरखा की तो आप देखे भी हो कोनो बरखा नहीं है, लेकिन अगले 24 घंटा में अपने जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हमारी अनुमान है कि मौसम शुष्क रहे, जो बयार है वो किंचाब है सामान्य से तेज चल सकत है, पछुआ चले की संभावना है। तो अगले दिन आपको बताओ चली आप कहा सुनिए कृषि कार्यक्रम में चर्चा रहे छोटा परिवार सुखी परिवार, जो बतकही रहे दुधारू पशुओं एवं बछड़ों की रख रखाव खान पान के बारे में चर्चा हुए, प्रबंधन कैसे किंचा है पर चर्चा हुए। तो अगले दिन फिर मेल मुलाकात हुए नेक बतकही साथ है, तबले हमें निसमुखन का हुकुम दो फिर मिला जाए। जय हिंद।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए आपको आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा से परिचित करा दें। आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 पर आप हमारे स्टूडियो से सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम शेर और गीत, जिसमें चंद शेर और फिल्मी नगमे होंगे शामिल। वहीं रात 9:15 पर हम लेकर हाजिर होंगे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, स्थानीय खेल गतिविधियों से ये कार्यक्रम होगा। रात 9:30 पर होगा आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, नंबर होगा 7376804090। और आइए आपको कल के कार्यक्रमों से अवगत करा दें। सुबह 7:15 पर कार्यक्रम विवरण होता है, ये दोनों सुबह और शाम 7:15 पर ही आप कार्यक्रमों की रूपरेखा को जानते हैं प्रतिदिन। 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश, 8:15 पर गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर संगम और 8:30 से दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में चर्चा का विषय रहेगा कल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय।

दिवस इसी कार्यक्रम में एआरटीओ डॉक्टर राजेश प्रताप सिंह से संजय धर द्विवेदी की बातचीत सुनवाएंगे। विषय रहेगा वाहन चलाते समय सुरक्षित रहने हेतु किए जाने वाले उपाय। समाचार पत्रों की स्थानीय खबरें और फिल्मी गाने होंगे इस प्रोग्राम में। कल सुबह 9 बजे से व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का होगा प्रसारण। दोपहर 12:30 पर लोक रंग फरमाइशी होगा ये कल, और दोपहर 1 से फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दिन में 2 से सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों का दैनिक कार्यक्रम गीतांजलि। वहीं दोपहर 2:30 पर अंगना कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व वैक्सीन एड्स वैक्सीन दिवस पर चर्चा के अलावा डॉक्टर ज्योति सिंह से जानेंगे पेरी मेनो पॉज के संकेत, लक्षण और उपचार। इसी कार्यक्रम में घरेलू सुझाव और रेसिपी की जानकारी दी जाएगी। शाम 5 से युवाणी के अंतर्गत युवा श्रोता सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर चर्चा। करियर गाइडेंस के अंतर्गत सौर ऊर्जा क्षेत्र में करियर अवसर की संभावनाएं और रोजगार समाचार होगा। शाम 5:30 से लोक संगीत 6:10 पर शाम सुहानी, ये फिल्म संगीत का होगा कार्यक्रम, और 6:30 से लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजेश्वर गांव के। शाम 6:45 से कार्यक्रम कृषि जगत में चर्चा का विषय होगा छोटा परिवार सुखी परिवार, और दुधारू पशुओं एवं नवजात बछड़ों का रखरखाव और खान पान प्रबंधन विषय पर डॉक्टर विद्यासागर से भेंटवार्ता सुनिएगा। इसी कार्यक्रम में बाजार भाव और मौसम का हाल भी जानेंगे आप। कल रात 8:15 पर सुनिएगा गीत गुंजन। रात्रि 9:15 पर साप्ताहिक नहीं बल्कि ये महीने के पहले और तीसरे सोमवार को होने वाला कार्यक्रम, 5 सोमवार को भी होता है आपकी बात। 9:30 पर होगा आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज और कल के प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। FM 101.9 पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद 7:20 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों की थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारी ना
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
0: और ये मेरी गुड़िया की ना।
2: पर दादी आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
8: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अनदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार।

0: प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने ये बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5,00,000 तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
1: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था और आज हम इसको घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वो आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्रप्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जो उन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5,00,000 रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
0: श्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। उधर मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1985 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
1: मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती और जो घोषणा करती भी है वो धरातल पे जमीन पे गांव पे लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और वो योजनाओं को खास तौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पे पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती।
0: गाजियाबाद स्थित एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई निर्माता निर्यातक उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मथुरा समेत समूचे ब्रज मंडल में आज से एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहू और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन द्वारकाधीश और श्रीकृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टर में बांटकर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनों में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: Hey girls, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए।
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: इसलिए नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सुगंध, क्या हो रहा है?
1: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
6: बन गया बजट?
5: हाँ,
6: 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले
6: ना, पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया, जाओ भाई।
7: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: शुभ अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए आपको ले चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां अब से लेकर 8:15 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। और इस कार्यक्रम के ठीक बाद 8:15 पर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे अपने स्टूडियो से हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम शेर और गीत। तो फिलहाल आइए सुने विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

के साथ पोजीशन ले चुके हवलदार दयाराम ने अपनी सूझबूझ और फुर्ती से युद्ध करते हुए दुश्मन सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लेकिन इससे पहले कि दयाराम और उनके साथी संभल पाते, दुश्मनों का एक और जत्था आगे बढ़ा और एक बार फिर बारूद के उठते शोलों में सब कुछ धुआं धुआं सा नजर आने लगा। ये मुठभेड़ घंटों चलती रही। भारतीय सेना की इस चौकी में कई सैनिक घायल हुए, जिन्हें तत्काल बाकी सैनिकों ने कवर देते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। न सिर्फ एक या दो बार बल्कि लगातार 5 बार इस मुठभेड़ के दौरान दुश्मन सैनिकों ने हवलदार दयाराम पर हमले किए और इन हमलों को वो लगातार विफल भी करते रहे। काफी सैनिक इस मोर्चे पर घायल हुए, फिर भी मोर्चे पर दयाराम डटे रहे और हथगोले फेंक कर दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहे।

इंस्टाग्राम की पोस्ट पर लाइव मशीन गन, जिसे LMG या ब्रेन गन भी कहते हैं, इसे चलाने वाला सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ। ये देखकर दुश्मनों के हौसले बढ़े और उन्हें लगा कि मंजिल अब तो करीब है। लेकिन इसी बीच घायल अवस्था में भी पूरी फुर्ती से हवलदार दयाराम ने LMG को संभालते हुए दुश्मनों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। उनके चंद बचे सैनिकों ने जब उन्हें इस तरह दुश्मनों पर टूटते देखा तो वो भी पूरी ताकत से हमलावर होते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े और दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी। अफरा तफरी के इस माहौल में अब तक 24 दुश्मन सैनिकों को हवलदार दयाराम ने वहीं मार गिराया और बाकी बचे पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन कोई 3 शत्रु सैनिक अब भी दबे पांव आगे बढ़े। लहू से लथपथ दयाराम ने इनमें से 2 को तो मौत की नींद सुला दिया, लेकिन तीसरा अब भी आगे बढ़ता रहा। इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, दयाराम ने बड़ी फुर्ती से एक हथगोला उसकी तरफ फेंका और उसके भी परखच्चे उड़ गए। साथियों, हवलदार दयाराम ने न सिर्फ टेनधर की इस बेहद महत्वपूर्ण चौकी को बचाया, बल्कि तमाम असलाहे और ब्रेन गन को भी शत्रु के हाथों में जाने से बचाया। साथ ही चौकी पर 4 और घायल पड़े भारतीय सैनिकों की जान को भी बचाया और टेनधर की इस मुहिम में फतह हासिल की। भारतीय सेना की एक और जीत का इतिहास सुनहरे पन्नों में दर्ज कर दिया गया। ये फतह भारतीय सेना की कामयाब मुहिम का एक ऐसा हिस्सा थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी जंगी हवाओं के रुख को मोड़ने का ताब रखती है। जब सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर नजरें हों तो जीत का परचम लहराता ही लहराता है। हम एक बार फिर सलाम करते हैं हवलदार दयाराम को।

जी साथियों, 6 फरवरी सन 1948 को नौशेरा से सटे इलाके के टेनधर सीमा चौकी को महफूज रखने, यहाँ फतेह हासिल करने और इस युद्ध में सेना

सफल संचालन, अदम्य साहस, अद्वितीय कूटनीतिक क्षमता, कार्य कुशलता, अद्भुत शौर्य और पराक्रम के लिए हवलदार दयाराम को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा प्रस्तुत कार्यक्रम साज और आवाज। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन को। क्लेरनेट पर है मास्टर इब्राहिम।

आइए सुनते हैं अब इस गीत की धुन को फिल्म तीसरी कसम से। गीत के बोल लिखे हैं असरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का और आवाज मुकेश की।

0: के कार्यक्रम में सुनिए चिरंजीत की लिखी हास्य नाटिका क्रोध हरण शलाका।
1: मुन्नू की माँ, अरे भाई मुन्नू की माँ
2: आ गई स्कूल से। मुन्नू नहीं आया?
1: अरे बताया तो था कि मुन्नू पढ़ाई में बहुत कमजोर है। ऐसे कमजोर लड़कों को हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी छुट्टी के बाद रोक कर खुद पढ़ाती।
2: मास्टर का लड़का और कमजोर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुद मास्टर होकर भी अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकते। लेकिन तुम लड़के को घर में पढ़ाओगे कैसे? तुम्हें तो अपने सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं। लेकिन अब मैं देखूंगी कि तुम
1: फिर गुस्से का दौरा पड़ा मुन्नू की माँ। देखो जल्दी से क्रोध हरण शलाका मुंह में रखो वरना अनर्थ हो जाएगा।
2: अरे हाँ, मुझे तो क्रोध नहीं करना चाहिए था। लो ये रख ली मुंह में मैंने क्रोध हरण शलाका।
1: ठीक, अब तुम इसी तरह इसे मुंह में दबाए 15 मिनट के लिए उस कमरे में जाकर बैठ जा। 15 मिनट के लिए जुबान को एकदम बंद रखना। कैसा चैन है। अरे आज 6 बजे मैंने रमेश और उसकी पत्नी को चाय के बहाने से बुलाया था, पता नहीं वो अब तक क्यों नहीं आए। सोचता हूं अगर इस क्रोध हरण शलाका से उसका भी भला हो जाए तो क्या बुरा है। शायद वो आ गए। अरे आ गए रमेश।
3: नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते।
3: जी आपने बुलाया था, कैसे नहीं आता।
1: लीला नहीं आई?
3: लीला वो आ रही है पीछे।
1: लगता है आते आते रास्ते में फिर झगड़ा हुआ।
3: हाँ मास्टर जी, झगड़ा करते समय लीला घर बार कुछ नहीं देखती। नरक भोग रहा हूँ नरक।
1: जानता हूँ रमेश, सब कुछ जानता हूँ। आज मैं उसे ऐसा उपदेश दूंगा, उसके सामने आदर्श गृहिणी का ऐसा नमूना पेश करूंगा कि लीला एकदम प्रेममयी, स्नेहमयी, मधुर स्वभावमयी गृहिणी बन जाए। और तुम्हारा घर बन जाएगा स्वर्ग का नमूना। और हाँ, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सब तुम्हें भी आज मुझसे सीखना होगा।
3: जरूर सीखूंगा मास्टर जी। मान लेता हूँ कि आज मैं 25 वर्ष बाद फिर आपकी क्लास में पढ़ने आया हूँ। लीला आ रही है।
1: आइए आइए लीला जी, मैं दरवाजे पर आपके ही स्वागत के लिए खड़ा हूँ।
4: नमस्ते मास्टर जी।
1: नमस्ते बेटा।
4: जी मुझे पीछे छोड़कर पहले यहाँ पहुँच गए। क्या लड्डू मिल गए यहाँ आकर तुम्हें? तुम्हें तो मेरे साथ आते ही भी शर्म ना लगती।
1: शांत शांत शांत शांत लीला जी शांत। रमेश
3: जी मास्टर जी,
1: ये बात बुरी बात है, तुम्हें लीला जी के साथ आना चाहिए था। ये ठीक है कि जीवन में मर्द जरा तेज चलते हैं।
4: अरे हाँ तेज चलते हैं, हमारे ये तो जन्म जन्म के फिसड्डी हैं फिसड्डी। इनके साथ के बाबू अफसर बन गए और ये अभी तक।
3: बाबा अपना फिसड्डी ही सही, मास्टर जी मेरे बचपन के गुरु हैं, इनके सामने तो मेरी पत्नी उतारो, घर में भी झगड़ा बाहर भी झगड़ा।
4: अच्छा तो तुम अपने मास्टर जी के सामने ये साबित करना चाहते हो कि मैं झगड़ालू हूँ, लड़ाका हूँ, करता
1: हूँ? नहीं नहीं नहीं नहीं लीला जी नहीं, आपने तो बड़ा ही मधुर और स्नेहपूर्ण स्वभाव पाया है। उस दिन मुन्नू की माँ भी आपके घर गई थी, वो तो आपकी सराहना करती नहीं।
3: मास्टर जी क्या बात है, लगता है घर में जैसे ना मास्टरानी जी है ना मुन्नू है।
1: अभी बुलाता हूँ अभी बुलाता हूँ। मुन्नू की माँ, 15 मिनट हो गए, मुझे क्रोध हरण शलाका निकाल कर बाहर चली आओ।
3: क्रोध हरण शलाका?
1: अरे भाई देखो रमेश आया है।
4: मेरा भाई रमेश आया है।
2: ये तो कोई
1: भाई का नाम सुनते ही मुन्नू की माँ कैसी लपकी आई। रमेश
3: जी
1: तुम्हें शायद पता नहीं, इनके भाई यानी कि मेरे साले का नाम भी रमेश है।
3: साले का?
1: वो बंबई की एक बहुत बड़ी फर्म में काम करता है
3: जी।
1: तुम जितने नेक हो वो उतना ही दुष्ट है।
4: जवान संभाल कर बोला जी
1: है?
4: मेरे देवता सरी के भाई का दुष्ट कहते हो।
1: शाह शाह

0: पान शलाका पूरे 15 मिनट मुंह में नहीं रही।
1: मुझसे भूल हुई जी। मुझे छोटी सी बात पर यूं क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने मेरे भाई को दुष्ट कहा तो मुझे मजाक मानकर हंस देना चाहिए था।
0: कमाल।
1: आओ नीला, आओ रसोई में चले, वहीं बैठ कर बातचीत करेंगे। मुन्नू के बापू।
0: हाँ, मुन्नू की माँ।
1: तुम रमेश को संभालो, मैं अभी चाय बनाकर लाई। आओ नीला। चलो दीदी।
2: आओ।
3: मास्टर जी, आपने ये क्या जादू किया? मुन्नू की माँ का स्वभाव तो इन्हीं एकदम बदल गया।
2: हाँ।
4: पहले तो ये भी लीला की तरह झगड़ालू, क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव की थी।
0: रमेश
2: जी।
0: अरे भाई, ये सब इस क्रोध हरण शलाका की करामात है।
3: क्रोध हरण शलाका का नाम की ये लोहे की सलाई आपने भी अपनी चेन में डाल रखी है।
2: मास्टर जी, मास्टर जी, आखिर ये है क्या चीज?
0: अरे भाई, तुम इसे चमत्कारी थर्मामीटर कह सकते हो।
3: थर्मामीटर?
0: हाँ। देखो, आम थर्मामीटर तो केवल टेम्परेचर बताता है
3: जी,
0: परंतु ये क्रोध हरण शलाका दिमाग के टेम्परेचर को, मतलब ये कि दिमाग की गर्मी को 15 मिनट में ठंडा कर देती
3: है। जितनी गर्मी है दिमाग ठंडा कर देती है।
0: ये दिमागी गर्मी ही क्रोध कहलाती है।
3: वाह वाह।
0: घरों में पति पत्नी के झगड़े इसी दिमागी गर्मी के कारण ही होते हैं। देखो, 10-12 दिन हुए
3: जी,
0: उत्तराखंड की गुफाओं के वासी एक सिद्ध महात्मा दिल्ली आए
3: जी।
0: उनसे मेरी अचानक भेंट हो गई, उन्हें मैं घर ले आया। उन दिनों मुन्नू की माँ मुझसे लड़कर मैके गई हुई थी। मैंने महात्मा जी को अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने मुझे 4 क्रोध हरण शलाकाएं दी और कहा कि बच्चा, इनका उपयोग तुम भी करो, तुम्हारी पत्नी भी करे, घर में सदा सुख और शांति रहेगी। जिसे भी क्रोध का दौरा पड़े, वही शलाका को 15 मिनट के लिए थर्मामीटर की तरह मुंह में रख ले। क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा। मुन्नू की माँ जब मायके से लौटी तो मैंने उसे 1 क्रोध हरण शलाका दे दी, 1 अपने पास रख ली
3: जी।
0: जब मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं ये शलाका 15 मिनट के लिए मुंह में रख लेता
3: हूँ। आप भी?
0: हाँ, गुस्सा का पूर हो जाता है।
3: वाह वाह वाह वाह, ये तो कमाल की चीज है मास्टर जी।
2: बाकी की 2 शलाकाएं आपके पास है ना मास्टर जी?
0: अपने किसी परम प्रिय मित्र को देने के लिए वे दोनों ही मैंने अंदर की अलमारी में संभाल कर रखी थी।
2: तो मास्टर जी, मास्टर जी, 1 क्रोध हरण शलाका मुझे लीला के लिए दे दीजिए ना।
1: मास्टर जी, दीदी ने मुझे 2 क्रोध हरण शलाका का हाल सब सुना दिया है।
0: अच्छा
1: मास्टर जी, 1 शलाका मुझे भी जरूर दे दीजिए।
0: जरूर।
1: मुझे भी जब गुस्सा आएगा तो मैं 15 मिनट के लिए उसे अपने मुंह में रख लिया करूंगी।
0: लीला जी, इस शलाका का उपयोग मेरी तरह रमेश को भी करना चाहिए। घरेलू जीवन के सुख और चैन के लिए पति और पत्नी दोनों के ही दिमाग ठंडे रहने चाहिए। मैं अभी लाया तुम दोनों के लिए क्रोध हरण शलाकाएं। अरे भाई मुन्नू की माँ, ये बाकी की वो दोनों क्रोध हरण शलाकाएं अलमारी से गायब थी।
1: आप एक बार फिर ढूंढ कर देखिए, घर में ही रखी थी तो घर में ही रहेंगी।
0: अच्छा, अब पिछले स्टोर की अलमारी में और देखे लेता हूँ।
3: मास्टर जी, लीला इधर आओ। अगर ये शलाकाएं ना मिली तो बहुत बुरा होगा।
1: हाँ, बहुत बुरा होगा।
5: हे मास्टर चिल्ली,
1: प्रिंसिपल साहिबा, आप, मेरा मुन्नू क्यों रो रहा है?
6: माता जी, प्रिंसिपल साहिबा ने आज मुझे मारा, मुर्गा बनाया और अब कान से पकड़ कर घसीटती हुई लाई है।
1: ये कौन होती है मेरे बेटे को मारने वाली?
3: मास्टर जी, आप मुंह से क्रोध हरण शलाका ना निकालिए, अभी 15 मिनट नहीं हुए। मैं प्रिंसिपल साहिबा से बात करता हूँ।
5: आप मुझसे क्या बात करेंगे? कहाँ है मास्टर सिलबिल? ये शैतान लड़का पढ़ने नहीं, कमजोर नहीं, चोर भी है। मैंने विलायत से प्लैटिनम की सलाइयां मंगवाई थी, मुन्नू ने चुरा कर टुकड़े टुकड़े कर दी। आज 2 टुकड़े इसकी जेब में पाए गए। वो देखो, उन सलाइयों का 1 टुकड़ा तो मुन्नू की माँ अपने मुंह में दबाई बैठी है।
1: क्या? पहले मेरे लड़कों को चोट ठहराया और अब मुझे भी।
3: मीनाक्षी जी, मीनाक्षी।

0: जी, ये तो क्रोध हरण शलाका है।
1: अरे मुन्नू की माँ, मुन्नू की माँ। अरे भाई रमेश भाई, बहुत झूठा बाकी की दो शलाका।
2: अरे सुना तुमने, तुम्हारी ये मीनाक्षी क्या कह रही है?
0: कहाँ?
1: ओह मीनाक्षी जी आई है, क्षमा कीजिए, पहले मैंने आपको देखा ही नहीं। वो आए घर में हमारे,

0: प्लैटिनम की चमचमाती सलाइयां विशेष रूप से विनय से मंगाई थी। एक दिन वो सलाइयां स्कूल में खो गई। मैंने सब जगह ढूंढा, सबसे पूछा। आपको तो याद है ना सिल्विल जी?
1: मुझे तो कुछ भी याद नहीं।
0: आज उन सलाइयों के दो टुकड़े मुन्नू के पास से मिले। एक टुकड़ा अभी अभी मुन्नू की माँ अपने मुंह में दबाए बैठी थी।
2: मीनाक्षी जी, और एक टुकड़ा अभी आपको मास्टर जी की जेब में मिलेगा।
3: तो रमेश, क्या तुम्हारा मतलब है कि मुन्नू के बापू ने वो सलाइयां चुरा कर उनकी ये क्रोध हरण शलाकाएं बनाई है?
2: लगता है मुन्नू के पास वही टुकड़े पाए गए हैं जो सिल्विल जी अलमारी में ढूंढ रहे हैं।
0: मेरी कीमती सलाइयों की ये दशा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी।
3: मुन्नू के बापू, तुमने चोरी की है।
1: मैंने नहीं।
3: चोरी की है, चोरी करके मुझे धोखा दिया। मुझे धोखा दिया है तुमने। साधु महात्मा की देन बताकर सलाइयों के टुकड़ों से 15-15 मिनट के लिए मेरा मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद कर दिया। बीवी के साथ कैसा धोखा?
0: आज मैं
2: मास्टर जी की सूझबूझ का लोहा मानता
0: हूँ। वो कैसे?
2: मैं बताता हूँ नीला तुम्हें। एक पति अपनी बीवी की बैठक से बहुत परेशान था। जैसे मैं, बीवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने टेम्परेचर मालूम करने के लिए थर्मामीटर दिया और कहा कि बीमार बीवी आध मिनट तक थर्मामीटर मुंह में रखे। बीवी की बटझक से परेशान पति बोला, डॉक्टर साहब कोई ऐसा थर्मामीटर दीजिए तो कम से कम 15 मिनट तक बीवी के मुंह में रखा जाए। मास्टर जी ने खुद ही स्वेटर बुनने की सलाइयों का ऐसा थर्मामीटर बना डाला जो बीवी का मुंह 15 मिनट तक बंद रहे।
3: अच्छा, तो मेरा मुंह बंद करने के लिए ही क्रोध हरण शलाका का यह प्रपंच रचा गया था।
4: दीदी, मेरे इलाज के लिए मास्टर जी क्रोध हरण शलाका की भेंट हमें भी दे रहे
1: हैं। अब भाई, तो मैंने
3: मुन्नू के बापू, मेरा जी चाहता है कि यार आज तो मैं तुम्हें मार दूं। यार
2: लीला, लीला हम बाल बाल बच गए। चोरी का माल जब हमारे पास से भी बरामद होता तो क्या होता?
0: मास्टर जी, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। कल से मेरे स्कूल में ना आना। मुझे नहीं चाहिए ऐसा चोटता मास्टर।
1: भगवान, ये क्रोध हरण शलाकाएं तो नौकरी हरण शलाकाएं साबित हुई। मीनाक्षी जी,
5: अभी आप सुन रहे थे चिरंजीत की लिखी हास्य नाटिका क्रोध हरण शलाका। निर्देशक थे दीनानाथ। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे झलकी हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के प्रसारण के अंतर्गत हाजिर हो चुका है स्टूडियो से आपका अपना एफएम आकाशवाणी 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं और पेश हो रहा है आपका साप्ताहिक फेवरेट प्रोग्राम शेर और गीत। प्रोग्राम शेर और गीत सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त सदक का प्यार भरा नमस्कार आदाब। ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम चंद शेर के साथ फिल्मी नगमे सुनाते हैं। आइए इन शेर से करते हैं आगाज इस प्रोग्राम का। जहरा निगाह का शेर है कि नहीं नहीं हमें अब तेरी जुस्तजू भी नहीं, नहीं नहीं अब नहीं नहीं हमें अब तेरी जुस्तजू भी नहीं, तुझे भी भूल गए हम तेरी खुशी के लिए। ऐसे ही एहसास के साथ एक और शेर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी ने खूब लिखा है कि जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बड़ा हाथ मिलाने के लिए। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए।

हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, जख्म दिल इसलिए चेहरे पर सजा रखा है, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए।

प्रोग्राम शेर और गीत में शामिल कर रहे हैं तहजीब हाफी के ये चंद शेर कि पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा छतरी नहीं बनाऊंगा। अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया, अलम बनाऊंगा बर्छी नहीं बनाऊंगा। अलम के माने झंडे से होता है, ध्वज से। अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया, अलम बनाऊंगा बर्छी नहीं बनाऊंगा। और शेर की फरेब दे के तेरा जिस्म जीत लूं लेकिन, बढ़िया शेर है, फरेब दे के तेरा जिस्म जीत लूं लेकिन मैं पेड़ काट के कश्ती नहीं बनाऊंगा। और शेर की गले से कोई भी गुजरे तो चौंक उठता हूं, गली से कोई भी गुजरे तो चौंक उठता हूं, नए मकान में खिड़की नहीं बनाऊंगा। और अंदाज है कि मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं, मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं तो उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा। और शेर है कि तुम्हें पता तो चले बेजबान चीज का दुख, तुम्हें पता तो चले बेजबान चीज का दुख, मैं अब चराग की लौ ही नहीं बनाऊंगा। और आखिरी शेर है गीत से पहले कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा अपने सरवत पर, मैं एक फिल्म बनाऊंगा अपने सरवत पर और इसमें रेल की पटरी नहीं बनाऊंगा।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705721।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: प्रोग्राम शेर और गीत में आपका फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। शेर है कि शीश महल में कम हैरानी होती है। शीश महल यानी शीशे का महल, जिसमें कई सारे शीशे आसपास लगे होते हैं और ढेर सारे इमेजेस शक्लें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो शेर है कि शीश महल में कम हैरानी होती है, हर सूरत जानी पहचानी होती है। शीश महल में कम हैरानी होती है, हर सूरत जानी पहचानी होती है। कोई कंधा दुख को खत्म नहीं करता, कोई कंधा दुख को खत्म नहीं करता, लेकिन रोने में आसानी होती है।

प्रोग्राम शेर और गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आपको याद दिलाते चलें कि रात 9:15 पर लेकर हाजिर होंगे आपके लिए एक और साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, जिसमें हम स्थानीय खेल गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। आज उसमें खास चर्चा होगी टेनिस बॉल क्रिकेट की, जो बच्चियों का यहाँ टूर्नामेंट होता है और उसमें उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की है, उसके संबंध में बातचीत करेंगे हम। और साथ ही साथ 9:30 से आप सुनिएगा आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। फिलहाल शेर और गीत में अगला शेर आपके पास पहुंच रहा है कमर एजाज साहब का। लिखते हैं कि हद से ज्यादा भी प्यार मत करना। अच्छी बात है भाई, हद से ज्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हद से ज्यादा भी प्यार मत करना, दिल हर एक पर निसार मत करना। हद से ज्यादा भी प्यार मत करना, दिल हर एक पर निसार मत करना। क्या खबर किस जगह पे रुक जाए सांस, क्या खबर किस जगह पर रुक जाए सांस, सांस का एतबार मत करना।

0: Hello.
1: Hello. No. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

प्रोग्राम शेर और गीत में शायर इकबाल लिखते हैं कि शेर है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। और शेर है कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ समाप्त हो रहा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम शेर और गीत। याद दिला दें कि 9:15 पर साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी और 9:30 से पूरे एक घंटे का प्रोग्राम होगा। 10:30 तक हेलो अयोध्या, जो कि होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम। आप करिएगा दिलचस्प बातें और अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए फोन 7376-8040-90 पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा

0: अंतरिक्ष जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2-दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो, तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
6: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री

पेशरम ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075721।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जी हाँ श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे प्रोग्राम खेल खिलाड़ी में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज के इस खेल खिलाड़ी के सफर में क्या कुछ है हमारे पिटारे में। जी हाँ, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त सदक, लेकर हाजिर हूँ आपका खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। और आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे जी ऐसी ग्राउंड से, ऐसे कोचेस की बात जिनकी बच्चियों ने टेनिस क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाया है। केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। लेकिन इस बातचीत को सुनवाने से पहले आपको सुनवाते हैं कुछ खेल खबरों को, कुछ खेल खबरों से आपको परिचित कराते हैं। जी हां, टीम इंडिया नहीं फिर भी फीफा विश्व कप खेलेंगे हमारे भारतीय। उस टीम में भारतीय मूल के कई खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। फीफा विश्व कप में महज कुछ

0: हफ्ते बाकी हैं। भारतीय फुटबॉल प्रेमी फिर अपने देश की टीम को इस फुटबॉल महाकुंभ में नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस बार कुछ भारतीय मूल के खिलाड़ी उस कमी को भरते दिखेंगे। न्यूजीलैंड के सरप्रीत सिंह, कतर टीम के नियोल मेसन और तहसीन मोहम्मद दावेदारी पेश करेंगे। वेलवन सेंथिल कुमार और जोशाना चिनप्पा की शीर्ष वरीय जोड़ी ने तीसरा राष्ट्रीय युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित युगल का खिताब जीता। पुरुष युगल में यूपी के धामपुर बिजनौर निवासी रवि दीक्षित ने जोड़ीदार विकास के साथ, अपने जोड़ीदार जो विकास है उनके साथ कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में जोड़ी अभय सिंह और सेंथिल कुमार से हार गई, जो बाद में चैंपियंस बने। महिला युगल में जोशना और रतिका विजेता रहीं। और हम बात कर रहे थे कि टीम इंडिया फीफा में जाकर हाजिर होगी। जी हां, उनके खिलाड़ियों के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलें। ऑकलैंड में जन्मे 27 वर्षीय अटैकिंग मिडफील्डर जसप्रीत सिंह की जड़ें पंजाब से जुड़ी हैं, ये होंगे शामिल। इसी तरह कतर टीम के 29 वर्षीय डिफेंडर नियोल मेसन की मां भारतीय और पिता अमेरिकी हैं। इंग्लैंड में जन्मे मेसन ने 7 वर्ष की उम्र से रियल मैड्रिड एकेडमी में ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और ये भी फीफा विश्व कप में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह एक और भारतीय शामिल होंगे फीफा में, 19 वर्षीय अटैकिंग मिडफील्डर तहसीन मोहम्मद के दोनों माता पिता भारतीय मलयाली हैं, साउथ इंडिया से हैं ये। इनके पिता जामशिदा और मां शैमा केरल से हैं। तो भाई ये चार बल्कि तीन खिलाड़ी हमारे फीफा में शामिल हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC में बदलाव की तैयारी कर ली है। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रोजर टोज द्वारा सुझावों पर 21 मई को ICC की मुख्य कार्यकारी समिति बैठक में चर्चा होगी। फिर 30-31 मई को अहमदाबाद में बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पेश होगा। इसमें एक टेस्ट वाली श्रृंखला को मान्यता देने और सभी पूर्ण 12 सदस्यों को WTC का हिस्सा बनाने पर निर्णय लिया जाएगा। अभी अफगानिस्तान, आयरलैंड और जिम्बाब्वे WTC में शामिल नहीं है। 31 मई की बैठक के लिए ICC बोर्ड के सभी सदस्य, जी हां ICC बोर्ड के सभी सदस्य अहमदाबाद आएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी वर्चुअली शामिल होंगे इस मीटिंग में। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कुछ खेल खबरें और आइए अब रुख करते हैं, जैसा कि हमने वादा किया था आज के इस प्रोग्राम में, आपको ले चलेंगे ग्राउंड पर हमेशा की तरह और वहां पर बातचीत करेंगे खेल के बारे में। जैसा कि हम अभी क्रिकेट की भी बात कर रहे थे और क्रिकेट इस समय अयोध्या में काफ़ी डेवलप कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम भी बनकर तैयार है। और वहीं टेनिस क्रिकेट की अगर हम बात करें और ख़ास तौर से गर्ल्स टीम की बात करें तो उनकी उपलब्धियाँ देखने लायक हैं। हमने बातचीत की इस टीम के कोचेस से, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच दोनों से बात की, आइए सुनते हैं इस बातचीत को। तो श्रोताओं, इस समय हम GGIC के इस ग्राउंड पर ही हैं और अभी भी बच्चियों ने यहाँ से अपनी तैयारी करके पैकअप किया। टेनिस बॉल क्रिकेट कोच से हमारी मुलाकात हो रही है। सबसे पहले सर हम आपका परिचय।
1: मेरा नाम रमेन सिंह है, मैं अयोध्या रहने वाला हूँ। हमारा खेल टेनिस बॉल भारत सरकार से 1999 से मान्यता प्राप्त। अभी रिसेंटली अयोध्या की करीब 9 बच्ची है पोस्टल डिपार्टमेंट में इसी खेल के द्वारा उनकी ज्वाइनिंग हुई है।
0: सर एक कोच है और बच्चियों को खास तौर से आप टेनिस बॉल क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं और 99 से ये काम आप अनवरत कर रहे हैं, यानी कि 27 साल आपने पूरे कर लिए हैं। कोई बड़ा अचीवमेंट हुआ उसके बारे में बताएं।
1: अभी ऑल इंडिया चैंपियनशिप हुई थी हमारी हरिद्वार में, इसमें हमारी टीम ने लगातार 6ठे साल
0: जी
1: इस चैंपियनशिप को उठाया है। सुपर फोर है फॉर्मेट हमारा टेनिस बॉल का, T20, T10 है। तो सुपर फोर में क्या होता है कि 38 की बाउंड्री होगी तो आपको फोर मारना है, सिक्स मारने पर आउट होता है।
0: ये मतलब कंट्रोल चाहिए
1: फॉर्मेट। इसमें लगातार अपनी बच्ची और यूपी की टीम से, ये बहुत बड़ी बात है कि अयोध्या 16 की टीम में यूपी के 12 से 13 बच्चे हर बार टीम में होते। एक बिटिया जो भी फेरवाड़ में ज्वाइन किया उसने वो वेस्ट ऑलराउंडर कप खिताब पाई हो, तो बिटिया मुस्कान जायसवाल है वो सीरीज पाई
0: नेशनल लेवल।
1: नेशनल लेवल
0: तो बड़ा अचीवमेंट है, अयोध्या की धरती पर हमारी बच्चियां इतना बढ़िया अचीव कर रही हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, अच्छा कर रही हैं। 99 से तो आपने बच्चों को खिलाना शुरू किया, तो जरा अपने खिलाड़ी होने का जो यादें हैं अगर कुछ बची हो उसे बताएं जरा।
1: सर बेसिकली हमारा परिवार खेल से है
0: जी,
1: पापा भी हमारे खेल में थे, हम तो चार भाई चारों ही खेल में, तो हम लोग किसी से सिखाया नहीं है, मतलब खेलते खेलते ही अपने आप ही, मतलब कोई सिखाया नहीं, कोई कोच नहीं मिला, कुछ नहीं, स्वयं ही अच्छा करने लगे हम लोग।
0: और आप कोच बन गए और आप नेशनल लेवल तक सब कुछ अचीव करा रहे हैं।

0: एक चीज कहते हैं हम लोग अक्सर कि जो खिलाड़ी होता है उसके जीवन में अनुशासन होता है। ये भी कहा जाता है कि जिस देश में ज्यादा खिलाड़ी होते हैं वो देश ज्यादा अनुशासित होता है। आपके परिवार में ढेर सारे लोग खिलाड़ी हैं, तो उसका क्या असर आपके परिवार में दिखा?
1: असर ये पड़ा कि जैसे परिवार में हम चार लोग हैं, तो पहले क्या था, दो भाई गर्ल्स में, दो भाई जैसे बॉयज स्कूल में टीचर है, तो विवाद होता था आपस में, हम लोग मैचेस होते थे तो
2: अच्छा,
1: और ऐसा विवाद होता था जो लगता है कि मार हो जाएगी मैच
2: अपनी टीमों को
1: लेकर, राजकरण आदर्श, तो लगता था कि मार हो जाएगी। एक खेल से हटे कि वो हैंडबॉल में चले गए, हम लोग क्रिकेट में चले गए, ऐसे लोग चुनाव किए, तब आज जाके ये रास्ता मिला।
0: तो आखिर कैसे मेहनत कराते हैं, कितनी तैयारी कराते हैं सर आप इन बच्चों की?
1: सर जैसे प्रैक्टिस करते हैं 3 घंटा कम से कम
2: जी,
1: उससे कम नहीं करते। अब मैं भी शॉप बंद करके आता हूँ,
2: अच्छा,
1: कभी एब्सेंट नहीं हुआ। और वो बच्चे भी, उनका नियम है कि समय से टाइम है 2:30 बजे आ जाएंगे, वो उनका अटेंडेंस होती है उस टाइम पे वहाँ मौजूद, नहीं तो उनका फाइन लगेगा। फाइन कमाने की जरिया नहीं है, पंचुअल होना है, डिसिप्लिन में होना है, क्योंकि आज किसी 10 खर्चा होगा ना, सोचता है पैसा खर्चा हो, और बच्चे पर में पानी बस तब भी खेलेंगे आकर के, चाहे छोटे ग्राउंड में खेलें।
0: नेशनल लेवल तक अचीव कर रही हैं, जो यूपी की टीम बनती है उसमें मैक्सिमम बच्चियां भी हमारे अयोध्या से ही हैं, हम सबके लिए गर्व की बात है। कितनी देर का अभ्यास कराते हैं, कितना समय रोज लड़कियां देती हैं?
1: करीब करीब 3 घंटे। जैसे पहले फिजिकल आपका होगा, रनिंग कराएंगे
2: जी,
1: एक्सरसाइज कराएंगे, उसके अलावा की बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग, ये तीनों चीज परमानेंट होती, कभी संडे को मैच कर दिया।
0: अच्छा, कुछ बच्चियों को स्पेशलाइज करते होंगे,
1: जो बच्चा बॉलिंग लायक है पहले उसको देखते हैं, हाथ पूरा घूम रहा है, उसको पहले प्रेफर करते हैं, फिर बॉलिंग अलग से बैटिंग बच्चे अलग।
0: कोई लड़की क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो और आपसे जुड़ना चाहे, आपके साथ खेलना चाहे, तो कैसे आए?
1: वो कुछ नहीं, आप जीआईसी ग्राउंड शाम को आए, मुझसे मिले, 3 बजे से आ जाए और मुझसे आके मिले, और फिर नॉमिनेट हो जाएगा उसका, कोई फीस नहीं है
2: जी, जी।
1: तो आधार कार्ड लेके फोटो लेके फोटो हो जाएगी, ज्वाइन करें फिर।
0: मतलब सिंपली ये गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है और निःशुल्क है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो भी हमारी श्रोता बहनें इसको सुन रही हैं और वो क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ना चाहती है, और खुशी की बात है कि ये जो खिलाड़ी आते हैं सर, ये बच्चियां कैसे बैकग्राउंड से?
1: कोई के पापा जो मजदूरी करते हैं,
2: हाँ।
1: कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, ऐसे ऐसे लोग के बच्चे खेलने आ रहे हैं,
0: वो खेल जब रहे हैं और उस खेल की उपलब्धियों से इन्हें नौकरी भी मिल रही है।
1: हमारी भतीजी भी सर शुरू से खेलती थी और अभी लगातार वो इंडो श्रीलंका, इंडो भूटान सब जगह खेल के आई है, उसे जॉब मिला।
0: तो कौन सी नौकरी मिल गई उसको?
1: चौटी असिस्टेंट है रेलवे के डाकखाने में देहरादून में।
0: तो कहने का मतलब, जो इतना सोशियो इकोनॉमिक वीकर बैकग्राउंड से आप बच्चियों को यहाँ पर ला रहे हैं सर, लेकिन जिनको आप बता रहे हैं मजदूर वर्ग से आ रही हैं,
1: एक जो बच्ची मुस्कान जायसवाल है, उसके अंडा बेचते थे, पुल बना टूट गई, दुकान खत्म हो गई, जॉब पाई देहरादून में।
0: बिल्कुल।
1: एक बच्ची रिस्का तिवारी है, वो पुथरागढ़ में, उसके फादर जो है परचून दुकान थी, वो दुकान टूट गई पुल बनने पर
2: जी जी,
1: वो पुथरागढ़ में जॉब कर रही है।
0: चलिए देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी हमको, और मेहनत करने वालों की कहते हैं कभी हार नहीं होती है, और स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, वो तो बस खेलने में विश्वास करते हैं, जीत तो उनको सामने से मिलती ही मिलती है। और ये प्रमाण है जो भी आप बता रहे हैं सर खुद ही, कि आप जिस तरह से सेवा भाव से काम कर रहे हैं स्वप्रेरित होकर, उसमें इनको नौकरियां भी मिल रही हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हमें इसका लाभ मिल रहा है। रमेंद्र सर, आप यहाँ पर प्रशिक्षक के रूप में हैं, तो क्या इतना बड़ा काम जिसमें लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं, अकेले ही करते हैं कि कभी किसी सहयोगी या दूसरों के साथ?
1: पूरे परिवार का, सब भाइयों का, और हमारे साथ राजेश भाई हमारे हैं जो खेल अध्यापक भी हैं आईडी कॉलेज में, आप बॉलिंग बच्चों को सिखाते थे मेरे साथ ही, और उनका बड़ा सहयोग।
0: आइए श्रोताओं, तो हम बातचीत करते हैं अपने ये बॉलिंग के कोच सर, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में, अपना परिचय हमारे श्रोताओं को।
3: राजेश प्रताप सिंह, खेल प्रवक्ता इंटर कॉलेज सुचितागंज सोहावल।
0: जैसा कि रमेन सर बता रहे थे, हमको बड़ा अच्छा अचीव कर रही है और आप बॉलिंग का ट्रेनिंग देते हैं, क्या कुछ इसमें हुनर किस तरह से सिखाते हैं बच्चों का?
3: शुरुआत में ले जाना चाहूं तो सर से हमारी मुलाकात बहुत पहले से थी
0: जी,
3: पारिवारिक थी, चूंकि सर को भी पता था कि हम खेल टीचर हैं और कभी सर हमारे साथ खेलते भी थे
0: जी,
3: तो आपको महसूस हुआ चूंकि आपको अपने बच्चों को बहुत आगे ले जाना था कि तो कहीं ना कहीं आपको और क्षेत्र में क्षेत्र फील्डिंग या क्षेत्र रक्षण उसको कह लीजिए, बॉलिंग, इन क्षेत्रों में भी आपको जरूरत थी, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि आप मूलतः हमारे जो रविंदर सिंह सर हैं वो मूलतः कोच तो थे ही,
0: अच्छा,
3: और अच्छे बल्लेबाज हैं
0: जी जी।
3: तो आपको ये लगा, आपका डेडिकेशन जो था इस गेम के प्रति, या कह लीजिए कि अयोध्या जनपद के बच्चों के या छात्रों को आगे बढ़ाने के प्रति, वो काबिले तारीफ, उसमें कुछ इधर उधर की बात नहीं है, मेरी आंखों की देखी है ये कि अगर बारिश भी हो रही है तो रविंदर सर बारिश रुकने के बाद फर्श पे प्रैक्टिस कराते थे और कहते थे सर आप रुकिए और अभी मैच होगा। बच्चियां वेट करती थी और अगर थोड़ा मोड़ा बारिश थी तो पानी अपने हाथ से गिलास से थाली से बाल्टी से निकाल के सुखवा के तब भी। कहने का हमारा मतलब है जो आज ये आप सफलता देख रहे हैं, कहानी के पीछे की स्थिति आप ये जान लीजिए कि 24x7 या 365

0: एवन, ये तो ना आपका कोई दिन संडे मंडे आपके लिए कोई त्योहार नहीं, आपके लिए बारिश नहीं, तूफान नहीं, प्रैक्टिस होगी तो होगी, तब जाके आज ये सफलता की कहानी अयोध्या और यूपी लिख रहा है।
1: कोई भी बड़ी सफलताओं के पीछे बड़ी मेहनत होती है, ना भी अगर उसे जाना जाए तो ये सच हमेशा रहता ही है। जहाँ भी बड़ी सफलताएं मिले उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल की कहानी होती है। आप ट्रेनिंग देते हैं, जो बॉलिंग बच्चियों को सिखाते हैं, आप उन्हें कैसे चुनते हैं और किस तरह से उनको प्रशिक्षित करते हैं?
0: सबसे पहले तो बच्चों का इंटरेस्ट भी देख लिया जाता है
1: जी,
0: और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आप इस फसल किस में हो, लेकिन उतने सही नहीं, बच्चों को ग्राउंड पे लेकर के उनकी स्पीड है, रिदम है, बॉल थ्रो की स्पीड है, ये सब देख करके फिर उनको तय किया जाता है कि गेंदबाजी में है कि ऑलराउंडर है। तो ऑलराउंडर और गेंदबाज
1: जी,
0: दोनों को गेंदबाजी, अब किसी की कलाई अच्छी घूमती है, फोर्स अच्छा है, किसी की रनिंग अच्छी है, तो उसको उस हिसाब से पेसर, मीडियम पेसर, स्पिन तय कराया जाता है और बॉलिंग सिखाई जाती है।
1: लड़कियों के लिए कितना अवसर खुला हुआ है आज के डेट में? अयोध्या की धरती से अगर कोई बच्ची यहाँ से तैयारी कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर तो जा ही रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्या कुछ मिल सकता है?
0: ये आपके सामने की स्थिति है कि यही बच्चे जिन बच्चों की आप चर्चा कर रहे हैं और इसी अयोध्या में खेल के प्रैक्टिस किए, ये बच्चे इंटरनेशनल खेल चुके हैं।
1: वाह,
0: इंटरनेशनल खेल चुके हैं यही बच्चियाँ। आपने नाम लिया रिस्का, मुस्कान, नीलम निषाद, दिव्यानी, ये सारी बच्ची श्रीलंका इंटरनेशनल कई मैच खेल चुकी है और जिसके परिणाम स्वरूप इनको नौकरी भारत सरकार ने दिया है और यहाँ के बच्चों को उसी टेनिस बॉल में भारत सरकार नौकरी दे रही है
1: और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान भी बन रही है,
0: पहचान भी बनी है। और खुले तौर पे मैं कह रहा हूँ कि पूरे चांसेज हैं, उसके बाद भी मैं बच्चों को या उनके गार्जियन को मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि वो निराश हो, ये पूरे चांसेज हैं कि जो भी बच्चियां यहाँ नेशनल खेल रही है, प्रैक्टिस कर रही है, आगे नेशनल खेलेंगी, उनको भारत सरकार 2% कोटे के तहत नौकरी देगी, जिसकी शुरुआत रमेंद्र सर, जो इनकी मेहनत और इनके डेडिकेशन के बदौलत कम से कम आज की डेट में जनपद अयोध्या की 7-8 बच्चियां जो केंद्र सरकार के तहत नौकरी कर रही है। और हम तो कहेंगे कोई कंपटीशन नहीं, हमने तो 7-8 साल आप साथ रहे हैं, इन्हीं 4-6 साल की डेडिकेशन और मेहनत ने बच्चों को अच्छी नौकरी दिलाई है, अच्छा रोजगार दिलाया, नाम दिलाया।
1: श्रोताओं, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिस पर अगर हम 1 घंटे, 1 दिन और 1 साल भी बात करें तो कम पड़ती है, और इतने शानदार हमारे कोचेज हों रमेंद्र सर जैसे और राजेश सर जैसे, तो बातों का सिलसिला थमता नहीं, लेकिन हमारे कार्यक्रम की अपनी एक सीमा है। तो आज के लिए हम सर आप दोनों से अपनी बात यहीं तक सीमित करते हैं। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए खेल खिलाड़ी में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खेल प्रेमियों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये खेल खिलाड़ी का अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इसी बातचीत के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी से दीजिए इजाजत, अपने रेडियो दोस्त सदक को नमस्कार। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, FM बैंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात के 9:30 हो चुके हैं, लीजिए पेश है आपका पसंदीदा अलबेला सजीला सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। जी हाँ, आपको मैजिकल नंबर हमारा याद ही है 7376 80 40 90, इसी नंबर को मिलाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए, अपनी फरमाइश के लिए, अपनी दिलचस्प बातों के साथ। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त सदक, आज इस प्रोग्राम में आपके साथ। तो प्रोग्राम में पहली कॉल लेने से पहले आइए ये पहला कॉमर्शियल ब्लैक लेते हैं हम लोग।
2: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
1: तो भाई हमारे इस प्रोग्राम की पहली कॉल लगेगी। हेलो
3: हेलो, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो कोई गम न करो, बस आकाशवाणी अध्यय ट्यून करो और बजाते रहो।
1: वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जुड़ने वाले हमारे श्रोता कौन है, आपका क्या नाम है और कहां से फोन लगाया सर आपने?
3: सर हम आकाशवाणी अध्यक्ष के बहुत ही पुराने लिस्नर रजनीश चौरसिया नवाबों के शहर लखनऊ से बात कर रहे हैं।
1: वाह रजनीश जी, आपने तो भाई प्रोग्राम में जान डाल दी, बड़े अच्छे अंदाज में हाजिर हो गए आप प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: जी सर,
1: क्या सुनना चाह रहे हैं, कौन सा गाना?
3: जिस तरह हम बताना चाहते थे पहले जो आपके

0: कार्यक्रम आधे घंटे का आता था सप्ताह में 3 या 4 बार
1: जी जी,
0: तो उसमें हम कॉल किया करते थे, लेकिन अभी मुझे मतलब हमारे दोस्तों से पता चला कि आपके यहाँ 1 घंटे का फोनिंग कार्यक्रम आ गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, इसमें ज्यादा से ज्यादा श्रोता शामिल होंगे।
1: बिल्कुल सही बात है, और यही केवल जो है 1 घंटे का प्रोग्राम तो रात में होता ही है चौरसिया जी, मॉर्निंग में भी आपके 5 दिन हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 10 सवेरे भी ये प्रोग्राम होता है, लाइव होता है हमारे यहाँ से, है ना?
0: जी, बहुत बढ़िया सर,
1: तो उसे भी आप जरूर एंजॉय कीजिए।
0: सही रहता कि हम जॉब करते हैं तो समय हमारे पास इतना नहीं होता है और शाम को फ्री होते हैं, तो इसलिए आप कार्यक्रम सुन पाते हैं।
1: बहुत शुक्रिया। तो गाना आपने पसंद किया है राधा का संगम फिल्म से?
0: जी जी, गाने के बोले 2 बोल कह के, और जितने मेरे जानने वाले हैं और जितने लोग सुने सभी के लिए
1: बहुत शुक्रिया। लीजिए आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं, फिर कॉल कीजिएगा हमें। धन्यवाद।

0: भाई कहा जा रहा है तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, और ये आकाशवाणी हमारे श्रोताओं का है और हमारे श्रोता हमारे सबसे प्रिय हैं। बात करते हैं। हेलो हेलो जी सर नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहां से फोन लगाया आपने?
1: ये मैंने रानोपाली से लगाया है, अयोध्या से।
0: रानोपाली अयोध्या से आप जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सर?
1: नहीं, कार्यक्रम तो बराबर सुनते थे लेकिन कई बार फोन लगाया गया लेकिन लगा नहीं सर।
0: अच्छा, नाम भी बता दीजिए अपना।
1: लगा हुआ
0: नाम बता दें, अपना नाम बता दीजिए फिर से।
1: मेरा नाम नागेंद्र कुमार गौड़ है।
0: नागेंद्र कुमार गौड़ जी हमसे बात कर रहे हैं, क्या करते हैं सर आप नागेंद्र जी?
1: सर मेरे पास खेती बाड़ी कृषि का काम है।
0: अच्छा, ये रानोपाली एरिया में खेती होती है अभी भी ना?
1: नहीं, मैं अम्बेडकर नगर में रहता हूँ, आया हूँ यहाँ पर।
0: अच्छा, यहाँ पे आए हुए, वही मैंने कहा रानोपाली अभी नगर निगम में आ गया, पहले तो गांव ही था वो भी, और वहाँ अच्छी खासी खेती भी होती थी।
1: सर
0: हमें लगता है अभी भी कुछ थोड़ी बहुत खेती होती होगी वहाँ रानोपाली में।
1: हाँ, खेती होती है, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर बगल में भी खेती होती है।

0: जी
1: सब्जियों की खेती होती है यहाँ पर।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और आज अयोध्या में आए हैं और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं।
1: जी।
0: और कौन कौन आपके साथ ये कार्यक्रम सुन रहा है, किन के यहाँ आए हैं आप?
1: हेलो
0: जी, और जी? आपके साथ और कौन ये प्रोग्राम सुन रहा है?
1: हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी हैं।
0: अच्छा,
1: बच्चे हैं सब लोग।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी पसंद का ये गाना है फिल्म आशा से ना, रफी साहब की आवाज में, तो हम बजा देते हैं फिर आपका गाना, सुनिए सबके साथ, एंजॉय कीजिए। हमें फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम।

0: भाई प्रोग्राम हेलो अध्याय चल रहा है, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है, लाइव फोन इन प्रोग्राम है, डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं 7376804090 मिलाकर। अगर कभी ना जुड़े हो इस प्रोग्राम से तो आज जरूर जुड़िए, आपका दोस्त कर रहा है आपका इंतजार। और एक छोटा सा अंतराल, उसके उस पार हमारे एक श्रोता टांडा से हमसे जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: प्रोग्राम हेलो अयोध्या में आपका फिर से स्वागत है। आइए जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो,
2: हेलो
1: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: ये सर, मैं मोहम्मद अमरान बेग बोल रहा हूँ, अम्बेडकर नगर अलनपुर से।
1: अम्बेडकर नगर अलनपुर से आप जुड़े हैं, क्या करते हैं सर आप? हमरान भाई
2: सर घर पे रहते हैं, उसके साथ क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, कुछ खेती किसानी का भी काम है।

0: भाई वाह, हमें ऐसे किसान से बात हमारी हो रही है जो क्रिकेट भी खेलते हैं। आज अभी हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, इस प्रोग्राम से ठीक पहले खेल खिलाड़ी सुना आपने?
1: सर आखिर का 2 मिनट सुना था, असल में आज थोड़ा लेट हो गए थे।
0: अच्छा बहुत, उसमें क्रिकेट की बात हो रही थी और अपने जिले में एक अच्छी टीम बनती है यूपी की जो नेशनल में अचीव करके आई है, तो बड़ी अच्छी बातचीत थी उसमें। हमें लगा कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो शायद सुने हो, तो आपको अच्छा लगा होगा जरूर। चलिए
1: जी सर, आपका जो खेल खिलाड़ी कार्यक्रम होता है मुझे बहुत अच्छा लग जाता है।
0: चलिए बहुत शुक्रिया। हर संडे के दिन आता है ये 9:15 से 9:30 के बीच, और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने स्थानीय जो खिलाड़ी हैं, यहाँ के अचीवर हैं, उसमें उनको शामिल भी करें।
1: जी
0: जी, तो और बताइए कौन सा गाना सुन रहे हैं आज आप?
1: सर हमराज फिल्म का सुना दीजिए कोई भी।
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं सभी, उदित और अलका की आवाज में ये गाना हम आपको सुनवा देंगे। चलिए तो आपसे बातचीत होती रहती है, फिर आप बात करिएगा, आपका गाना पहुंचाते हैं, ठीक है? और आपका रेडियो मुझे लग रहा है तेज चल रहा है, जिसकी आवाज हम तक पहुंच रही है।
1: असल में सर मोबाइल में सुनते हैं ना, हमारे एक साथी भी साथ में, वो भी सुनते हैं।
0: हाँ तो वो आपको पास से सुना रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, उनसे कहिए थोड़ा दूर रहें, अकेले सुने, ठीक है?
1: जी ठीक है।
0: चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अगली बार इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है? जो भी श्रोता हमें फोन कर, उनको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जब हमसे बात करें तो अपने उस डिवाइस को जिससे आप सुन रहे हैं खुद को, उससे दूर रहें, उसकी आवाज आपके मोबाइल में जाएगी तो आपकी आवाज टकराएगी और आवाज अच्छी नहीं आएगी, इस चीज का सबको ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी गाना, आपका पसंद का गाना जा रहा है।

0: और भाई हमारे जो सबसे प्यारे हैं, जिनको हमसे प्यार है, वो हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। और इस बीच हमसे एक और श्रोता जुड़े थे, बता दूं, सुनील प्रजापति जी बस्ती से, न जाने टेक्निकल फॉल्ट से उनका फोन कट गया, और देखिए इनका भी फोन कट गया। मोती लाल जी हैरिंटनगंज से जुड़े हमसे, सुनील प्रजापति जी जुड़े, और दोनों ही लाइन से बाहर जा चुके हैं। अफसोस हमें इस बात का है। आइए अपने अगले श्रोता से जुड़ने की कोशिश करते हैं हम। हेलो हेलो, आकाशवाणी अयोध्या में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए।
1: आभा वर्मा।
0: क्या नाम है?
1: आभा वर्मा।
0: आराध्या वर्मा?
1: आभा वर्मा।
0: आद्या वर्मा?
1: आभा वर्मा।
0: आधा वर्मा?
1: आभा वर्मा।
0: राधा आधा? चलिए मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ भाई, लिख के देख सुनना पड़ेगा आपका नाम। या तो आपका नाम आद्या होगा, आधा कौन सा नाम होता है?
1: आभा वर्मा।
0: आभा, हाँ तो ऐसे बोलिए। चलिए कुछ माइक की कान में जो आवाज आती है ना नेटवर्क की वजह से, वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। आभा का बहुत स्वागत है। आभा, कौन सा गाना सुनेंगे आप, किस फिल्म का?
1: कुली नंबर वन।
0: कुली नंबर वन। कितने, किस क्लास में पढ़ती हैं आप आभा?
1: कुली नंबर वन वाला गाना।
0: हाँ वो तो मैं सुना दूंगा। कुली नंबर, पिक्चर देखी है आपने कुली नंबर वन?
1: क्या
0: कुली नंबर वन फिल्म देखी है आपने?
1: जी नहीं।
0: अच्छा तो गाना कौन सा सुनेंगी इसमें कुली नंबर वन में?
1: अच्छा लगता है।
0: हाँ ठीक है, कौन सा गाना सुनिएगा इसमें?
1: ठीक है, छोटी मियां बड़ी मियां।
0: अरे नहीं, मैं कुली नंबर वन खोल के रखा हूँ, कौन सा गाना सुनेंगी इसमें? हुस्न है सुहाना या
1: दीजिए।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बाप जो कह रही है वो मैंने गाना निकाल लिया भाई, सुनाऊंगा मैं आपको। क्या करती हैं आप? चलिए बहुत शोर आ रहा है, हम आपके पसंद का गाना आपको। हाँ जी आभा बताइए,
1: सुनाइए।
0: हाँ सुना रहे हैं।

0: भाई प्रोग्राम हेलो अयोध्या में बात कर रहे हैं हम अपने इस कॉलर से। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
1: जी मैं मुकेश कुमार साहू बोल रहा हूँ जी, छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत स्वागत है मुकेश जी, आप बड़े दूर से हमसे जुड़े आज, बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले इस प्रोग्राम में कभी जुड़ना हुआ आपका?
1: जी सर, एक बार और फोन लगा था मेरा लगभग 7-8 महीने पहले।
0: बहुत अच्छे हैं आप इतने दिन बाद फिर आ रहे हैं, और जल्दी आना चाहिए भाई। कुछ लोगों को हम कहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं, और कुछ लोग से ये भी कहना पड़ रहा है कि इतनी देर से क्यों लौट कर आए भाई।
1: जी सर, कोशिश तो करते हैं मगर फोन नहीं मिल पाता है।
0: बाकी प्रोग्राम तो सुनते रहते हैं ना रेगुलर?
1: जी जी, प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज आप राजा हिंदुस्तानी का गाना सुनना चाह रहे हैं, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
1: बिल्कुल सर,
0: तो ये फिल्म भी जरूर आपने देखी होगी मुझे लगता है।
1: जी बिल्कुल देखे सर, इसमें का सभी गीत सुपर हिट है इस फिल्म का।
0: और फिल्म कैसी है?
1: फिल्म भी सर अच्छे है मगर मुझे तो ज्यादातर सभी गाने इस फिल्म के बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल सही, हमें भी ये फिल्म और ये सारे गाने भी बहुत पसंद है। और क्या करते हैं आप सर?
1: सर मैं वैसे तो ईंट बनाने का काम करता हूँ, और फिलहाल मैं अभी आपके उत्तर प्रदेश में ही हूँ मैं।
0: अच्छा, यहाँ पे ईंट बना रहे हैं अभी है, उत्तर प्रदेश में?
1: जी जी सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, लोगों के घरों की एक एक यूनिट आप बना।
1: इनौना के पास।
0: अच्छा, अमेठी में है
1: जी।
0: चलिए बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बताइए हमको, ईंट पर जो लोग काम करते हैं, आप लोग जो ईंट बनाते हैं सर, ये 24 घंटे में एक दिन में कितने घंटे तक लगभग काम करते हैं आप लोग, कोई टाइम आप लोग का होता है?
1: जी हम लोग सर लगभग 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता है सर।
0: अरे
1: जी,
0: तो ये दिन दिन में करते हैं कि रात में भी करते हैं काम?
1: सर अभी तो ज्यादातर रात में ही करते हैं क्योंकि अभी
0: मौसम
1: बहुत है, गर्मी हाँ। ज्यादा है तो रात में ज्यादा काम करते हैं, 11 बजे तक रात में।
0: अच्छा, सर्दियों में दिन में भी करते हैं?
1: सुबह भी करते हैं, और ठंड के दिन में तो सर दिन भर काम करना पड़ता है, पूरे रात आराम रहता है।
0: जी बिल्कुल, चलिए आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, और आप काफी मेहनत करते हैं ये देख कर अच्छा लगता है, सैल्यूट निकलता है आप जैसे मेहनत कश लोगों के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, और आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है, सुनिए
1: जी सर। धन्यवाद,
0: नमस्कार।

0: भई राजा हिंदुस्तानी का ये प्यारा सा गाना चल रहा है और हमसे प्रोग्राम में जुड़ेंगी गोंडा से मोनिका जी इस अंतराल के बाद।
1: सुना थे सखी, सुना थे वो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: आपकी बात कार्यक्रम में,
5: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
4: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
5: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
6: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
5: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
6: 830-3991-11 पर भेज दें।
4: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
7: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
4: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
7: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
4: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
7: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
4: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
7: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।

0: आम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज़, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: जी हाँ श्रोताओं, आपके मन के रेडियो से चल रहा है आपके मन का प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो अयोध्या, जो है सजीव फोन इन कार्यक्रम, लाइव फोन इन प्रोग्राम। हमारे साथ जुड़ रही हैं गोंडा से मोनिका जी। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते मोनिका जी, कैसे हैं आप?

0: हम ठीक हैं सर, आप बताइए।
1: हम भी बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात जब करते हैं हम श्रोताओं से तो और अच्छे हो जाते हैं हम लोग। कौन सी फिल्म का गाना सुनवा रही हैं आज आप सबको?
0: सर हम मन मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं।
1: जरूर सुनाएंगे आपको। क्या करती हैं आप मोनिका जी?
0: सर अभी तो स्टडी कर रहे हैं, इस बार 12th में
1: है। अरे वाह, तो भाई हाई स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा था आपका? बढ़िया?
0: सर बहुत अच्छा नहीं था पर सही था।
1: चलिए इस बार अच्छा कर दीजिएगा।
0: यस सर, इस बार अच्छा करना है।
1: उस बार सही था, इस बार अच्छा हो जाएगा। तो पढ़ाई के अलावा और क्या शौक रखती हैं मोनिका?
0: सर हम गेम खेलते हैं।
1: अरे वाह, कौन सा गेम खेलती हैं?
0: तो ताइक्वांडो खेलते हैं, इस बार नेशनल हुआ है।
1: ताइक्वांडो के नेशनल प्लेयर से मेरी बात हो रही है मोनिका जी से? क्या बात है।
0: यस सर।
1: तो फिर ये जो ताइक्वांडो खेल होता है, जरा इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को, क्या होता है इसमें? इतना तो पता चल रहा है कि फाइटिंग गेम है ये, पर फाइटिंग के कुछ रूल्स होते होंगे ना, वो कैसे होते हैं?
0: सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है सर, ये गर्ल्स के लिए बहुत बेनिफिट देता है, सब अपने खुद के डिफेंस के लिए।
1: बिल्कुल, आत्मरक्षा के लिए।
0: बढ़िया, इसमें चाहे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं सर।
1: जैसे आप बढ़ी हैं, नेशनल तक खेल के आई हैं।
0: यस सर, हम जेएनवी मनकापुर गोंडा में पढ़ते हैं, तो उसी स्कूल की तरफ से जाते हैं खेलने।
1: क्या बात है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। और नेशनल कितनी बार खेल गई हैं आप मोनिका?
0: इससे पहले तो सिल्वर हुआ था सर, इस बार नेशनल हुआ है, और नेशनल हमारा छत्तीसगढ़ जा रहा है।
1: अच्छा, एक सवाल आपसे पूछूं मोनिका, जहां तक मुझे जानकारी है कि आप नवोदय विद्यालय में अभी हैं कि वहां से बाहर हैं?
0: सर इस समय तो छुट्टी चल रही है, घर पर
1: हैं। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि भाई हॉस्टल में तो फोन रखना मना होता है ना। चलिए ये बढ़िया फायदा आपने उठाया, नहीं तो मैं यही सोच रहा था कि आप वहाँ हॉस्टल में रहकर कैसे बात कर पा रही हैं।
0: Anyways, नहीं सर, इस समय छुट्टी चल रही है, जुलाई में ओपन होगा स्कूल।
1: हाँ चलिए, बहुत अच्छा, आप बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, तो आप खूब अच्छे से पढ़िए। खेल आप कर रही हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है, खेल में भी बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, दोनों काम बढ़िया करिए, ठीक है? हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका गाना जा रहा है मन फिल्म से, सुनिए।
0: थैंक यू सर।

0: और भाई मेरा मन कर रहा है कि अगले श्रोता से बात हो जल्दी भाई, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं
0: जी संजय वर्मा जी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। कैसा मौसम है बिजनौर का पश्चिम में?
1: गर्मी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है।
0: अच्छा, बारिश वारिश की कुछ संभावना?
1: नहीं जी, समस्त बारिश की संभावना।
0: अच्छी बात है, चलिए। तो कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
1: मोरा का सुनवा दीजिए
0: ना, कजरे की धार।
1: जी सर, जी सर,
0: बिल्कुल सुनवा रहे हैं हम आपको ये गाना। और क्या करते हैं सर आप? संजय जी,
1: मैं सर रेडियोग्राफर हूँ।
0: वीडियोग्राफर?
1: रेडियो रेडियो रेडियो
0: रेडियोग्राफी करते हैं आप, मींस की एक्सरे करते हैं ना? हमारे सभी श्रोता नहीं समझ पाएंगे रेडियोग्राफर आप बोलेंगे तो मैंने कहा बता दूं। तो ये मजेदार चीज है, आप एक अच्छे से अलग से प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस तरह की हड्डी जहां टूटी रहती होगी, उस तरह से अलग अलग एंगल से आप पेशेंट को अलाइन होने को कहते होंगे ना, ऐसे लेटी है, ऐसे खड़े हुई है। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि वहां उस जगह पर इतना दर्द होता हो कि उसको उस तरह जैसे आप चाह रहे हैं वैसे उसको अलाइन होने में दिक्कत हो।
1: नहीं जी, कर पाते कभी कभी इस तरह से
0: जी,
1: लेकिन थोड़ा सा पेशेंट भी कोऑपरेट करते ही करते हैं, उन्हें भी मालूम है इस बात का कि
0: हाँ जब तक वो सही डायरेक्शन में नहीं आएंगे। जी जी, और जब तक वो सही दिशा में नहीं आएंगे, सही से रिजल्ट्स नहीं आएंगे और समझ में नहीं आएगा क्या दिक्कत है, नहीं कहाँ पे हड्डी में दिक्कत है।
1: हाँ, बस मोस्टली जो है मेन जो फ्रैक्चर्स होते हैं बड़े हैं, वो समझ में आ ही जाते हैं, थोड़ा ज्यादा इधर हो भी जाता है तब भी दिखाई देता है।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो
1: माइनर जो है वो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ती है उसमें।
0: अच्छा, ये जो काम होता है रेडियोलॉजी का, इसमें जो एक्सरेज होती हैं बड़ी हार्मफुल होती हैं, हम जानते हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या करते हैं, चूंकि आपको तो परमानेंट उधर ही रहना है? जी जी, अच्छा अच्छा, चलिए तो ठीक है। आपसे बात करके संजय जी बड़ा अच्छा लगा। आपकी पसंद का गाना बज चुका है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।

0: लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
3: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
2: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
3: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
2: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
3: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
2: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: श्रोताओं, आपका फिर से स्वागत है प्रोग्राम हेलो अयोध्या में और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
2: रामानंदपुर पोस्ट मोतीनगर जिला अयोध्या से बोल रहे हैं, रविकांत दुबे।
1: रविकांत दुबे जी मोती नगर से जुड़ गए हमारे साथ मसौदा के पास ना?
2: जी।
1: तो सबसे पहले बताइए कौन सी फिल्म का गाना सुनेंगे आप?
2: पाकिजा फिल्म का।
1: इन्हीं लोगों ने
2: ले लिया दुपट्टा में।
1: आहा, क्या करते हैं आप दुबे जी?
2: ये खेती बाड़ी करते हैं।
1: अच्छा, तो क्या कुछ है खेत?
2: छोटी सी दुकान रखे हैं।
1: अच्छा, दुकान भी चल रही है, बहुत बढ़िया। तो खेती बाड़ी में क्या है कुछ खेत में इस वक्त?
2: इस समय जो है गन्ना बोया गया है।
1: अच्छा, गन्ना तो
2: गेहूँ जो है गेहूँ कट गया है अब जी। वो मक्का है, चरी है, उड़द है, ये सब बोया गया।
1: गन्ने से याद आया कि आपका जो क्षेत्र है मोती नगर, वही पास में मिल भी है ना
2: जी,
1: मसौदा मिल। तो जब मिल खूब तेज चलती है और गन्ना जिस वक्त आता है एक साथ, तो क्या कुछ समस्याएं भी आती हैं क्या आपके क्षेत्र में?
2: समस्याएं वही आती है, कभी कभी पर्चिया जो है लेट आती रहती है तो गन्ना छीनने में परेशानी होती है, गन्ना छोड़ने वाले नहीं मिलते हैं इस समय।
1: जी जी जी।
2: लेकिन कभी कभी पर्चिया जाती है तो ज्यादा गन्ना छोड़ा जा रहा है, कई जगह गन्ना छोड़ने लगते हैं।

0: तो तभी नहीं मिलते हैं आदमी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ जैसे आप पास में हैं तो आप तो जल्दी से पहुंच जाते हैं मोतीनगर से, लेकिन कुछ लोग बहुत दूर दूर से अपना सामान लाते हैं, लंबी लाइनों में लगते हैं ना।
0: हाँ, होल लग जाते हैं, बहुत लंबे लंबे होल लगते
1: हैं। हाँ, चलिए दुबे जी आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी पसंद का गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में पहुंचाते हैं, ठीक है?
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार,
0: नमस्ते।

0: पाकीज़ा फिल्म के इस गाने के बीच आइए जुड़ते हैं हम अपने अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से फोन लगाया आपने?
1: सर नमस्ते, सर पोपी बीकापुर अयोध्या से।
0: पोपी गांव बीकापुर अयोध्या से जुड़ गए हैं उत्कर्ष जी, है ना?
1: यस सर।
0: उत्कर्ष क्या करते हैं आप, पढ़ते हैं मेरे ख्याल से?
1: सर कबड्डी भी खेलते हैं स्कूल लेवल पर, पढ़ते भी हैं, एडिटर भी हूं और थंबनेल डिजाइन करता हूं।
0: क्या बात है, चार चार बातें आपने बता दी। कबड्डी खेलते हैं, थंबनेल्स बनाते हैं, यूट्यूब के जो थंबनेल्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग यानी आप कर लेते हैं। तो क्या प्रोफेशनली डिजाइनिंग करते हैं किसी दुकान दुकान पे जो ये बनते हैं चीजें, वहां करते हैं कि अपने आप ऐसे फ्रीलांसर के टाइप?
1: मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी के लिए करता हूं और अभी कोडिंग भी सीखना है।
0: बहुत बढ़िया। तो उम्र कितनी है आपकी उत्कर्ष?
1: 14 ईयर्स।
0: वाह भाई वाह, 14 ईयर्स के बच्चे से मेरी बात हो रही है।

0: किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप उत्कर्ष?
1: क्लास 8 में।
0: वेरी गुड। और आप ये सारी चीजें चार पांच कबड्डी खेलते हैं, किस लेवल तक खेल रहे हैं कबड्डी आप?
1: मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गए हैं।
0: इंटर स्कूल अभी खेला आपने, मेहनत कीजिए। और इसमें भी आजकल इंटरनेशनल संभावनाएं हो गई हैं कबड्डी में, है ना, ये भी अंतरराष्ट्रीय खेल हो चुका है, तो बहुत बढ़िया है। ज्यादा मन किस चीज में लगता है, पढ़ाई में, कबड्डी में, या ये जो आप कर रहे हैं थंबनेल बनाना, ग्राफिक डिजाइनिंग और यूट्यूब, इस पर ज्यादा मन लग रहा है? हेलो
1: हेलो।
0: तीनों कामों में सबसे फेवरेट क्या है, पढ़ना, कबड्डी, या ये
1: सारे चीजें? सर
0: सारी चीजें बैलेंस चल रही। बहुत अच्छा, अभी आपकी उम्र कम है, अभी सब चीजों को अच्छा करिए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपको किस दिशा में जाना है कि नहीं। और गाना भी आपने बड़ा अच्छा चुना है, थ्री इडियट्स का बहती हवा सा था वो ना, तो चलिए आपकी पसंद का गाना हम सुनवाते हैं। अभी एक कॉलर को हम और लेना चाहेंगे इसके बाद, ठीक है? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उत्कर्ष।

0: और हम अपने प्रोग्राम के आखिरी कॉलर से बात करने जा रहे हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं? 3 मिनट बाकी है, जल्दी से बात करके अपना गाना बता दीजिए।
1: सर, अनुराग बोल रहे हैं। सर, हम बदन टुकड़ों से बोल रहे हैं।
0: चांदनी फिल्म का गाना सुनेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करती हैं आप, बता दीजिए फटाफट। गाना आपका मैंने बजा दिया है।
1: सर, हम तो पढ़ाई करते हैं सर।
0: बहुत अच्छा कर रही हैं। चलिए, फिर किसी दिन जुड़िएगा तो थोड़ी बात हो पाएगी। हाँ बोलिए।
1: सर, आप एजी मर्जी सर बोल रहे हैं ना?
0: नहीं, मैं सदक बोल रहा हूँ। सदक नाम है मेरा।
1: कोई बात नहीं।
0: जी जी, बहुत शुक्रिया।
1: हमें लगा वही सब बोल रहे हैं।
0: कोई बात नहीं। अनु जी, आपका गाना हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है?
1: थैंक यू सर।

श्रोताओ, चांदनी फिल्म के इसी गाने के साथ खत्म हो रहा हमारा आज का ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का सफर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त सदक को इस प्रोग्राम से, और बता दें आपको कि आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया अश्वनी कुमार जी ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जयंत पटेल।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र जहां आपसे लेकर रात 11 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ।

0: आती है, दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
2: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री

घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।